107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तदनुसार 29 मई 2026 सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

सुबह के शांत पावन और मंगलमय बेला में जब उगते सूरज की सुनहरी किरणें धरती को आलोकित कर रही हैं।

जब प्रकृति का हर दृश्य मन को नई ताजगी और नई ऊर्जा से भर रहा है, तो आइए ऐसे में हम भी प्रभुमय हो जाएं और गुणगान करें परमेश्वर का कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और आज इसमें आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सुस्मित 100.7 एफएम रेनबो पर। हर शुभ कार्य की तरह आज की इस संगीतमय प्रस्तुति का प्रथम पुष्प समर्पित है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में, जिनके स्मरण मात्र से मन में नई शक्ति का संचार होता है।

भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, भक्ति वो अनुभूति है जो मन को शांति देती है, जो जीवन में विश्वास और सकारात्मकता का दीप जलाती है। और जब सुरों में श्रद्धा का भाव जुड़ जाता है तो वही संगीत ईश्वर की आराधना बन जाता है।

ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ना कठिन विधियों की, ना ही दिखावे की। सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। जब मन सरल हो, भाव निर्मल हो, तो भगवान स्वयं भक्त के हृदय में स्थान बना लेते हैं।

भगवान का आश्रय केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, वो तो एक ऐसा विश्वास है जो कठिन समय में भी भीतर आशा का दीप जलाए रखता है। ईश्वर की कृपा उस शांत सरोवर की तरह होती है जिसके पास पहुंचते ही मन की सारी व्याकुलता धीरे धीरे शांत होने लगती है, और जब हृदय पूरी श्रद्धा से प्रभु का ध्यान करता है तो जीवन का हर मार्ग सरल और प्रकाशमय लगने लगता है।

ईश्वर की कृपा भी कितनी अद्भुत होती है। कभी वो हमें दिखाई देती है और कभी चुपचाप हमारे जीवन को संवारती रहती है। कई बार जब सभी मार्ग बंद दिखाई देते हैं, तभी अचानक कहीं से आशा की एक किरण जन्म लेती है। शायद यही भगवान का आशीर्वाद है जो बिना कुछ कहे हर पल हमारे साथ चलता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में प्रभु पर विश्वास बना रहे तो अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य मिलता है। दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इसी विश्वास के साथ मेरे यानी सुस्मित के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि, जिसमें उसी असीम कृपा को नमन करते हुए आइए सुनते हैं एक और मधुर भजन।

भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, हर सफलता के लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए और हर कठिनाई में यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो केवल सुख में ही नहीं दुख में भी ईश्वर का हाथ थामे रखे।

जब मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम दोहराता है तो लगता है जैसे भीतर कोई नई चेतना जाग उठी हो। थकी हुई सांसों में फिर से ऊर्जा भर जाती है और मन आनंद से झूम उठता है। भक्ति का सुख भी कितना अद्भुत होता है, न कोई बंधन न कोई आग्रह, बस प्रभु के नाम में डूब जाने का एक सरल और निर्मल भाव।

ईश्वर का स्मरण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब मन प्रभु के विश्वास से जुड़ जाता है तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं और जीवन में एक नया प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसी भाव, इसी विश्वास के साथ भक्ति संगीत की इस पावन प्रस्तुति पुष्पांजलि में आज बस इतना ही। परमात्मा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से। थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा प्रोग्राम सदाबहार गीत में। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर आप तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम की ये अंतिम भक्तिमय प्रस्तुति।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये पहला अवसर है जब राम मंदिर परिसर में 3,000 से अधिक मातृशक्तियों का एक साथ समागम होगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं समारोह में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की

संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में देर रात मौसम ने करवट ली। कल देर रात और आज सुबह तड़के लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

दोस्तों, सुबह की हल्की हल्की धूप और चाय का प्याला, साथ ही पुराने गीतों का जादू, इससे खूबसूरत शुरुआत भला सुबह की और क्या हो सकती है। और ऐसे में मैं सुस्मित लेकर आ गया हूं प्रोग्राम सदाबहार गीत, जहां हर गीत सिर्फ गीत नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत सफर है, जिसमें ना कोई शोर ना कोई बनावट, बस दिल से निकले हुए अल्फाज और मन को छू लेने वाली धुने। 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम की शुरुआत एक ऐसे गीत से जो मोहब्बत की दुनिया की, जी हां, जो मोहब्बत को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानता है।

कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी पुराने गीत की तरह होती हैं, धीरे धीरे दिल में उतरती हुई और फिर हमेशा के लिए वहीं बस जाती हैं। एक ऐसा ही मुसाफिर दिल प्यार की राहों पर चलता हुआ अब किसी रंगीन बाग तक आ पहुंचा है, जहां कलियां भी मुस्कुरा रही हैं, हवाएं भी गुनगुना रही हैं और मौसम जैसे मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हो।

मुस्कुराते मौसम में किसी की एक झलक ने जैसे दिल की धड़कनों को नया नाम दे दिया। वो झुकी हुई नजरें, चेहरे पर बिखरी जुल्फें और बातों में छुपी हुई शरारत। मोहब्बत शायद ऐसे ही धीरे धीरे दिल में उतरती है, बिना कोई आवाज किए।

जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए तो उसकी खुशी अपनी लगने लगती है और फिर मन यही चाहता है कि दुनिया की हर बुरी नजर से उसे बचा कर रखा जाए। यही तो मोहब्बत का सबसे प्यारा रूप है, जिसमें शामिल है फिक्र, अपनापन और दुआ।

वक्त गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे, लेकिन कुछ एहसास कभी नहीं बदलते। कुछ रिश्ते उम्र के साथ और गहरे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने गीत हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं।

कभी दूरियों ने इम्तिहान लिया, कभी हालात ने रास्ते बदले, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता वही रहा, दिल के बेहद करीब। और फिर एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां दूरियां भी खूबसूरत इत्तेफाक लगने लगीं।

दोस्तों, अब रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, एक मीठा सा अपनापन, बातों में हल्की हल्की शरारत और खामोशियों में भी ढेर सारी बातें शामिल थीं। नजरों का यूं टकराना, फिर मुस्कुराकर धीरे से नजरें झुका लेना और बिना कुछ कहे दिल का हर एहसास समझ जाना, ये प्यार की खूबसूरती ही तो है।

अभी जो दिल अकेला था, जो बस यूं ही राहों में भटकता फिरता था, उसे अब ठिकाना मिल चुका था। किसी की मोहब्बत ने जैसे उसकी तकदीर ही बदल दी हो, किसी की चाहत ने उसके बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजा दिया था। अब सफर वही था, रास्ते वही थे, लेकिन चलने का अंदाज बदल चुका था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। उसकी धड़कनों के साथ किसी और का नाम भी जुड़ चुका था। जी हां, कुछ ऐसी ही बातें और कुछ ऐसे ही खूबसूरत गीत आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर पहुंच रहा है ये गीत, और मैं हूं सुस्मित, आज आपके साथ इस प्रोग्राम में।

खान आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

उसका नाम लेते ही जैसे दिल की वीरान गलियों में रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चुपके से अंधेरों में 100 दिए जला दिए हों, जैसे किसी की याद हवा बनकर हर पल आसपास महक रही हो, और खामोश रातों में भी दिल धीरे धीरे कोई मीठी सी धुन गुनगुनाने लगा हो। शायद मोहब्बत का असली जादू यही होता है, जब किसी एक इंसान की मौजूदगी पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष

0: में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष

0: मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद

0: है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वादियों में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में सवेरा हो आपका, प्रार्थना है हम सब की बस इतनी सी कि मुस्कुराहट से भरा चेहरा हो आपका। गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को, और गुड मॉर्निंग रोली आपको भी।
0: गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड एवरीवन जो कि हमें सुन रहे हैं इस समय ट्यून इन किया है उन्होंने। और ये जो ठंडी सी हवा चल रही है और सूरज ने भी पूरी तरह से आंखें खोल ली है, तो दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है बड़ा ही औसम है आज की मॉर्निंग में।
1: बिल्कुल सही कहा रोली, आज की मॉर्निंग में ये बड़ा औसम है क्योंकि दोनों का बैलेंस बढ़िया बना हुआ है, मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। जो देर रात जो बारिश हुई, आंधी आई और उसके बाद थोड़ा सा ये जो टेम्परेचर था वो जो डाउन हुआ ना, उसने बड़ी राहत दी,
0: बड़ी खुशी दे दी कि चलो आफ्टरऑल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी उससे थोड़ी सी राहत मिली है। और पता है सुबह में उठकर बालकनी में गई तो मैंने देखा कि सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है है ना, तो आंधी ने कहीं चीजों को अगर गिरा दिया तो कहीं मन को खुश भी कर दिया है।
1: तो कुल मिलाकर बड़ी राहत देता ये मौसम और उस पर ये खूबसूरत सुबह, और आप सभी का साथ क्या बात है।
0: तो गुड मॉर्निंग लखनऊ में इस समय आप जो रहे हमारे साथ, मैं हूँ आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला,
1: और मैं सुस्मित आपके साथ सुबह से बना हुआ हूँ। ये पूरा साथ रहेगा आपके साथ 10 बजे तक।

0: गाने हैं और साथ ही होगा मुद्दा जिसमें आपके विचार हम तक पहुंचेंगे। तो भाई क्या बात है, ऑसम है ये प्रोग्राम।
1: बिल्कुल सही कहा रोली। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर की शुरुआत एक गीत के साथ और जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में अपने साथियों से।
0: और ये गीत आपको ले जाएगा उन वादियों में जहां आप शायद अभी तक जा नहीं पाए हैं और सोच रहे थे कि वेकेशन में जाएंगे। चलिए ये गाना सुनकर उन वादियों में पहुंच जाते हैं और एंजॉय करते हैं ये ट्रैक।
2: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: और देखिए, इशारा हो गया रोली मॉर्निंग मंत्रा की बात करने का, और इस बात से मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे ये जगह, ये मोड़ बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ पर हम एक ऐसी बात से जुड़ते हैं जो हमारे लिए छोटी सी बात लेकिन बड़े काम की बात होती है।
2: ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है?
1: आज का मॉर्निंग मंत्रा एक ऐसी बात कह रहा है जो हमें ऊंचाई की तरफ जाने और वहां पर टिके रहने, वहां पर कैसे हम बने रहें, उसके बारे में बताता है। क्योंकि आज एक खास दिन और उससे जोड़ रही है आज की बात। और क्या कह रहा है मंत्रा, पूरी बात क्लियर कर देते हैं आपको। आज का मॉर्निंग मंत्रा कह रहा है कि हर इंसान के जीवन में एक एवरेस्ट होता है। लगता है कि नहीं आपको? क्या मानती है रोली?
2: बिल्कुल होता है। एक ऐसी ऊंचाई, एक ऐसी चीज जो हमें हासिल करनी होती है या हमारे लिए बड़ी मुश्किल सी होती है, हमें लगता है कि हम इसे अचीव कर भी पाएंगे कभी नहीं, है ना?
1: बिल्कुल। तो ये जो एवरेस्ट होता है हर इंसान के जीवन में, इसे जीतने के लिए साहस, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर ये हमारे पास नहीं होंगे तो कभी भी हम उस ऊंचाई को नहीं पा सकते।
2: बिल्कुल सुष्मिता, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जो पेशेंस है ना, जो धैर्य है, वो ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है अगर उसे धारण करना आ जाए। क्योंकि पेशेंस है तो हम हर चीज़ को धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते करते करते एक ना एक दिन सीख ही जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बात आपको बहुत कुछ बताती है कि कैसे आप अपने जीवन में उन कामयाबी को पा सकते हैं, उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जो शायद आपके लिए एक सपना जैसी होती हैं। ज़रूरत होती है पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ लगे रहने की, चलते रहने की।
2: बिल्कुल। तो ऐसे ही चलते रहिए और चलते चलते धीरे धीरे काम करते करते अपनी चीजों को अचीव करते रहिए, और साथ ही सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि अगला ट्रैक भी आप सब इंजॉय करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: मुद्दा आज का।
1: और रोज की तरह आज भी आपके लिए हमारे पास है एक बड़ा ही औसम सा मुद्दा, क्योंकि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, अपनी लाइफ में झांकने के लिए मजबूर कर देगा, अपने आप को झकझोड़ने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या तय किया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी कठिन से लगती हैं, कभी कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं पाता क्या मैं ये कर पाऊँगी।
2: बिल्कुल सही कहा रोली, और हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। हम में से हर एक की लाइफ में ये एक ऐसा ज़रूर आता है कि हम कुछ सोचते हैं और वो बहुत कठिन होता है, हमें लगता है कि ये बहुत कठिन होगा और हम कोशिश करते हैं कि हम उसे उस लक्ष्य को पा भी लें। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी सिचुएशन है जो मुझे लगता है हर किसी के साथ ज़रूर होती है।
1: तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने कभी कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो शुरुआत में बहुत कठिन लगा हो, या फिर आपने अगर उसे पूरा कर लिया तो वो कैसे पूरा किया, हमें बताइए।
2: जी हाँ, यही है आज के मुद्दे की बात, जिससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com के माध्यम से। तो साहब, मुद्दा पहुंच चुका है आप तक, अब काम शुरू होता है आपका कि आप भी जल्दी जल्दी अपनी बातों के साथ जुड़ जाइए गुड मॉर्निंग लखनऊ से, और साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ। क्या कहती है रोली?
1: बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए और गाने एंजॉय करते रहिए। आज का प्यारा सा ये जो मौसम है और साथ ही साथ ये जो प्यारी सी मॉर्निंग है, इससे एंजॉय करते रहिए और साथ में अपने अपने काम करते रहिए और हमें सुनते रहिए। राइट,
2: बिल्कुल, एक ट्रैक बिल्कुल तैयार है, जुड़ते हैं इस गीत से, मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: बिल्कुल, अगर कोई चीज़ सोच ली जाए और दृढ़ संकल्प ले लिया जाए तो हम अगर उसे करना चाहें तो हमेशा करते रह सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है,
0: है ना?
1: इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जिनकी उनसे संबंधित ये बात हो सकती है, उनके लिए बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। क्योंकि जब भी कभी कुछ हम ऐसा करने जा रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत काम का होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आती है। अब ये गोल गोल बातें मैं जो घुमा रहा हूँ, हमारे सुनने वाले जो भी साथी सोच रहे हैं,
0: मैं भी कहने जा रही थी कि ये जो गोल गोल बातें आप घुमा रहे हैं, क्यों? सीधे बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं।
1: जी, मेरा मकसद कहने का ये था कि जब साहब हम अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक जो कहते हैं ना कि हम साहस करते हैं और कुछ करने का जब एक जज्बा लेके बढ़ते हैं, तो हमारे लिए हर काम आसान हो जाता है। फिलहाल कुछ जरूरी बातों की तरफ हम आपको ले चल रहे थे, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, उन जरूरी बातों से आइए जुड़ते हैं यहाँ पर सिटी अपडेट्स में और बताते हैं आपको पहली बात।
0: आपको बता दें कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 15 से 18 जून तक किया जाएगा और राष्ट्रीय योग ओलंपियाड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व इस ओलंपियाड का आयोजन होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हर छात्र को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से योग में हैं और रोज योग करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए ये न्यूज़ है।
1: बिल्कुल, और वैसे योग तो सबको करना चाहिए। ये चीज़ है।

0: सी है जो हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद है, कहीं से कोई नुकसान नहीं। बहरहाल आपकी इस बात के साथ रोली, एक और काम की बात है हमारे साथियों के लिए, और ये बात आती है लखनऊ विश्वविद्यालय से। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कार्यक्रम में एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं, और ये 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें 60 सीटें निर्धारित हैं और ये युवाओं को इस फील्ड में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए आपको बताएं कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बी फार्मा, बी टेक केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी उत्तीर्ण छात्र इसके आवेदन के लिए पात्र हैं, और इसमें जो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। जो इसमें प्रवेश होगा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर होगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रोजगार परक कोर्स है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और आप आगे एक बढ़िया अवसर पा सकते हैं।
1: बिल्कुल, अवसर की बात है तो अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग BA दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा 29 मई से यानी आज से 1 जून तक आयोजित की जाएगी। विस्तृत समय सारणी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है, आप वहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं।
0: और इसके अलावा बात उनकी जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपको बताएं ये बात इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न 2 को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब जो भी करदाता हैं वो ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ITR2 ऑनलाइन भर सकते हैं। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न 2 को ऑनलाइन दाखिल करने और एक्सेल सुविधा दोनों उपलब्ध करा दी गई हैं, और ये उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा भरा जाता है जिनकी आय पूंजीगत लाभ से प्राप्त होती है। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी कुछ बातें सिटी अपडेट्स में, और इन जरूरी बातों के साथ ही साथ अब 8:40 हो चुके हैं, हम बढ़ते हैं आगे एक ट्रैक के साथ, मिलेंगे थोड़ी देर में।

0: अभी जो बर्थडे वाली वाइब्स है ना, इसमें कहीं खो जाने का दिल तो जरूरी करता है, लगता है कि हमारा बर्थडे भी आ जाता तो अच्छा रहता।
1: बिल्कुल सही कहा रोली, और जब मौसम इतना अच्छा हो जाए तो फिर तो क्या कहने, फिर तो अच्छा, और मजा आ जाता।
0: बच्चों की बातें कभी याद करिए, बच्चे जो होते हैं ना, एक बार उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है, फिर वो कहते हैं हर दिन उनका बर्थडे, आज भी मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है ना, एवरीडे एक ही क्वेश्चन।
1: सही बात है, ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत जबरदस्त होती है। कितना प्यारा एहसास होता है ये बच्चों में देखने को मिलता है, उन्हें अपने बर्थडे को लेकर के कितना उत्साह होता है,
0: बहुत ज्यादा,
1: कितनी खुशी होती है उनके अंदर, और कितनी उम्मीदें होती हैं सबसे, उनके जितने भी अपने होते हैं, चाहे वो घर में परिवार में लोग हों या फिर उनके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, उन सभी से उनको उम्मीदें होती हैं कि भाई हमारे हमारे लिए विश जरूर आनी चाहिए और साथ ही साथ गिफ्ट भी आने चाहिए।
0: और बच्चे को छोड़िए, हम जब बड़े लोग हैं ना, बच्चों के बड़े लोग हैं, तो हम लोग तो एक महीने पहले से ही सोचने लगते हैं कि क्या स्पेशल होने वाला है, क्या कुछ करने वाला है, और वो दिन जो है, पर्टिकुलर वो डे जो है, वो हमारा अपना दिन होगा, है ना। तो

0: जिन जिनका है हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. और साथ ही साथ आज है जिनकी एनिवर्सरी, जी हाँ, मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, यहाँ पर शुभकामनाओं की बहुत जरूरत लगती है मुझे.
0: हाँ, ताकि सब ठीक ठाक चलता रहे, ज्यादा झगड़े ना हो, और थोड़ी खिटपिट चलती है तो कोई बात नहीं. बस वो कहते हैं ना कि ग्रह जीवन की जो गाड़ी होती है ना, दो पहिए बराबर चलते रहे.
1: बिल्कुल. तो साहब, ये जो बैलेंस है ना, ये बना रहे आपके जीवन में, हमारी यही शुभकामनाएं हैं. और बात बर्थडे की चली है तो साहब, कुछ नाम भी हैं जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं, तो चलिए करते हैं उनका भी जिक्र, बताते हैं कुछ उनके बारे में भी. सबसे पहला नाम इसमें आज जो दर्ज है वो है एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार का. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामानंद चटर्जी जी की, जिनका जन्म 1865 में आज ही के दिन हुआ था.
0: और इसके अलावा हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में आज ही के दिन हुआ था.
1: और इसके अलावा किराना घराने की सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका पद्मभूषण हीराबाई बरोडकर जी की भी आज जयंती है. और हीराबाई जी एक प्रतिभाशाली गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारत की पहली महिला कलाकार थी जिन्हें पुरुषों के वर्चस्व के दौर में लोग कॉन्सर्ट में सुनने आए थे. 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ तब उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था.
0: इसके साथ ही आज बर्थडे है एक ऐसे शख्स का जिन्होंने छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों में खूब शोहरत बटोरी. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छोटे पर्दे के करमचंद जासूस यानी पंकज कपूर साहब की, जिन्होंने अपने हर किरदार में जान डाल दी. करमचंद जासूस, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऑफिस हो या फिर जाने भी दो यार हो, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, तमस, रोजा मकबूल, मौसम और भीड़ जैसे पंकज कपूर हर किरदार में छा गए.
1: जी हाँ, चाहे छोटा पर्दा रहा हो, टीवी सीरियल्स रहे हो, और या फिर बड़ा पर्दा, आप किसी भी आप उनको फॉर्मेट में देखिए, आपको लगेगा वाह क्या बात है. और जाने भी दो यारों से ये जो सिलसिला चलता चला आ रहा है वो आज तक जारी है. उनकी एक्टिंग जबरदस्त है. आज भी आप उनके किसी भी किरदार को देखिए, यकीनन मजा आ जाता है.
0: आप एक वेब सीरीज पर अभी हाल फिलहाल में हमने उन्हें देखा है, उसमें भी उनकी एक्टिंग बिल्कुल वैसी, कोई फर्क नहीं आया, बहुत ही दमदार जब स्क्रीन पे आते हैं तो.
1: बिल्कुल. और ऐसा ही एक दमदार नाम और भी है जो बहुत ही युवा है, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर भारत का नाम गौरवान्वित कर रहा है. जी हाँ, हम बात करें भारत के युवा शतरंज सितारे और विश्व चैंपियन डी गुकेश का, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा, धैर्य और एकाग्रता से बहुत कम उम्र में विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया.
0: क्या बात है. तो यानी ये बात तो तय है कि अगर आपके पास धैर्य है और आपके पास एकाग्रता है और आप दृढ़ संकल्पित हैं अपने उस लक्ष्य के लिए, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो या ओवरऑल वर्ल्ड में आप कहीं रहते हो.
1: बिल्कुल. और देखिए, ये जो बात है ना, इनकी जो बात है, जो इन्होंने कारनामा किया है, जो इन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है, चाहे वो बेहद युवा डी गुकेश हो, पंकज कपूर साहब हो, हीराबाई बरोडकर जी हो, इन सभी ने बताया कि साहब, ये जो एवरेस्ट की ऊंचाई है ना जो हमारे जीवन में, उसे हम पा सकते हैं, उस तक हम पहुंच सकते हैं. जरूरत होती है हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक मजबूत सोच की.
0: बिल्कुल, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम वो चीज कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं. हम इसलिए इतनी सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करते रहते हैं ना, कि क्या पता कहीं आप कल बीते हुए दिन में आप हार गए हो और आज आपने अपना लक्ष्य छोड़ने का सोचा हो कि अब नहीं कर सकता मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे, है ना.
1: तो नहीं को हटा दीजिए, हो पाएगा सोच लीजिए, अपने पास संभाल के रख लीजिए इन दो शब्दों को, और बस जिंदगी में बढ़ जाइए आगे. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.
0: बिल्कुल. और ऐसा जहां हम सभी बसाना चाहते हैं, जहां पर हर वो नजारा वैसा हो जहां जो हम देखना चाहते हैं ना.
1: बिल्कुल सही कहा रोली. तो चलिए, इस खूबसूरत बात के साथ ही साथ सुन लेते हैं खूबसूरत गीत भी.

0: 8:56 मिनट और गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है। जी हाँ, थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद फिर से हम आपसे मिलेंगे, करेंगे बातें बहुत सारी और साथ ही साथ बहुत कुछ है आपके लिए हमारे पास, तो बस हमारे साथ आपको जुड़े रहना है और यूं ही चलते रहना है। फिलहाल एक ट्रैक बिल्कुल तैयार है, क्या कहते हैं?
1: बिल्कुल, कहीं नहीं जा रहा है, हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन
0: लखनऊ की।
1: बस वापस आते हैं एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और अब सुने अखबारों की सुर्खियां। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीटीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। कल श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। रविवार को वे कर्नाटक जाएंगे और फिर केरलम में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
1: प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक कल देर रात और आज तड़के प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, आंधी व गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा बन गया। वहीं कुछ स्थानों पर आंधी पानी से जान माल का नुकसान भी हुआ है। अयोध्या में गरज चमक के साथ वर्षा हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जौनपुर, चंदौली व अंबेडकर नगर में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। पीलीभीत में भोर से आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज गति से हवाएं चलने से तापमान काफी कम हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 3 घंटे में तेज बरसात और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कुशीनगर में भी गरज चमक के साथ सुबह से बारिश हो रही है।
0: कौशाम्बी जिले में बीती रात तेज बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी तूफान से बिजली के खंभे गिर गए, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। थाना क्षेत्र पश्चिम शरीरा के पूरब शरीरा स्थित दूनी तिवारी का पूरा गांव में बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह करीब 3 बजे एक कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में माँ बेटी और बेटे की दबकर मौत हो गई।
1: महान उर्दू शायर डॉक्टर बशीर बद्र का कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। शाम को उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। डॉक्टर बशीर बद्र के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डॉक्टर बशीर बद्र जिंदगी की आम बातों को सरल, सहज और सलीके से कहने का हुनर रखते थे। उन्हें आधुनिक गजल का उस्ताद माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म यूपी के कानपुर में 15 फरवरी 1935 को हुआ था।
0: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

0: और लीजिए, एक बार फिर से आ चुके हैं आप सबके बीच में. जी हाँ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 एफएम रेनबो पर. और एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सुस्मित.
1: गुड मॉर्निंग रोली, आपको भी वंस अगेन, और सभी प्यारे प्यारे साथियों को भी गुड मॉर्निंग. जिन्होंने अभी अभी रेडियो से टॉन किया है उनको भी बहुत बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग. और साहब, यहाँ पर एक बात, वो जो आप कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि अरे बता तो दीजिए वो बात जिससे हम जुड़ सकते हैं.
0: कौन सी वाली बात? यानी मुद्दे की बात.
1: बिल्कुल. तो क्या है विषय आज का, ये बता देते हैं जिससे आप जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपने कभी कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो शुरुआत में बहुत कठिन लगा हो, आपने उसे कैसे पूरा किया?
0: अगर पूरा किया है तो हमें ये बताइए fmakashwanilakhnau@gmail.com पर. और फिलहाल ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए इसे एंजॉय करिए और वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद. स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल.

0: और वाकई में ये सुबह आई तो है, भीगी भागी सी भी आई है और भागी भागी सी भी आई है और उठते हुए ये सुबह हम तक पहुंची है।
1: क्या बात है।
0: तो इस प्यारी सी सुबह में आप एक बार फिर से मुस्कुरा दीजिए ना, क्या सोच रहे हैं इतने गंभीर ये बने हुए, चलिए मुस्कुरा दीजिए। जी हाँ, रेडियो के उस पार जो हमें समय सुन रही है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रुली, निश्चित रूप से बहुत कुछ है जो हंसने मुस्कुराने की वजह देता है और इस वजह के साथ ही साथ हम अपने साथियों से जुड़ते हैं और उनसे भी बातें करते हैं, उनके मेल्स हमारे सामने हैं, तो चलिए उनके मेल्स को शामिल करते हैं। यहाँ पर
0: हमारे पास वारिस अली खान का मैसेज आया है और ये कहते हैं कि आपको कुछ बताते हैं, सुष्मित जी आपको कुछ बताते हैं।
1: और वारिस जी का मेल, और इन्होंने बताया कि कल बहुत ही मशहूर शायर बशीर बद्र साहब नहीं रहे, हम सभी जानते हैं, और उनके लिए इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ एक शेर इन्होंने कहा है, उन्हें कहा कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आई बस्तियां जलाने में। एक शेर इनको याद आया, वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है और इनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई, आपने अपना मेल हमें भेजा, थैंक यू।
0: और महेंद्र दीपन का हमारे पास मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग लिखते हैं और लिखते हैं कि आरजे सुष्मित और आरजे रोली मैम जी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर से, आप दोनों की जोड़ी कमाल है, क्या बात है, सुबह सुबह एकदम फ्रेश कर देते हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि आज के मुद्दे पर मेरा मानना तो ये है कि देखो भाई, लक्ष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस मिल जाए और कहानी खत्म। लक्ष्य तो उस धागे की तरह है जो हमारे रोज के कामों को आपस में जोड़कर रखता है। अगर जिंदगी में कोई निशाना नहीं होगा तो बस भीड़ में चलते रहेंगे, इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उन्हें पूरा करते रहिए और हर दिन खुद को कल से बेहतर, बीते हुए कल से बेहतर बनाइए। बस यही कहना चाहते हैं कि मेहनत ऐसी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह महेंद्र जी ने क्या शानदार बात कही। और देखिए रामराज जी का मेल भी आया था हमारे पास रायबरेली से, और इन्होंने सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग कहा है, सुप्रभात कहा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे पास घनश्याम सिंह का मैसेज आया है और ये है एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से, और ये लिखते हैं कि आदरणीय सुष्मित भैया और सम्मानीय मैडम रोली जी को श्रद्धापूर्वक और स्नेह के साथ नमस्कार। कितने प्यारे शब्दों में लिखा है आपने, आपको भी नमस्कार। ये लिखते हैं मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है जब आप लोगों की मधुर बातें सुनता हूँ, आप लोगों के हृदय में ईश्वर बसते हैं क्योंकि श्रोताओं इच्छा के अनुसार गीतों को सुनवाते हैं। इसके लिए FM रेनबो दिल की धड़कन लखनऊ के आरजे, आप दोनों को सच्चे हृदय से धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि मैंने कोशिश की है कि मैं भी कुछ भंडारा वगैरह आयोजित करूं। थैंक यू, करते रहिए भाई, ये सब काम भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, यानी इन्होंने जो लक्ष्य तय किया था उसको पा लिया इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ एक और मेल सुरेश शर्मा जी का ऐशबाग लखनऊ से हमारे पास, सभी को गुड मॉर्निंग कहा है और साथ ही साथ इनका कहना है, मुझे तो अपने पर कभी भरोसा ही नहीं था। अब बात यहां पर यह आती है कि अगर आपको भरोसा नहीं था तो फिर हो क्या साहब। ये स्थिति हमें बताती है कि जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते रोली जो शुरुआत में खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, कई बार परिस्थितियां, असफलताएं या फिर दूसरों की बातें हमारा जो आत्मविश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसको कम कर देती हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये जो आत्मविश्वास है ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे धीरे धीरे बनाया जाता है। तो ऐसे में अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखिए, कहीं से भी कोई इसमें कमजोरी मत आने दीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये बार बार की गई कोशिशों का ही रिजल्ट होता है।
0: बिल्कुल, हर अगले घंटे आपको ऐसा लगेगा कि आपका मनोबल टूट रहा है, लेकिन अपने मनोबल को अगर सच मानिए कोई जोड़ सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो दोस्त। तो अपने अंदर झांको और कोशिश करो कि आप ये कर सकते हो। हमारे पास जावेद अख्तर का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, आप दोनों को कार्यक्रम में गीतों के साथ साथ अंदाज़

0: पेशकश बहुत ही लाजवाब है, थैंक यू। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं, हम कोई भी काम के बारे में सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, फिर भी हम सच्ची लगन और मन से प्रयास करें तो हर मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाती है, आसान सी लगती है, क्यों ना हमें कांटों से चल के गुजरना पड़े। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना मैसेज भेजा।
1: और बड़ी दूर से इन्होंने मेल किया है हमें, आजमगढ़ से इनका ये मेल आया है,
0: रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इनका मेल आया है।
1: क्या बात है, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन के नाम भी इसमें शामिल हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुछ नाम जिनके जरिए हम जुड़े, फिलहाल और भी बहुत से नाम हैं, उनके भी मेल हम शामिल करेंगे और उनकी भी बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या करें रोले,
0: यहाँ पर हम एक अच्छा सा गीत सुन ले, है ना?
1: बहुत अच्छी बात है, तो चलिए एक म्यूजिकल ट्रैक आप तक पहुँचाते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर एक और बात के साथ।
0: तो बस बने रहिए हमारे साथ और यूं ही एक के बाद एक अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें सेंड करते रहिए, और बस हम भी यूं ही एक के बाद एक आपके मैसेजेस पढ़ते जाएंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, ये जो धड़कन है लखनऊ की, यानी 100.7 FM रेनबो, ये आप तक पहुंच रहा है उस रेडियो के जरिए जिस रेडियो को आपने बड़े ही अच्छी जगह पर प्यार से संजो के रखा है ना।
3: बिल्कुल सही कहा, और ये बड़े दिल के करीब होता है हमारे ये हमारा रेडियो।
2: और जब भी हम अपने रेडियो को देखते हैं या उसको कैरी करते हैं या उसको उठाते हैं, तो मतलब एक अलग ही हमारे अंदर प्यार होता है ना सचमें।
3: बिल्कुल सही कहा, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, एक बड़ा तगड़ा रिलेशन होता है इसके साथ हमारा।
2: अच्छा, भावनात्मक जुड़ाव हम हमेशा उन चीज़ों से करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया करते हैं, या जिनकी वजह से हमें हंसने की वजह मिलती है, हमें खुश रहने की वजह मिलती है ना। और ऐसे ही कुछ एक और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि जिंदगी में हम कुछ पाना चाहते थे और हम बस लगे हुए थे करने में, हम कोशिश कर ही जा रहे थे, एक दिन ऐसा आता है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है, लेकिन हो गया। सोचिए, अचानक वो रिजल्ट हमारे सामने आ गया और हम उसमें अव्वल आ गए, तो मतलब वो फीलिंग क्या होगी, शायद उसे कोई बयां नहीं कर सकता।
3: बिल्कुल, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सिर्फ दिल समझ सकता है। वो जो एहसास होता है वो सिर्फ आप देख के उसका अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्टली उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल
2: बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज, कोई भी एहसास, कहते ना कि वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही एक एहसास होता है जिंदगी में कुछ कर जाने का, कुछ कर गुजरने का। और इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह से ही बात की साहस की, हमने सुबह से ही बात की दृढ़ निश्चय की कि अगर इंसान अपने इच्छा शक्ति को जागृत कर ले तो वो हर एक चीज पा सकता है जो पाना चाहता है, क्योंकि आज है माउंट एवरेस्ट दिवस, सुस्मित है ना। और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है अगर ठान ली जाए तो।
3: बिल्कुल सही कहा रोली, ये एक ऐसी बात है जो हमें कहता है ना कि हमारे मन की मजबूती बहुत जरूरी है, और ये बात इसलिए क्योंकि आज माउंट एवरेस्ट डे मनाया जा रहा है। इसी दिन दरअसल 1953 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और नेपाल के प्रसिद्ध शेरपा तेनजिंग नोर्जे ने पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर इतिहास रचा था। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर वर्ष आज के दिन माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है।
2: माउंट एवरेस्ट केवल एक पर्वत नहीं सुस्मित, बल्कि ये हमें एक संदेश देता है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी साहस, धैर्य और निरंतर प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है।
3: बिल्कुल सही कहा रोली, ये दिवस उन सभी पर्वतारोहियों को भी समर्पित है जो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना सीखते हैं और अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं।
2: और कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम जो चुनौती स्वीकार करने के लिए बिल्कुल सीधे होकर के खड़े हो गए हैं कि हम उसमें जीत भी पाएंगे, लेकिन हमारा आत्मविश्वास है जो हमें हर उस चुनौती से जीतने का
3: हौसला देता है,
2: आगे बढ़ाता है ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, तो ये बहुत कुछ बताती है बातें, और आज का दिन अपने आप में बहुत कुछ है जो सिर्फ हमारे लिए है, हमसे हमारे मन की मजबूती के लिए, हमें और आगे बढ़ाने के लिए, बस जरूरत है इसे समझने की।
2: तो चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आगे, और भी बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग
3: लखनऊ
2: में। और ये प्यारा सा ट्रैक आप सब के लिए, एंजॉय करिए।

0: night.
1: नौ बजकर 27 मिनट गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है और यहाँ पर कुछ और लोगों की बात जरूर करना चाहेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है. इसमें सबसे पहला नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान किसान नेता और सादगीपूर्ण जीवन के प्रतीक चौधरी चरण सिंह जी की. चौधरी चरण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों, ग्रामीण समाज और देश के आम नागरिकों और उनके हितों के लिए समर्पित किया.
2: 60 और 70 की दौर की बात करें उसमें तो 60 और 70 के दौर में कई बेहतरीन गीत हिंदी सिनेमा को देने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश जी की आज पुण्यतिथि है. अपने इसी शहर लखनऊ में जन्मे योगेश ने अपने करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म सखी रॉबिन की थी. इस फिल्म के लिए उन्होंने 6 गाने लिखे थे. योगेश की आखिरी बड़ी रिलीज फिल्म बेवफा सनम थी. उनके लिखे सबसे बेहतरीन गीतों में कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहली, रिमझिम गिरी सावन, कई बार यूं ही देखा है, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, इस तरीके के कुछ गाने शामिल हैं.
1: इसके अलावा आज हिंदी सिनेमा और भारतीय रंगमंच के एक ऐसे महान कलाकार को स्मरण करने का भी दिन है जिन्होंने अपने दमदार अभिनय, प्रभावशाली व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी. हम बात कर रहे हैं

0: पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पृथ्वीराज कपूर साहब की, जिन्हें भारतीय फिल्म जगत की मजबूत नींव रखने वाले अग्रणी कलाकारों में गिना जाता है। फिल्म मुगले आजम में बादशाह अकबर के किरदार को अमर बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी हिंदी सिनेमा के चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। तो आज इन सभी हस्तियों को नमन करते हुए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।
1: और एक गीत है जो कि बहुत ही प्यारा सा है, इसे हम आप सबके लिए भेज रहे हैं, एंजॉय करिए।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: और इतनी देर से हम देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक मैसेज आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और इंतजार हो रहा है कि बस कब उनके मैसेजेस पढ़े जाएं।
1: बिल्कुल, यहाँ पर कुछ साथी हैं, उनके मेल्स की तरफ हम चलते हैं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आप तक मौसम की अपडेट पहुँचाने की। फिलहाल यहाँ पर जिनका मेल हमारे सामने है और वो हैं राधे श्याम जी। मास्टर राधे श्याम जी ने अपना मेल भेजा है कासगंज से और गुड मॉर्निंग बोला है। रोली आपको भी, मुझे भी और सभी सुनने वालों को।
0: हाय, गुड मॉर्निंग टू यू टू।
1: और आगे इनका कहना, मेरा बचपन से एम था कि मैं मैथ का टीचर बनूं। मैंने 2005 में बीएड किया। मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग देता हूं और मैं टीजीटी मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने की बात इन्होंने बताई है। इन्होंने 2009 में टीजीटी क्वालिफाई कर दिया और मुझे 21 किलोमीटर दूर घर से कॉलेज मिला। अब मैं अपनी बढ़िया अच्छी तरह से नौकरी कर रहा हूं, यानी इनका जो टारगेट था वो इन्होंने अचीव कर लिया।
0: क्या बात है,
1: क्या बढ़िया बात है। मतलब ये होता है ना, हमारी एक सोच और उस सोच को अंजाम तक पहुंचाने की बात।
0: बहुत बढ़िया। और हमारे पास संतोष का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, गुरुग्राम से हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा भारद्वाज का नाम लिया है इन्होंने और ऐसे ही आप सुनते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे पास अरुण प्रताप सिंह का मैसेज आया है और ये लिखते हैं, दोनों आदरणीय उद्घोषक को काशी से सादर नमस्कार। क्या बात है,
1: क्या
0: हम सभी इंजीनियर बंधु अरुण प्रताप सिंह, अखिलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, विनोद कुमार मौर्य, अच्युत अग्रवाल, बीर सिंह, राजीव कुशवाहा, रजत कुमार रॉय, कमलेश कुमार, सुशील कुमार विश्वकर्मा और प्रद्युम्न सिंह यादव, लल्लापुर मंगारे वाराणसी के रहने वाले श्रोताओं की तरफ से देशवासियों को नमस्कार करते हैं। सभी का तो पता नहीं लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि रेडियो दवा का काम करता है। कुछ दिन ना सुनो तो तबीयत असहज होने लगती है।
1: क्या बात कही है। ये आपका जुड़ाव है, ये आपका लगाव है हमारे साथ। निश्चित रूप से बहुत कुछ हमें आपका प्यार और हमारे साथ जो रिश्ता है उसके जुड़ाव की बात बताता है। तो बस ये रिश्ता ऐसे जुड़ा रखिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। फिलहाल यहाँ पर हम सोचते हैं कि कुछ और आगे बढ़ा जाए, कुछ और बातें करें आपसे। एक ट्रैक सुन लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं आपके बीच दोबारा।
0: तो बस ये ट्रैक सुनिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, जो है धड़कन
1: लखनऊ की।

0: और फिलहाल इस समय चांद तो नहीं, लेकिन हाँ सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा है आसमान में। और अगर आपको जानना है कि आज मौसम क्या रहने वाला है तो उसकी अपडेट अजी कहाँ जाएंगे आप लेने, हम ही तो देने वाले हैं आपको।
1: बिल्कुल सही कारोली, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके लिए मोहम्मद दानिश जी, जो कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं। स्वागत करते हैं उनका। दानिश जी बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग
1: जी। मौसम ने करवट बदली है, अब ऐसे में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, थोड़ा हमारे साथियों को भी बता दीजिए।
2: देखिए मौसम की बात करें तो रात में एक अच्छी बारिश हुई तो कहीं ना कहीं मौसम काफी ठंडा हो गया है
0: जी।
2: और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज भी कुछ इस तरीके का बना रहेगा, और इवन आज कल परसों अभी 3 दिन तक मौसम काफी सुहावना बना रहेगा और बीच बीच में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
1: ओके, तो ये एक अच्छी खबर हमारे साथियों के लिए है जो भी सुन रहे हैं कि इन दिनों 2-3 दिन राहत महसूस कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, और बीच में जैसे कि ये आंधी तूफान टाइप का भी सिलसिला बना रहेगा तो लोगों को बचाव रखने की भी आवश्यकता।
1: ओके, तो सतर्क भी रहना है और मौसम को एंजॉय भी करना है, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: ओके धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। तो भाई मौसम के बारे में आपको हम अभी अभी जानकारी दी।
1: बिल्कुल दानिश जी ने बताया, तो उसमें एक बात निकल के आती है कि मौसम को तो एंजॉय करिए लेकिन साथ ही साथ अलर्ट भी रहिए, क्योंकि आंधी चलेगी, अगर तेज हवाएं होंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास भी लोगों का ख्याल रखिए और एंजॉय करते रहिए,
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि यह धड़कन
1: लखनऊ की।

0: 9 बजकर 44 मिनट हो रहे हैं और जाहिर है कि ये वक्त होगा जब आप कहीं निकलने की सोच रहे होंगे या निकल भी चुके होंगे। और अच्छा, स्पेशली अगर जाने से पहले आप ट्रैफिक अपडेट सुनते जाइए तो शायद आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं ट्रैफिक एसआई विकास सिंह जी, उनसे हम जानते हैं ट्रैफिक की क्या कुछ अपडेट है। तो विकास सिंह जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है 100.7 एफएम रेनबो पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। क्योंकि पीक आवर्स का समय है, ऐसे में मार्गों पर जो है ट्रैफिक अधिक रहता है
1: जी।
2: और चूंकि छुट्टियों का भी समय चल रहा है सर, तो कुछ ही ऑफिस भी वर्तमान में खुल रहे हैं, स्कूल वगैरह नहीं खुला है, तो इस कारण से ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है और कोई अतिरिक्त डायवर्जन नहीं है। आज स्वर्गीय चौधरी शरद सिंह जी की
1: पुण्यतिथि है,
2: जिसके अवसर पर माल्यार्पण का कार्यक्रम विधान भवन के पास में प्रस्तावित है, जहाँ पर थोड़ा सा लोगों का आवागमन ज्यादा है, इसलिए विधान भवन वाला जो मार्ग है वो अगर आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इस मार्ग के प्रयोग से बचे, वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें ताकि आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। और कहीं विशेष जो है डायवर्जन नहीं है, यदि कोई डायवर्जन होता है तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं तक अवश्य अपडेट पहुंचाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, ये बड़ी अच्छी राहत की खबर है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहने वाली, लोग आराम से सुगमता से बढ़िया अपनी अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंच सकते हैं।
2: जी बिल्कुल,
0: थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी आज के ट्रैफिक के बारे में।
2: जी धन्यवाद।
1: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ ट्रैफिक एसआई विकास सिंह जी ट्रैफिक अपडेट के साथ, और इन्होंने बताया कि सब कुछ सामान्य है, आप आराम से निकलिए, लेकिन हाँ, इस आराम से चलने के लिए जरूरी होता है कि आप जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको जरूर फॉलो करिए। और साहब, एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, बड़ी दिल की तकलीफ है रूल ये, मतलब कई बार ऐसा देखने को मिलता है जाम लग गया, और जाम लगने का कारण पता है क्या होता है? जो रोड चल रही होती है, एक तरफ के लोग पूरी रोड को ब्लॉक कर देते हैं, तो सामने से जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसको निकलने की जगह नहीं होती, और जहां हम कुछ सेकंड्स में निकल सकते हैं वहां पर कई मिनट का जाम लग जाता है, कभी कभी तो ये जाम बड़ा लंबा हो जाता है। तो प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ सेकंड ही लगेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप एक के पीछे एक ऐसा करके चलिए तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूँ?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नौ बजकर 54 मिनट और ये समय है हमारे बाकी बचे साथियों के मेल्स पढ़ने का। और इसमें सबसे पहला मेल मेरे सामने है छवि राम सिंह जी का। इन्होंने अपना मेल भेजा है फर्रुखाबाद से और सभी को आमंत्रित किया है। इनके यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, भागवत सप्ताह चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद छवि राम जी, थैंक यू आपके मेल के लिए।
5: और हमारे पास मैसेज आया है, किसका मैसेज आया है हमारे पास, रजनीश पासवान का मैसेज आया है रामपुर सीतापुर से, और ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बोथ आरजेस, लवली प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू। ये लिखते हैं, पुष्पांजलि से सुन रहा हूँ, मुद्दे के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरी हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स बहुत वीक थी, हाई स्कूल में सबसे कम नंबर मैथ्स में आए थे, यानी 39 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और बस पास ही हुआ था। मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं मैथमेटिक्स से आगे स्टडी करूँगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा नंबर मैथ में ही आए थे, फिर बीएससी मैथ से किया, और कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बहुत प्यारा मैसेज,
4: क्या बात है। अरुण कुशवाहा जी ने हरदोई से अपना मेल भेजा है और कहते हैं, इस साल मैंने एक संकल्प लिया था जो मेरे लिए एवरेस्ट से भी ऊंचा लगता था, और वो ये था कि मैं ओवरवेट था 83 kg, लेकिन मैंने इस पर कंट्रोल किया और आज मैं 62 kg वेट का हूँ, क्या बात है।
5: और हमारे पास अगला मैसेज आया है कोमल मौर्य का, और ये लिखती है, ग्राम सकरा पोस्ट का कोरी लखनऊ से मेल कर रही हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और सबको गुड मॉर्निंग। हमारे पास इस समय आया है मेल नीलू यादव का, और ये लिखती है, राधे राधे, आई एम नीलू यादव फ्रॉम आशियाना बंगला बाजार लखनऊ, सभी प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं और मेरी बेटी अनुराधा और श्रेया की तरफ से, थैंक यू सो मच रोली मैम एंड सुस्मित सर, आपको भी। और ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, उन जिंदगी कम वक्त का सफर इन्हें उन्हीं लोगों के लिए जियो जो मुस्कान भी दें और अहमियत भी।
4: जगमोहन मिश्रा जी का मेल कृष्णानगर लखनऊ से, अभी जबलपुर में है, कहते हैं, मुद्दा बहुत ही अच्छा है। जीवन में अभिलाषाएं कभी कम नहीं होती, सिर्फ हिम्मत और साहस धैर्य की परीक्षा होती है, जो इसमें पास हो गया वो सफल हो जाता है। और कहते हैं, मेरा मकसद था, मैं उससे बहुत ज्यादा पा चुका हूं जो मैंने सोचा था किसी तरह देश सेवा करूं, और लगभग 8 प्रदेशों में 10-12 पावर प्रोजेक्ट्स में अपना सहयोग दे चुका हूं। समय के साथ साथ कुछ छूटता है, कुछ मिलता है, शायद हमें भी अब वो सब छोड़ना पड़ा, मकसद फिर भी कुछ ना कुछ करने का है, काम कर रहा हूँ, हौसला रखता हूँ। और ये इनका कहना, कुछ लाइन्स इन्होंने कहा था कि अटैच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत बहुत बहरहाल धन्यवाद आपका।
5: तो बस इतने सारे जो हमारे पास मेल्स आए हैं, आप सब ने हमें मेल भेजे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वाकई में जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इसी बीच में हमारे पास एक और मेल आ गया है
4: जी, राममोहन गुप्त जी का मेल है, कुछ पंक्तियां भेजी हैं, दो पंक्तियां पढ़ देता हूँ। शुरू से ही थी चाह बैंक सेवा करने की, सामाजिक कार्य साहित्य संग बढ़ने की, घर परिवार हित बहुत कुछ कर दिखाना, खुद ही के बल लक्ष्य भेद कर मुस्कुराना। और ये पंक्तियाँ इन्होंने अपने जो लक्ष्य था उसको पाने की बात कही है। भारतीय स्टेट बैंक में सेवारत हुए, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, और ये बहरहाल अपनी जिंदगी में अपने जो काम है उनके साथ ये लगे हुए हैं। इसके अलावा मुनेश कुमार राज जी का भी मेल था और इन्होंने कुछ पंक्तियां भेजी थी, बारिश की बूंदों में भी सुनाई देती है आपकी बात, और सुस्मित रोले की आवाज़ सही होती है, लखनऊ की शुरुआत, नई ऊर्जा मिलती है आप दोनों की आवाज़ से, मैं हर घंटे हर आपके जो प्रोग्राम है मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुद्दे पर इनका कहना है कि बचपन में देश सेवा का सपना देखा था और किस्मत मुझे पत्रकारिता की राह पर ले आई, शुरुआत में रास्ते कठिन लगे लेकिन फिलहाल मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ, हिम्मत कभी नहीं हारता और कलम को साथी बनाकर आगे बढ़ता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश कुमार राज जी, थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू सो मच मुनेश
4: जी का भी मेल बाकी है और

0: कहा था कि बात उन दिनों की है, स्नातक परीक्षा पास करने के बाद मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आगे क्या करूं। वालिद से पूछा तो उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं अपने बड़े पापा से पूछूं, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम वाम करो, ये तुम्हारे बस का नहीं। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन किया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया, लॉ कंप्लीट किया और पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। आज माँ बाप की दुआओं से मैं लॉयर हूँ, साथ में कोचिंग भी चला रहा हूँ।
1: क्या बात है, इसी तरह से अपनी जिंदगी के लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ती जाए। और फिलहाल देखिए हमारा जो इस समय हमारी जो घड़ी है वो इशारा कर रही है
0: कि अब बस चला जाए।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि रोहिणी शुक्ला आपके साथ रहने वाली है भाई नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। सो मैं तो यही हूँ सुस्मित की
0: आपसे टाटा बाय बाय कहता है, मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का भी आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जनकल्याण की राजनीति हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पोस्ट में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समृद्ध किसान और कृषि आधार अर्थव्यवस्था का विकास मॉडल प्रस्तुत कर भारत को एक नई दिशा दी। और अंत में हांगकांग में कल से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन आप सुबह 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: हो गए हैं 10:05 और ये समय होता है आपके फेवरेट प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स का, जिसमें आपको नॉन स्टॉप म्यूजिक एंजॉय करने को मिलता है। तो बस बिल्कुल देर किए बिना मैं अब तक प्ले करती हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, इस पल आप हैं और हम हैं, और फिलहाल ये जो बल है ये हमसे ये कह रहा है कि अब फिलहाल इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन आप कहीं बच जाएगा क्योंकि अगला प्रोग्राम जो आपका और भी ज्यादा फेवरेट है, जिसमें आप अपने मैसेजेस लिखकर भेजते हैं और साथ ही साथ हमें कॉल करते हैं, तो बस बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक होगा और न्यूज ब्रेक के उस पर वापस आ जाऊंगी प्रोग्राम लेकर। संदेश आपके गीत हमारे, तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। हमीरपुर जिले में ललपुरा थाना क्षेत्र के मोराकादर गांव के पास बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि 2 वर्षों से पुल का निर्माण चल रहा था। बीती देर रात 3 बजे 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिर गई। बरसात से बचने के लिए मजदूर पुल के नीचे सो रहे थे। कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे। पुल का स्लैब मजदूरों के ऊपर गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में कल देर रात सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मुंशीगंज के शंकरगंज चौराहे के पास मोड़ पर देर रात प्याज से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का पूरा जीवन देश के किसानों, मजदूरों और गांवों के उत्थान के लिए समर्पित था। अंत में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 150 रन ही बना सकी। जेमिमा रॉड्रिक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।

0: Luciano Hermano.
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: सुबह के बज चुके हैं 11:04 हो रहे हैं और ये टाइम है आपके फेवरेट प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, जब आप इंतजार कर रहे होते हैं अपने प्यारे प्यारे संदेशों को हम तक पहुंचाने का. और फिलहाल आपको मौका मिल रहा है fmakashwanilakhnow@gmail.com, ये हमारा मेल आईडी है और फोन नंबर सब आपको बताई है, तो बस लगातार हमें कॉल करते रहिए और हमें मैसेजेस भेजते रहिए. साथ में मैं आपको सुना दी रहूंगी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स. स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल. और इस समय आपके साथ कौन है, आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला.

0: और हमारे पास इस समय एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मुस्ताफ अली बोल रहे हैं।
0: फिर से नाम बताइए।
1: मुस्ताफ अली
0: जी, अली साहब बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: अरे फरमा, तपन सूरज में होती है, सहना जमी को पड़ता है, नजारे आप करते हैं तो अपना दिल को पड़ता है।
0: क्या बात है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने अपनी बात को कहा है। तो आप क्या करते हैं अली साहब?
1: मैं उड़द में पानी चला रहा हूँ। हाँ, मकई कट गई है, सब गई है।
0: रेनबो कितने प्यार से सुनते हैं आप, ये बताइए। रेनबो कितना सुनते हैं?
1: हम सुबह 6 बजे से लगाए थे, बिच्चे खोचे शाम के सुनी थे, हेलो एफएम और अफसार सुनी थे।
0: हाँ क्या बात है, मतलब कि आपको कार्यक्रमों के सारे नाम भी याद है ना।
1: और इधर जो है, अरे तो मेरे जो 7 बजे सावत है उसका सुनी थे।
0: तो आप जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सुनते रहते हैं। तो आज संदेश क्या देना चाहते हैं अली साहब?
1: संदेश यही है कि धूप गर्मी बहुत तेज हो रही है, लोग पानी पिए खूब और अपने अपने को ख्याल रखें।
0: ये तो है, वैसे मौसम ने थोड़ी करवट बदली है और आंधी तूफान थोड़े आए, हल्की बारिश भी हुई है, थोड़ी बारिश हुई है रात में।
1: हाँ जी, हमारे यहाँ पानी आए, बारिश हुई है, वैसे बूंदी बांदा आए के चला गया है।
0: अच्छा चलिए, बारिश अपने समय से जरूर आएगी, है ना, यही कामना करते हैं कि कोई नुकसान भी ना हो और ऐसी बारिश हो कि लोगों को उससे फायदा हो, है ना।
1: धान के बिहार के बनावा जाते धान बिहार बोल लिए।
0: वेरी नाइस। और आप अपने आप सब अपने जीवन की बातें, अपनी चीजों को हमसे शेयर करते हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए।
1: बस काम के में बहुत लगे थे, नाए पकड़ था, कोई पुलिस पकड़ लेते।
0: चलिए कोई बात नहीं, जब भी लग गया तभी खुश हो जाइए, ठीक है अली साहब, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

बिल्कुल, बीते लम्हे तो हमारी जिंदगी में जब भी हमें याद आते हैं जिंदगी को और भी खूबसूरत बना जाते हैं, और क्या पता अपने आने वाले सब दिन बीते लम्हों के हिसाब से काफी अच्छी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट टाइम अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने बीते लम्हों को याद करके इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। और फिलहाल एक बड़ी अलग सी बात हमें बताई है किसने, संदेश आपके गीत हमारे में जिला रायबरेली से, गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू और मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। देखिए ये अंदाज अलग है ना, एकदम प्यारा सा, और शुभ आशीर्वाद पहुंचे ये भी बहुत प्यारा सा, प्यारी सी बात है। और आज हमारे यहाँ रात्रि में बारिश हुई है, आंधी आई है, बिजली नहीं आ रही है, तो कृपया ऐसे में सभी लोग परेशान ना हो और थोड़ा सा सामंजस्य बनाएं अपने माहौल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक बात है, अगर जो भी चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं हमारे साथ आज प्रेजेंट टाइम में, अगर उनको हम समझ लें और उनको अपने लाइफ में कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ थोड़ा सा जिए, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत होती है ना। हमारे पास मनीष गुप्ता का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मनीष गुप्ता, गुसाईगंज, आपका प्रोग्राम शिमला में सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा संदेश ये है कि अपने पास पड़ोस गली मोहल्ले में थोड़ा सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे गंदगी ना फैले और दूसरों में बीमारी ना फैले। बिल्कुल अच्छी बात है मनीष गुप्ता जी, थैंक यू सो मच कि आप शिमला में भी अपना प्यार हम तक भेज रहे हैं। तो भाई इस समय लखनऊ में बैठे हैं और शिमला तक हमारी आवाज़ जा रही है, तो ये तो बहुत ही खुशनसीबी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये जो प्यार है, ये जो कंसिस्टेंसी है जो आप बना के रखते हैं हमारे साथ, ये ऑसम होती है, अपने आप में ऑसम होती है। इसके लिए वर्ड्स नहीं है जिन्हें हम बयां कर सकें बातों को। हमारे पास में ये आया है मेल, किसका आया है, कौशिक का आया है मेल हमारे पास, और ये लिखते हैं राजकोट गुजरात से, कौशिक अस्मिता बड़वाड़ा परिवार। हेलो नमस्ते मैम, सुप्रभात, केम छो मजा मचो। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वो ये तय कर देता है कि आप किस क्लास में। बिल्कुल ठीक बात है, और जैसे ही कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है हमें पता चल जाता है कि भाई क्या सोच रहा है, और ये या इसका ग्राउंड क्या है, या ब्रिंकिंग क्या है, या जो भी है, व्हाटएवर। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई मजबूरी, कोई कमी रह जाती है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो उतना अपग्रेड नहीं हो पाता जितना उसे होना चाहिए, है ना। तो कभी ना कभी आज नहीं तो कल वो ये बात समझ भी जाता है।

मेरे दिल में ये बात आती है कि ये अगर कभी हमारा किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो जाए जो उतना लेवल की चीज़ों में अपने आप को ना रखता हो जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इतना भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है. और जितना हम साथ दे सकते हैं उसका, जितना हम उससे दोस्ती रख सकते हैं उतनी रखनी चाहिए, जितना हम उसे सिखा सकते हैं उतना सिखाना भी ज़रूर चाहिए. और दूसरों की मदद करने से ही तो सब कुछ अच्छा होता है ना हमारे जीवन में, आज नहीं तो कल उस चीज़ का हमें फल भी मिलता है ना. हमारे पास महेंद्र दीपन का मैसेज आया है और बड़ा ही सुंदर सा और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिजाइन करके एक बड़ा ही प्यारा सा कार्ड भेजा है. और ये लिखते हैं प्रिय आवाज आरजे रोली मैम जी के साथ, संदेश आपकी गीत हमारे एक अनूठा कार्यक्रम जो जोड़ती है दिल, जो जोड़ता है दिल को दिल से दिल तक. बिल्कुल सही बात है. लिखते हैं, मैं महेंद्र दीपन गांव रूड़ नागौर राजस्थान से, आप संदेश आपकी गीत हमारे एकाएक नियमित उत्साही श्रोता हूँ. आज इस खूबसूरत प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने सभी रेडियो दोस्त और श्रोताओं तक एक बेहद जरूरी संदेश पहुंचाना चाहता हूँ. जैसा कि हम सब देख रहे हैं, बारिश का मौसम अब दस्तक दे रहा है. ये समय केवल उत्सव मनाने का नहीं बल्कि हमारी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने का भी है. हम सभी जानते हैं कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण ने प्रकृति और को संतुलन बिगाड़ रखा है. अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें. और मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि इस बारिश के मौसम में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी जिम्मेदारी लें. याद रखिए, आपके द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार बनेगा. आइए हम सब मिलकर अपनी पृथ्वी को फिर से हरा भरा स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प लें. मैम आपसे अनुरोध है कि मेरे संदेश को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके. बिल्कुल ठीक बात है, आपका प्रोग्राम मेल शामिल हो चुका है, तो खुश हो जाइए महेंद्र जी. और वैसे तो आपका हर प्रोग्राम में हर मतलब हर घंटे जब भी आपका मैसेज आता है जरूर पढ़ा जाता है. और यकीन माने आपका ये प्यार, आपकी कंसिस्टेंसी हमें बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए. और फिलहाल अभी बहुत कुछ बाकी है, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, वो तो रात के 12 बजे तक रहता है. लेकिन ये जो बातों का सिलसिला है ना, रोली की बातों का सिलसिला, ये रुकने वाला नहीं. लेकिन एक गाना तो बनता है ना, चलिए ये गाना एंजॉय करते हैं. बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: और हमारे पास इस समय एक कॉल है, कॉलर जुड़ी है हमसे बात करने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं? गुड मॉर्निंग
1: जी, मैं यास्मीन मानो बात कर रही हूँ, विश्वा सीतापुर से।
0: अच्छा, सीतापुर से। यास्मीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहिए, क्या कहना चाहती हैं आज आप?
1: कहना मैं ये चाहती हूँ, मेरा संदेश ये है मैम, बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो जो डिलीवरी बॉय आते हैं तो उनको एक बार पानी का जरूर पूछें, हो सकता है वो प्यासे हो, उनके पास पानी ना हो।
0: डिलीवरी बॉय?
1: जी जी मैम।
0: तो हाँ ठीक है, थोड़ा रिस्की नहीं हो सकता? मतलब कभी उन्हें घर ना बुलाएं अपने, बाहर से ही आप?
1: नो मैम, घर में नहीं हम कह रहे हैं, तो बाहर वो आते हैं पार्सल देने वगैरह, तो उसके बाद पूछे कि आप प्यासे तो नहीं है, अगर वो बोले तो उनको पानी दे, तो घर में बुलाने की जरूरत।
0: हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी था, है ना, कभी घर ना बुलाए, आप बाहर के बाहर ही आप उन्हें पानी ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं इस टाइम ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ।
0: और रेनबो कितनी रेनबो कितना सुनती हैं जी? हेलो यास्मीन जी,
1: जी मैम क्या बोला आपने?
0: आप रेनबो कितना सुनती हैं?
1: जी मैम, रेनबो मैं वैसे तो पूरा दिन खूब से, जब से मैं ज्वाइन कर ली ब्यूटिशियन का कोर्स, तब से मैं बहुत कम सुन पाती इस टाइम।
0: ओके, नहीं नहीं अच्छा है, आप अपना कोर्स भी करते रहिए और साथ के साथ रेनबो भी सुनते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, फिर से कॉल करिएगा। बाय बाय।

0: काम हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लोगों की आदत होती है कि अगर कुछ काम अच्छा सा करना है, मतलब कोई दिमाग वाला काम करना है या थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना है, तो कॉफ़ी सबसे पहले बना करके टेबल पर रख कर और आराम से बैठ कर सबसे पहले 2-3 बार उसकी चुस्कियाँ लेकर के फिर काम स्टार्ट करना अच्छा लगता है ना। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं जहाँ पर लोग जाते ही सबसे पहले कॉफ़ी पर टूटते हैं। वैसे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास किसका मैसेज आया। वारिस अली खान जी कहते हैं, रोली जी नमस्कार। नमस्कार वारिस जी, कैसे हैं आप? लिखते हैं कि आपने सुपर हिट सॉन्ग्स में ब्यूटीफुल सॉन्ग्स प्ले किए, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं, सॉन्ग्स ना तो ज़्यादा पुराने थे ना ज़्यादा नए थे, आपकी सॉन्ग प्लेइंग लिस्ट बहुत अच्छी थी, थैंक यू। आपको अच्छे लगे इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, अच्छी अच्छी बातें अब तक पहुँचाई जाए। ये लिखते हैं, अर्ज है मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी में मिल जाएगा, बस तेरा किरदार ही लोगों को याद आएगा। और संदेश लिखते हैं, परिवार तब तक नहीं टूटता जब तक फैसले बड़ों के हाथ होते हैं, लेकिन जब परिवार का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर परिवार टूटने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने एडवोकेट वारिस अली खान जी की, परिवार में जो बड़े हैं उनको बड़ों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अक्सर आजकल बच्चे ऐसे करते हैं कि थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, वैसे थोड़ा सा उनको स्कोप देना भी चाहिए कि बड़े बन जाए, लेकिन हाँ जो डिसिप्लिन है वो अपनी जगह पर है, घर का जो एक वातावरण है वो अपनी जगह पर है और वो बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज भेजा। और वैसे आपको बता दें, थोड़ा समय और हमारे पास बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक सॉन्ग और उसके बाद वापस हो जाऊंगी मैं आपसे ढेर सारी बातें करने। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूँ?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
9: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
10: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

और हमारे पास इस समय एमके राज का मैसेज आया है. आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम 100.7 एफएम रेनबो पर. और इस समय आपके साथ है आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला. और हमारे पास एमके राज का मैसेज आया है, लिखते हैं आरजे जी को प्रणाम. वे आपको भी सादर प्रणाम मोनेश कुमार राज जी. और ये गाँव भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से हमें भेजते हैं मैसेज. लिखते हैं कि आंधी के साथ बारिश हुई खूब जमकर, यहाँ सावधान रहे सब, ना पनपे बीमारी का जहां. आरजी जी, आज हमारे लखीमपुर खीरी में आंधी के साथ बारिश खूब जमकर हुई है. इस मौसम में सबसे निवेदन है कि कहीं भी जल भराव ना होने दे, नहीं तो बीमारियां और मच्छर पनपेंगे. साफ सफाई का ध्यान रखें. आपका कार्यक्रम हर घंटे लाजवाब है और हर घंटे मैं आपको लाइव सुनता हूँ और आपकी आवाज़ से दिन बन जाता है. भाई, सारे आरजीज को ये मैसेज जाता है जो इतनी मेहनत करके आप सबके लिए इतने सारे प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके के अलग अलग फ्लेवर के लेकर के आते हैं. और उनको ही ये सारी बातें जाती हैं और साथ में मैं भी ले लेती हूँ थोड़ी सी, है ना, तो खुश हो जाती हूँ. 11:47 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो पर संदेश आपकी गीत हमारा. और फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करिए, उसके बाद वापस आते हैं.

0: और हमारे पास मैसेज आया है ब्रह्मेश सोनी जी का, और ये कहते हैं कि बेस्ट कार्यक्रम देने के लिए बहुत बहुत बधाई रोली जी आपको, थैंक यू सो मच, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने नाम लिखा है पिंकू सोनी, टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मेरे यहाँ मेरा ये कहना है कि अनावश्यक किसी बेजुबान की जान न लें, देख कर ड्राइव करें, मेरे भतीजे ऋषभ सोनी की तरफ से। बिल्कुल ठीक बात है, और ड्राइव तो वैसे भी बहुत सेफ करनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, सलाम अलैकुम।
0: सलाम, कौन बोल रहे
1: हैं? साहिबा अंसारी, मेहरबान मुझे लखनऊ से ही से बोले।
0: हेलो साहिबा, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे, अपना बताइए आप कैसे?
0: मैं भी अच्छी हूँ। तो कहिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
1: मैम आइए, हम आपको बिरयानी खिलाते हैं।
0: थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो बताइए क्या कहना चाहती हैं, आज क्या संदेश देना चाहती हैं सबको?
1: संदेश में हम ये लाए, जैसे कि मैम घर में लाइट वगैरह होती है और जो नीचे बोर्ड लगा देते हैं तो बच्चों को ना चलाने दें। बच्चे जो कभी कभी नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, सरिया होती है, डंडा जो भी होता है उससे बच्चे चला लेते हैं।
0: थोड़ा रिस्की हो सकता है, करंट
1: के वहाँ गए तो वहाँ हमने देखा वाईफाई बोर्ड चालू कर रहे थे,
0: करंट लगने का डर रहता है ना साहिबा जी। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा संदेश दिया, और ऑब्वियसली इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि
1: हमारी आपसे आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
0: बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, चलिए खुश हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, थैंक यू जी। बताइए जल्दी से
1: नाम भी लेना चाहते हैं
0: जी, नाम ले लीजिए जल्दी से।
1: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील हर मंसूरी भाई, बाबू अंसारी भाई, जावेद तालिब अंसारी भाई, जावेद अख्तर भाई, सत्यम कुमार भाई, सलमा परवीन अंसारी हैं, गुलाब साहब की हैं, महक अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी सिंह की हैं,
0: सब लोगों को आपकी तरफ से ये ट्रैक। ओके, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए।

0: और दोस्त इसी के साथ आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं, ये देखिए हिलते हिलाते भागते एकदम आ चुकी है उनसे हेलो बोलते हैं। हाय
1: जी, बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ आपकी दोस्त शिखा, और अब से ये अगले जो घंटा होगा वो आप रहेंगे मेरे साथ।
0: तो बस शिखा के साथ रहेगा। देखिए टाइम जो है ना कैसे जल्दी जल्दी चला जाता है, एकदम टाटा बाय बाय कह के पता ही नहीं चलता। तो फिलहाल रोली शुक्ला आपसे कहती है अपना ध्यान रखिए, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, प्यार से अपनी जिंदगी को जीते जाइए और खुश रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की। तो फिलहाल दोस्तों मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और शो में।

0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को SDRF के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति चौधरी साहब की प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनकी स्मृतियों और आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। पूर्वांचल का जौनपुर जिला कैंसर के रेड जोन में आ गया है। यहां पिछले 3 महीने में कैंसर के 284 संदिग्ध मिले हैं। सभी में मुंह के कैंसर के लक्षण हैं। इन सभी के पीछे कारण देशी नशा दोहरा का सेवन है। ये खराब सुपारी से बना वो नशा है जिसके बेचने पर रोक लगी है। फरवरी और मार्च 2026 में जिले के सरकारी अस्पतालों में लगाए 175 शिविरों में 8,070 लोगों के मुंह की जांच की गई। इनमें से 284 लोग संदिग्ध पाए गए जिनको जांच के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रभारी CMO प्रभात सिंह ने प्रशासन से दोहरा की बिक्री पर रोक लगाए जाने की अपील की है। अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक बड़े अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 गर्भवती महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हसनपुर क्षेत्र में स्थित गांव चक्की मड़ैया सतैड़ा में टीम ने एक मकान पर छापा मारा। टीम ने मौके से अवैध रूप से लिंग परीक्षण कर रहे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। CMO डॉ योगेंद्र सिंह ने बताया कि दलालों के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा की महिलाओं को यहां लाया जाता था। जांच में सामने आया कि भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 35,000 रुपए तक मोटी रकम वसूली जा रही थी। मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक के लिए भी आधिकारिक बोली पेश कर चुका है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके फेवरेट प्रोग्राम का और वो प्रोग्राम है स्वयं सिद्धा, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर शुक्रवार स्वयं सिद्धा में हम बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने दम पर सक्सेस हासिल की और साथ ही बन गई प्रेरणा का स्रोत औरों के लिए। तो दोस्तों हम बातें शुरू करें, उससे पहले मैं सोच रही एक प्यारा सा गाना आप तक पहुंचा दूं, तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आ रहा है, हम सब एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जी, तो प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना शान की आवाज में, छोटी छोटी तमाशे पानी जैसी बताशे। जी हाँ, इतना बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों, हम कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं स्वयं सिद्धा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में उन कामकाजी महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो अपने कार्य के साथ साथ घर को भी एक बहुत ही बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संयुक्त करती हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य पे एक कड़ी आप सुन रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। जिसमें हमारी आकाशवाणी की ही कुछ ऐसी स्वयं सिद्ध महिलाएं हैं, जैसे श्रीमती शारदा लाल जी और श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी। तो चलिए, एक कड़ी है जो बची है, आज आप तक आखिरी श्रृंखला है, ये पहुंचानी है, और जिसमें बात करी है इन दोनों से ही। जी हाँ, श्रीमती शारदा लाल जी से, श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी से ममता उपाध्याय जी ने। तो चलिए सुनते हैं उस श्रृंखला की एक आखिरी कड़ी, तो कुछ यादें और कुछ बातें।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का कारवां। इस सुरमई यात्रा में जुड़े असंख्य कलाकार, वार्ताकार और प्रसारणकर्ता, जिनके पास आकाशवाणी से जुड़ी यादों और बातों का खजाना है, और ये खजाना अनमोल है। अनमोल यादों और बातों को लेकर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ी हमारी दो वरिष्ठ प्रसारण साथी, श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आज सुनिए इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी, सुनिए और आनंद लीजिए। नीना जी, तो आप चलते हैं और कुछ उनके अनुभव खजाने से निकालते हैं, कुछ और मोती हीरे क्या निकालेंगी आप?
2: कंसर्ट की बात बताएं तुम्हें।
1: जी जी जी,
2: वाकई के नैयर साहब, पी माथुर जी के सामने पहले कंसर्ट बहुत होती थी। खुद अपनी बात बताते हैं, और उसमें अनाउंसमेंट के लिए बहुत बार हमी को जाना पड़ता था।
1: जी, जी, जी।
2: तो उसमें ये था कि अब छोटी वाली बात बताते, पहले ये होता था कि भाई आज जाना है अनाउंसमेंट के लिए, अब आज ये साड़ी पहनी, अब हफ्ते में 3 अगर कंसर्ट हो गई या 2 हो गए, या महीने में 4-5, तो 4-5 साड़ियां चाहिए। अब शुरू शुरू में आया है कहाँ इतनी साड़ियां, आज इनसे मांगो कल। तो हम लोग आपस ही में आशा दी थी, वो अपनी साड़ी कभी देती, आज तुम ये पहन ले।
1: जी जी,
2: तो उस तरह से हम लोग करते थे। और कंसर्ट्स में नैयर साहब के समय में बहुत अच्छे कंसर्ट्स हैं, और बहुत ही अच्छा लगता था। अभी तो हम लोग नए स्टूडियो में, उस समय जब हम आए थे तो पुराना स्टूडियो था, वहाँ स्टूडियो नंबर 2, 5 और 1 नंबर स्टूडियो हुआ करता था। 1 नंबर स्टूडियो जो था, तो उसमें ये छोटी मोटी, जैसे अभी कंसर्ट की बात करी इन्होंने, या बिस्मिल्ला खान साहब की रिकॉर्डिंग, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर होती थी,
1: जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल है अब, वो
2: अब जो कॉन्फ्रेंस हॉल

0: बना दिया गया है
1: जी जी
0: जिसे
1: हाँ
0: उसमें
1: हाँ
0: तख्त पड़ा हुआ था बड़ा सा, दो चार पड़े होंगे, मतलब स्टेज टाइप का वैसे था, और सामने कालीन और वो सब बिछी रहती थी वहां पे। उस समय मल्का पुखराज आई थी, नैयर साहब ने बुलाया था।
1: अभी तो मैं जवान हूँ, अभी
0: अब
1: तो
0: भी
1: मैं
0: तो मैं
1: जवान।
0: जवान
1: हाँ जी जी
0: हूँ।
1: जी
0: मल्का पुखराज जी आई थी
1: हाँ
0: और नैयर साहब ने हमसे कहा था कि एक तो वो पवार साहब ने मूर्ति बनाई थी बेगम अख्तर जी की, तो बेगम अख्तर जी की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया था। शाम को उन्होंने कहा, नीना मूर्ति के ऊपर तो कुछ पढ़ना चाहिए। हमने कहा, जी पढ़ना तो चाहिए, तो इसका कवर अब तुम बना के लाओ। फिर हम और उस समय म्यूजिक पैक्स, यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, तो हम दोनों गए हजरतगंज, वहां से कपड़ा खरीद के लाए। रात में बैठ के हमने कवर सिला, सुबह आकर के मूर्ति पे ढका। उनके
1: हाँ
0: नया
1: तब
0: साहब को पसंद आया। फिर जिस समय मल्का पुखराज आई थी, क्या बताएं हम ममता, कि मतलब क्या वो थी, उनकी बेटी थी, दामाद थे, इतने खूबसूरत, खूबसूरती की बात तो अलग रख लो, लेकिन जो गाया उन्होंने, और लास्ट में तो फिर एक फरमाइश हुई, पूरा स्टूडियो खचाखच भरा था, एक नंबर। और लास्ट में उनकी कि अब भी तो मैं जवान हूँ, उसके बाद जो उन्होंने अभी तो मैं जवान हूँ आज तक हमारे कान में।

0: ऐसी ऐसी कंसर्ट्स होती थी, या तीजन देवी. तीजन देवी जब आई उस समय, जिस समय आकाशवाणी ने उनकी कंसर्ट करी थी, तो उस समय अनाउंसमेंट उनका हम ही ने किया था. रविंद्र आलय में था वो
1: जी,
0: होटल था आकाशवाणी के पास में, उसी में रुके. तो दिन में म्यूजिक पर्सन थे, नीना चलो उनसे डिटेल्स ले लो चल के. तो हमने कहा ठीक है. फिर हम लोग दीना चढ़ के ऊपर गए, उस समय दीना चढ़ के ऊपर गए थे, ये समझ सकते हैं आपकी कितनी सिंपल थी वो. तो एक उनके ग्रुप के 6-8 लोग थे उस समय. तो हमने सोचा ये तीजन देवी जी, इनका मतलब क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया. फिर उसके बाद जिस समय स्टेज पे अनाउंसमेंट किया और जो वो आई है ममता, मतलब क्या कहें कि आज भी सांस रुक जाती है.
1: वो पंडवानी,
0: क्या पंडवानी उन्होंने, और क्या मतलब इतना जबरदस्त वो प्रोग्राम था कि हम कह नहीं सकते.
2: अच्छा
3: संविधानी ले कहे है मित्र, आप मन ऐसे ढंग के लड़ाई करा तो जैसे 10 दिन के लड़ाई भी उसमें पिता मा लड़के 10,000 राजा ले मार के और विजय संग बजा के शिविर लौटी, पर पांचों भाई पांडव ले को हाथ नहीं ले.

0: अपनी खुशनसीबी इसको कहेंगे कि बेगम अख्तर जी जो थी उन्होंने लाइव आइटम दिया था, सुबह 8:30 बजे का था, अभी तक हमें चंक याद है वो
1: जी जी।
0: और हम थे, दो नंबर स्टूडियो था जो पुराना वाला हमारे स्टूडियो में, उसमें एक तरफ म्यूजिक का होता था, एक तरफ शाम में प्रोग्राम ग्रामीण चलते थे।

0: था, अभी तक हमें चंकी याद है वो
1: जी जी,
0: और हम थे दो नंबर स्टूडियो था जो पुराना वाला हमारे स्टूडियो में, उसमें एक तरफ म्यूजिक का होता था, एक तरफ शाम में प्रोग्राम ग्रामीण चलते थे, उसमें था उनका।
1: आप अभी भी भाव विभोर हो जा रही हैं।
0: अरे
2: ये पहुंच गई
0: आ करके पुराना ड्यूटी रूम जो वो ऐसे पैर पे पैर रख के बैठी, और मुन्ने खान साहब तबला उनके साथ बजाते थे, गुलाम साबिर कादरी उनके साथ सारंगी बजाते थे, तो वो दोनों खड़े, और मुन्ने खान क्या हाल है, इस तरह से

0: बता नहीं सकते कि कैसे कैसे लोगों से मिले, कैसे कैसे आर्टिस्ट हमने देखे, मतलब कितनी विनम्रता थी, कितने अच्छे थे वो लोग कि क्या ही बताएं।
1: कला साहित्य है, संगीत है, राजनीति,
0: वैसे ही साहित्य के
1: अंदर लोग यहाँ आते रहे
2: हुए। ममता जी हम लोग के पास
0: के नैयर का वो याद है विद्या निवास, कितना खचाखच
2: जबरदस्त,
0: यहाँ गैलरी में गद्दे बिछे थे।
2: देखिए लेकर के मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तब मैं रामपुर से आई थी
1: जी।
2: तो बड़े सहम सहम के मैं लखनऊ में कदम रख रही थी, विद्या निवास मिश्र को आना था, बड़ी मतलब मन में उत्सुकता हुई कि उनको देखने की बड़ी इच्छा थी। बहरहाल उस समय नैयर साहब ने बताया कि आप लोग सुनने आइएगा, और नंबर एक स्टूडियो इतना भर गया कि मैं कहीं उसमें जा ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं जगह मिली। बहरहाल उनको देख करके हम लोग इतने क्या अभिभूत हुए कि हम बता नहीं सकते। सिल्क का कुर्ता पहने, जैकेट, बड़ा सा माथे पर टीका, गोरा रंग, पान से रंगे होंठ, अद्भुत उनका व्यक्तित्व। और जब वो बोलने लगे तो हम लोग स्तब्ध सुनते रहे।
0: और पहले समय का बंधन नहीं होता, जब होता बोल रहे हैं जितना ही वो तो उतना बाद में आप वो देखे जाएंगे, चाहे
2: उसको एडजस्ट करते रहिए,
0: एडिट करिए, चाहे आप जिसको कहते हैं ना धारावाहिक रूप में प्रसारित करिए, चाहे कुछ भी करिए।
1: हाँ।
0: तो इस तरह से होते थे प्रोग्राम, और इतने रसिक श्रोता भी थे, इतने साहित्य प्रेमी श्रोता भी थे कि सब उसमें आते रहते थे
1: जी।
0: और ममता एक बात और बताएं, अब शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बोल लेकिन फिर भी
1: बिल्कुल बिल्कुल अभी बहुत
0: इसलिए बोल रहे हैं कि सुनने वाले भी कहेंगे, तुम भी कहोगे, शायद जो यहाँ पर है वो भी कहेंगे पुराने स्टूडियो ये कर रहे हैं अभी तक उसी से जुड़ी हुई। जबकि जब नया स्टूडियो ये बना तो सबसे पहले जब यहाँ की टेस्टिंग हुई तो यहाँ भेजे गए कि भाई जाओ वहाँ से अनाउंसर्स बूथ से जा करके प्रसारण करो
1: जी, जी।
0: तो यहाँ से प्रसारण किया, फिर आया इसका इनॉग्रेशन डेट कि इसका इनॉग्रेशन किया था उस समय प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, 26 नवंबर 1978 की बात है
1: जी, जी।
0: वो प्रोग्राम जो था ऑडियंस के सामने था, अनाउंसमेंट हमें करना था कि, और उस समय के जो डीजी थे चटर्जी साहब हुआ करते थे वो आए थे, और वाधवा साहब थे वो डीडीजी थे। सुबह से उन्होंने इतनी रिहर्सल करवाई थी कि शाम तक जब एंड परफॉर्मेंस का टाइम था उस समय तक ये लगा, फिर बाद में उनका अब जाओ चेंज करो और फिर आओ साड़ी वाड़ी पहन के। पहले तो वही बात है ना कि लिमिटेड चीज होती थी, अब देखा तो जो साड़ी हमने पहनी वो तो पीछे वाले रंग से मिल रही थी स्टेज के क्योंकि मैरून सी हमारी भी साड़ी थी और मैरून सा पीछे का पर्दा भी था। फिर अरे क्या, फिर जल्दी से घर से ब्लू कलर की साड़ी मंगाई, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के जब आए प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आ करके हम ड्यूटी रूम में बैठ गए, दोनों पैर ऊपर उठा करके क्योंकि मैं पैरों में इतना दर्द। तब तक के माथुर जी थे उस समय, वो अंदर आए ड्यूटी रूम में, उनका वाह बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, कल इसकी छुट्टी करो

0: कल इसकी छुट्टी करो ये रेस्ट करेगी तो बहुत मेहनत करी थी
1: समझते थे
0: वरना तो रिहर्सल के लिए भी आजकल जरा सी इतनी सी होती तो पूरा पूरा दिन दे दिया जाता है रिहर्सल के लिए पहले नहीं मिलता था ड्यूटी तो आप कर ही रहे हो अपनी
1: ड्यूटी
0: के साथ
2: माता जी आकाशवाणी में बोलना ही एक काम नहीं है आकाशवाणी से जो कुछ हम बोलते हैं उसमें हमारी संवेदना जुड़ी होती है वो संवेदना जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है जैसे इन्होंने कहा नीना जी ने कि अगले दिन उनको छुट्टी दे दो ये कोई छोटी बात नहीं है
0: बहुत बड़ी चीज होती है
2: अगर संवेदना से रहित हो जाए तो जीवन बड़ा व्यर्थ हो जाए
1: जी जी और रेडियो में जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत संवेदनशील होते हैं क्योंकि आप यदि भावनाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जो आप
2: कार्यक्रम कैसे करेंगे
1: और जो बोल रहे होते हैं उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी तभी वो सजीव शब्द बनते हैं मतलब अक्षर
2: एक बात और ममता जी मैं ज्यादा तो नहीं
1: जी देखिए अभी नीना जी ने कहा था कि जब पहले बड़े महानुभाव आते थे जब वो बोलते थे तो उनको रोका नहीं जाता था
2: नहीं।
1: उसका धारावाहिक बना दिया जाता था या उसको किश्तों में बजाया जाता
2: था। आप हम लोगों को रोक नहीं रहे हैं।
1: मैं आपकी बात को किश्तों में बजाऊंगी आप बोलती रहिए
0: काम की बातें चुन लेना
1: नहीं सब बातें काम की है।
2: पिक्चर में अगर हॉरर सीन ना हो तो पिक्चर बेकार मानती है आप
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: तो हमारे काम में भी हॉरर सीन आए हैं
1: अच्छा
2: मैं कार्यक्रम करती थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तो क्षेत्र में जाकर के लोगों से बातचीत करके रिकॉर्डिंग करके लाना ये तो आपको मालूम ही है एक बार मैं लखीमपुर गई काम हो गया एक बस मुझे मिली जो मुझे सीतापुर तक ले आई और हमने सोचा सीतापुर से तमाम बसें जाती हैं हम चले जाएंगे घर हम सीतापुर आ गए शाम हो गई अंधेरा हो गया और अंधेरा हो गया कोई बस नहीं उसके बाद एक सज्जन वहीं टहल रहे थे सिगरेट हाथ में दबाए हम अपने मन में सोच रहे थे आज तो शारदा तुम गए काम से खैर बहरहाल पान वाला जो बैठा था अपनी गुमटी में वो हमको देख रहा था वो भी पता नहीं क्या सोच रहा था बहरहाल हमने पान वाले से पूछा कि भैया आप कोई बस नहीं आ रही बहुत देर से तो उसने कहा दीदी यहाँ अब कोई बस नहीं आएगी अब सब बसें यहाँ से निकल गई हैं तो उन सज्जन ने आके हमसे कहा कि देखिए मैं आपकी वजह से यहाँ टहल रहा हूँ आप अगर उचित समझें अगर आपको ये सही लगे तो मेरे साथ चलिए पास में मेरे एक मित्र का घर है आप वहां रुकिए सवेरे आप चली जाइएगा
1: अब
2: आप सोचिए कि मेरी मना स्थिति क्या होगी क्या सोचा होगा मैंने मैंने कहा आप तो लगता है ये पिक्चर का जबरदस्त सीन आ रहा बहरहाल
1: आपके मन में बहुत सारी
2: बड़े सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था बहरहाल हमने कहा हमें अब विश्वास तो करना पड़ेगा इनके ऊपर उनके साथ हम गए दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिखा था घंटी मत बजाइए यहाँ दिल का मरीज रहता है अब आप सोचिए
0: अब तो और भी चाहते हैं कि हालत बेकार
2: अब और मेरी हालत
1: उनकी दिल की अंदर घंटी बज रही होगी कि अब होगा
2: बहरहाल मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था बहरहाल एक सज्जन ने दरवाजा खोला उनको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहां से आएंगे इनकी बस कोई उनको मिल नहीं रही है तो उन्होंने कहा आप आइए अंदर आइए इतनी देर में उनकी वाइफ भी आ गई और 1:30 बजे रात में हमने उनके साथ खिचड़ी खाई और सवेरे 6 बजे की बस हमने पकड़ के लखनऊ आके दम लिया अब आप सोचिए पूरी घटनाक्रम है मेरा
0: शारदा जी के ये एक्सपीरियंसेस जो है ना बहुत जबरदस्त हैं क्योंकि ये फील्ड में बहुत जाती थी
2: लोग कहते थे कि ये महिला अपने घर में कब रहती है
1: मतलब रेडियो का प्रसारण सिर्फ माइक्रोफोन के सामने ही नहीं होता है सिर्फ स्टूडियोज में ही नहीं होता है उसके पीछे जो फील्ड का वर्क है
0: स्टूडियो तो सबसे बाद में आता है सीधी बात जहाँ पर हम हैं वो बाद में आता है हमारे पास तो जिसको कहते हैं ना पका पकाया सामान आ जाता है बस वो हमें आप लोगों को परोस देना है ये काम हमारा होता है और इनका काम सारी जगह से क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको बटोर के लेकर के आना होता है फिर उसको एक कंपैक्ट तैयार करके देना होता है
2: और उस समय ममता जी हमने जो महिलाओं की स्थिति देखी वो देख करके मैं दंग रह गई गांव में महिलाएं कितनी देरी स्वास्थ्य से बिल्कुल एकदम लाचार कुछ भी नहीं खाने को उनके पास किसी को कोई फिक्र नहीं वो अपना जीवन कैसा जी रही हैं ऐसी महिलाओं से हमने बात की उन्होंने कहा रेडियो में हमारा अगर नाम अगर हमारा पति सुन लेगा तो हमसे कहेगा कि तुम जाओ अपने मैके चली जाओ हमारे साथ मत रहो आप हमारा नाम मत बताइएगा ऐसे ऐसे लोग
1: हाँ, और वो समय आपने देखा और उन जो महिलाओं की स्थिति रही होगी उनका जो दुख रहा होगा
2: बहुत दयनीय
1: उसको आपने अपने कार्यक्रमों में लाई होंगी आप है ना और वो लोगों तक जब श्रोताओं तक पहुंचा होगा तभी वो कार्यक्रम जो है वो उनके दिल को भी छुआ होगा क्योंकि उस कार्यक्रम ने आपको भी छुआ था तभी

0: या आपने उसे बनाया। अब जो बातचीत हम आगे करेंगे आप दोनों से, उससे पहले शादा जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: ममता जी, दीदार का आप कोई भी गाना बजा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तमाम गाने ही गाने हमारे आसपास हैं।
0: तो हम सुनते हैं गीत को, उसके बाद फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: सखियों, बचपन के दिन तो यूं भी भुलाए नहीं भूलते, और बचपन या उसके बाद की उम्र में तो बचपन और भी याद आता है। बचपन से याद आया कि अक्सर हमें घर में हमारे पुकारू नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि गोलू, रोलू, पिंकी, टिंकी, और आकाशवाणी में भी स्टॉक कैरेक्टर के नाम रखे जाने की परंपरा रही है। तो शारदा जी और नीना जी, ये बताइए कि आप लोग ये समय में क्या इस तरह के नाम रखे जाते रहे हैं?
1: पहले तो यही होता था ना, भौजी है, ये वो है, वो उस तरह से सब
0: एक पात्र का नाम हुआ पात्र का नाम। आप क्या बनती थी शारदा जी?
2: मैं तो सिर्फ अपने नाम से ही जानी जाती थी।
1: शारदा जी तो अपने नाम, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी थी वो भानुमती भौजी थी,
2: भानुमती
1: जी, या अम्बेश्वरी श्रीवास्तव थी वो अम्बे जी थी, पनघट का नाम होता था अम्बे भौजी, नंद हम बनते थे शुरू में।
0: अच्छा,
1: इस तरह से आपस में ही सबका हो जाता था कि वो भौजी है, हम नंद है, वो सास है सुमित्रा जी, उस तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम।
2: मैं रेडियो में आई हूँ उससे पहले ही परंपरा थी कि लोग अपना नाम नहीं बताते थे, उसके बाद नाम बताने शुरू हो गए और लोग जानने लगे इनका नाम ये है।
1: जैसे कृष्णा मिश्रा जी, दाई भैरव बाबा रमई काका थे, उनका चंद्रभूषण त्रिवेदी नाम था ना, तो उनका नाम नहीं, वो रमई काका भैरव बाबा ये था उनका
0: जी।
1: और वैसे ही दाई का, वैसे ही वो अर्जुन लाल जी,
2: अर्जुन लाल जी थे, और ये तो हम लोगों से भी बहुत पुराने समय के लोग हैं,
1: लेकिन आए तो थे ना, देखा तो
2: हमने, देखा
1: सबसे, मिले
2: उनसे, उनके कार्यक्रम सुने हम लोग। जैसे दाई ने जोर से कहा तो वो दाई से काका पलट के कहते कि अरे इतनी जोर से कहे बोलती हो, कहा मित्र ने बहन।

0: जी भैरे बाबा कार्यक्रम
1: नहीं हमने तो मतलब लाइव उनके आइटम्स ऑन ड्यूटी रहे हैं
0: जी जी जी
1: लोकायतन में एक दिन फिक्स था उनका भैरे बाबा का आने का महीने में
0: जी
1: ममता पुरानी और नए स्टूडियो की बात कर ली चलते चलते इतना जरूर कहेंगे कि नए स्टूडियो में आने के बाद फिर उसके बाद हम गए FM स्टूडियो
0: अच्छा
1: इसी में बना बहुत पहले वो लाइब्रेरी हम लोगों की हुआ करती थी वहाँ पर FM स्टूडियो बना और FM का प्रसारण शुरू हुआ लखनऊ से
0: जी
1: और उसमें भी अनाउंसर हम ही थे हम और हमारे साथ में एक दिलीप थे हम ही दोनों की ड्यूटी उसमें शुरुआत से तो ओपनिंग अनाउंसमेंट FM का हम ही ने किया था और जो उसका उद्घाटन समारोह हुआ था वो प्रेक्षागृह में हुआ था
0: जी
1: गन्ना संस्थान था
0: FM रेनबो की बात कर रहे हैं
1: हाँ और ड्यूटी हम ही लोग करते थे पूरा सुबह की हमने करी शाम को दिलीप ने करी दो ही अनाउंसर थे उसमें हम ही लोगों ने ट्रेनिंग
2: शुरुआत हुई थी
1: उसकी शुरुआत
0: का जो जैसे आज FM रेनबो और जो प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम है उनके थोड़ा स्वरूप में चेंज होता है थोड़ा सा बोलने के ढंग में भी बदलाव रहता है तो क्या आप लोग भी कुछ अलग ढंग से FM के प्रोग्राम पेश करते थे
1: नहीं उस समय तो स्क्रिप्टेड ही होता था हमें अभी तक याद है कि FM इनॉग्रेशन हुआ शाम को हुआ फिर सुबह हमारी ड्यूटी थी पहले भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम था तो सुबह सुबह ले शिव का नाम वाला भजन हमने बजाया था कंपेयरिंग के साथ पूरी कंपेयरिंग के साथ आधे घंटे का एक घंटे का था कुछ अर्चना नाम था उसका कार्यक्रम का
0: जी जी
1: तो इस तरह से होते थे और स्टाफ के ही लोग कर रहे थे शुरू में
0: अच्छा।
1: ये कैजुअल अनाउंसर बाद में सब तैयार
0: आरजेज आए वो बाद हाँ। में आए कभी श्रोताओं से कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हो या कई बार लोग कहते थे कि वो बाहर अनाउंसर निकलते थे तो रात को भी श्रोता जो होते थे वो बाहर मिल जाते थे
1: इसमें एक बार बताया तुम्हें एक बार हम गए थे अनाउंसमेंट था आकाशवाणी का नहीं था वो बाहर का था लच्छू महाराज जी का
0: जी
1: बहराइच में उस समय गीत सुमन प्रोग्राम होता था और वो गीत सुमन प्रोग्राम हम करते थे उसकी लिसनिंग अच्छी थी कंपेयरिंग के साथ पूरा करते थे गाने बजाते थे फिल्मी गानों पर आधारित होते थे ये तो वहाँ पर बहराइच में क्या हुआ कथक डांस का प्रोग्राम था और भी बहुत कुछ थे तो एकदम बड़ा शोर मचा किसी को पता लग गया कि गीत सुमन वाली नीना श्रीवास्तव
0: अच्छा
1: बोल रही अब वो अनाउंसर को सामने लाओ नया नया वक्त था वो बताया ना 72-74 76 वाला समय था
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: तो डर भी लगा अरे बाप रे इतनी सारी भीड़ और इतना तेज शोर तो उस समय जो DM थे वहाँ पे शायद सेठी साहब थे शायद नाम इतना कंफर्म नहीं है लेकिन जहाँ तक हमें याद है सेठी जी थे उन्होंने कहा एक बार प्लीज आप अपने अनाउंसर को पर्दे के बाहर ले आए और हम कहाँ आने वाले पीछे स्टेज से निकल के गाड़ी में बैठे और अपने जहाँ पे रुके थे वहाँ
0: मतलब वो क्रेज जो आज लोगों के मन में फिल्मी कलाकारों में होता था
2: उस समय हम लोगों के थे
1: पहले उद्घोषकों के लिए अनाउंसर्स के लिए या रेडियो से जुड़े लोगों के लिए
2: आकाशवाणी कानपुर में मेरी पोस्टिंग हुई तो जब सभा समाप्त होती थी तो बाहर लोग खड़े रहते थे मुलाकात करने के लिए तो हमारे स्टेशन इंजीनियर ने ये सख्त हिदायत दे रखी थी चपरासी को गार्ड को कि कोई भी अंदर नहीं आएगा और शारदा जी से कोई मिलने अगर आए तो वहीं उसको वापस कर दीजिए वहीं वापस कर दिए और जब 15 मिनट बीत जाते थे तब हम गाड़ी में बैठ के अपने घर तक आते थे ये उस समय था ये उस समय रेडियो का क्रेज था ये उस समय रेडियो का महत्व था जिसे हम लोगों ने देखा और समझा और उसको अनुभव भी किया
0: जी जी
2: तो नीना जी के पास ये खजाना बहुत है इसमें कोई शक नहीं है और हमारे ख्याल से आज हम लोगों ने जो बातचीत की है तो शायद आधी पर्दी रह गई अभी बहुत सा बाकी
0: बहुत
2: है
0: सारे अभी पर्दे खुलने बाकी
1: ममता एक अपने प्रसारण का जो एक जिसको कहेंगे इंसिडेंट वो जरूर हम तुमसे शेयर करेंगे कि एक बार SOS खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं पहले 6:05 ऐसे आते थे तो वो करते थे हम लोग 10 मिनट का होता था बीच में न्यूज थी फिर उसके बाद 5 मिनट
0: अभी भी प्रसारित होते हैं
1: तो वो हमने किया उसी में कभी कभी ऐसा होता था कुछ ऐसे लोग आते थे ड्यूटी ऑफिसर ने जैसे ही दिया बीच में दे देते थे कि उन्होंने कहा कि ये कर दो जैसे ही एंट्री हुई तो हमने फेडर ऑफ किया अपना ये इसको कर दो वो किया और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन हमारा ऑफ हुआ हम बाहर निकले हमारी ड्यूटी जब खत्म हुई बाहर निकले तो एक बूढ़ी औरत थी और एक उनके साथ में लड़का था वो एक छोटे से जैसे आजकल 250 ग्राम का डिब्बा होता है ना तो उसमें पेड़ा या लड्डू कुछ ऐसा था वो लेकर के स्टूडियो के उससे बाहर हम निकलते उस जगह पे बैठी हुई थी उनका बिटिया तुमने कर दिया हमारी वो मिल गई मतलब वो तुरंत तुरंत हुआ इमीडिएटली हुआ।

0: तुरंत वो ट्रेस आउट हो गया था। वो वाकई मतलब इसके पहले तक हम इतनी अहमियत नहीं देते थे। उस दिन हमें ये खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं का जो असली महत्व था, उसके पहले तक वो सिर्फ हमारे लिए एक फॉर्म था जिसे हमें बोलना था
1: जी।
0: चार बोलने होते थे तो चार इधर बोले चार उधर बोले, उतना तक का एक काम रूटीन वर्क था। लेकिन उस दिन के बाद से उसकी अहमियत पता लगी
1: जी जी।
0: वो क्षण हमें आज तक याद है।
1: आपको बहुत सुखद क्षण लगा होगा कि आपकी एक उद्घोषणा से कोई बिछड़ा हुआ मिल गया किसी को और परिवार मिल गया। तो सच में रेडियो जो में काम करना है वो सिर्फ एक कार्य नहीं है, एक कर्तव्य है हमारा। और कितनों का हम मनोरंजन करते हैं, कितनों के दिलों तक पहुंचते हैं, कितनों को सूचना पहुंचाते हैं, कितनों की जानकारियां बढ़ाते हैं, और जैसा कहा कि कितनों को हम मिला भी देते हैं, जोड़ते भी हैं। हम सब रेडियो से जुड़े हुए जो प्रसारण कर्मी हैं वो अपने काम को शिद्दत के साथ करें और आप लोगों से प्रेरणा ले करें कि कितना आप लोगों ने जो काम किया मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया और
0: इंजॉय करके करें। सबसे बड़ी बात है कि अपने काम को इंजॉय करें, जो हम आज भी कर रहे हैं। जैसे लोग बहुत होते हैं, अरे भाई ये नौकरी का वक्त ऐसा है, लेकिन उसको तो हम लोग स्वर्णिम काल अपना समझ रहे हैं।
2: नौकरी को नौकरी, नौकरी का
0: क्योंकि यहीं पर तीज है, यहीं पर त्योहार है, यहीं पर बर्थडे है, यहीं पर सब कुछ हम लोगों का हो जाता था।
1: तो अभी भी आप लोगों के पास तो मुझे लगता है कि जो यादें हैं वो बहुत सारी होंगी,
0: बहुत बहुत ढेर सारी।
1: यदि हम अलग अलग बिंदु पर टच करें छेड़े तो आपके पास नए नए
0: बहुत सारे
2: उब जाएगी सुनते सुनते।
1: हम नहीं उबेंगे, श्रोता भी नहीं उबेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विराम तो देना ही होगा अपने कार्यक्रम को। हमें जो हमने आपसे बातचीत की, नीना श्रीवास्तव जी, शादा लाल जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपनी उन यादों को हमारे सामने रखा कि कब से रेडियो से प्रेम हुआ, कैसे कैसे आपकी यात्रा उनमें चली। पूरी यात्रा है वो बहुत ही सुखद रही और रेडियो अभी भी आपके दिल में।
2: जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहां मैंने अपने जीवन के इतने लंबे वर्ष गुजारे,
0: श्रेष्ठतम
2: है वो, श्रेष्ठतम है
1: जी।
2: और लोग अक्सर अपनी नौकरी को, अपने काम को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहना
0: चाहती। मैं नहीं, हम हम कभी
2: हम एक शब्द भी नहीं कहना चाहते।
0: आज भी हमें घर लगता है
2: कहीं कोई किसी किस्म से किसी प्रकार का कोई अफसोस हुआ हो। बहुत खुशी और बहुत सम्मान लेकर के हम लोग यहाँ से निकले
1: जी। तो आपने अपने काम को पूजा माना और उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जो ड्यूटीज दिए गए वो आपने निभाए और अभी भी आप रेडियो से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं और हम अपनी यादों को आगे
2: भी साथ रहेगा।
1: जी जी, रेडियो कहीं नहीं जाएगा हम सबके जीवन से। और आप दोनों स्टूडियो में आई और हमसे जो बातचीत की, यादों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
8: शाम होने को है।
7: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: जी 11:45 मिनट का वक्त और अभी आपने एक खास श्रृंखला सुनी जो आज की आखिरी श्रृंखला थी आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष में। जी हाँ, और अब मेरा मन कर रहा है कि एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो मैंने लगा के रखा है वो भेजें आप तक। तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।
1: Days are lucky because schools are giving additional water breaks. Sounds good, right? But nowadays, schools are off summer vacations. So please make sure that your children are well hydrated. They are having water.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: जी 12:52 का वक्त, और दोस्तों देखिए अभी हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, इश्क बिना क्या जीना यारो। और सही बात तो है कि अगर इश्क नहीं है तो क्या है जीना। तो इश्क जितने, अगर आपने इश्क करा है किसी से तो बिल्कुल उसको इस शिद्दत से निभाइए। और इस प्यारे से गीत के बाद हम आपका एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। तो आज इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी ने सुना कि हम लोगों ने बात करी स्वयं सिद्ध महिलाओं से, तो दोस्तों कहते हैं मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बहाना ढूंढता है तो कोई रास्ता। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हाल ही में राष्ट्रपति जी से पद्मश्री लिया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और वो है भारत की शेरनी हरमनप्रीत कौर भुल्लर। तो अभी बातें तो और भी आपसे करने के लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं। और ये जो गाना है ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि हरमनप्रीत ने क्या क्या किया।

तो 12:57 का वक्त, और देखिए ना आपके साथ ये जो ना साथ होता है आपका, बिल्कुल टाइम हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे चुटकियों बजाते ही टाइम निकल जाता है, लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं उन उस वो बातें बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हरमनप्रीत कौर भुल्लर की, जिनका जन्म मोगा पंजाब में हुआ था। घर में क्रिकेट का माहौल नहीं था, लड़की होकर लड़कों के साथ खेलने पर कई ताने भी सुनने पर हौसला इतना बुलंद था कि इन तानों का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। क्रिकेट का जुनून इतना था कि क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए घर से 30 किलोमीटर दूर एक एकेडमी जाती थी। बचपन में वीरेंद्र सहवाग की फैन थी, अनेक बाधाओं को पार करके क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान दिया, और उसी योगदान और नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अपने दौर की सबसे प्रभावशाली और दमदार क्रिकेटरों में शामिल हरमनप्रीत कौर ने भारत को पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब दिलाया, और हरमन का एक सक्सेस मंत्र है जिस पे हम सबको भी अमल करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो हमें बस उसको कोशिश करना है, प्रयास करना है, और देखिए सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो हरमन का जो सक्सेस मंत्र है वो ये है कि लोग हमेशा आपको जज करेंगे, उन्हें इग्नोर करो, आगे बढ़ो और बेस्ट दो, वही करो जो तुम करना चाहते हो। तो इतनी प्यारी प्यारी बातों और इतनी इंस्पिरेशनल बातों के साथ अब समय कह रहा है कि प्रोग्राम स्वयं संध्या को वाइंड अप करना होगा यहीं पर, लेकिन अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में भी मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त शिखा। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में मानसून 2026 के द्वितीय चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर मीडिया को जानकारी देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने बताया कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली वर्षा औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जून माह के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलने की आशंका है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंबरा ध्वज फहराएंगी। यह पहला अवसर है जब राम मंदिर परिसर में 3,000 से अधिक मात्र शक्तियों का एक साथ समागम होगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं समारोह में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे तक होगा। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। IMD ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के उद्देश्य से शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा सर्वे कार्य की दैनिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराज यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

प्रोग्राम का जी हाँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात, जिसमें हर रोज हम बात करते हैं एक ना एक दिलचस्प टॉपिक पर और जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं उस विषय पर। तो आज ढेर सारी बातें करने वाली है शिखा आप सब से, पर बातें शुरू करने से पहले एक प्यारा सा गाना मैं भेज रही हूं आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा गीत आप सबके रेडियो सेट्स पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, बिना भेदभाव। ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
0: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़राई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर गजाई जखीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के गजाई तहफ़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तगज़िए से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
0: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलातो तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाके CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुलाय अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बाहक हो गए हैं। SDRF और NDRF की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेरे तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली,

कानपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर इजला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

1:16 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और आप सब के मन में प्लान भी बनने शुरू हो गए होंगे, और प्लान ऐसे बनने शुरू हो गए होंगे कि कहाँ घूमने जाना है इन समर वेकेशंस में। और भाई क्यों ना बने प्लान, क्योंकि इन समर वेकेशंस का हमारे नन्हे मुन्नों के साथ हमें भी तो रहता है इंतजार। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश, किसी रीजन से हम घूमने नहीं जा पाते और उसका हमें बड़ा अफसोस होने लगता है ना कि क्या क्यों नहीं जा रहे हैं हम। लेकिन उसको भी तो यूटिलाइज करना होता है। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर आप समर वेकेशंस में कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आपका प्लान नहीं बन पा रहा है, तो आप इन समर वेकेशंस को, या आपने जिन समर वेकेशन में आप नहीं जा पाए घूमने अपने बच्चों के साथ, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर समर वेकेशंस में हम घूमने नहीं जा पाते, या पिछले समर वेकेशंस में हम नहीं जा पाए और इसमें भी प्लान नहीं बन पा रहा है, इस समर वेकेशंस में भी प्लान नहीं बन पा रहा है, तो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इस समय को घर पर रहकर। तो आज हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आपको ये जो मेल्स भेज रहे हैं, वो मेल्स भेजने कहाँ पे हैं। तो ये मेल्स आपको भेजने हैं हमारी ईमेल आईडी, और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो बस आप जल्दी से सोचिए कि क्या करने वाले हैं आप इन समर वेकेशंस में, और एक प्यारा सा गाना भी आप तक आ रहा है, तो चलिए आप एंजॉय करिए और साथ ही हमें मेल्स भेजिए।

0: जी 12:30 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। तो आज का टॉपिक आप सबको मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ और आपको वो भी सुनवाऊंगी जो मैंने लोगों से बातचीत करी कि भाई आप अपने समर वेकेशंस में जब आप घूमने नहीं जा पाते तो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो वो बातें भी आप तक पहुँचाऊंगी। तो चलिए हमने एक लोगों से बात करी और देखिए वो क्या कहती हैं।
1: जा पा रहे हैं समर वेकेशंस में तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमेशा से मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। तो हम अपने बच्चों को ना मुझे जैसा लगता है छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं करने के लिए, जो कि इंटरेस्टिंग भी हों और बच्चों का उसमें नॉलेज और ऑल ओवर डेवलपमेंट बचे। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, अपने बच्चों को प्लांटेशन करना, प्लांट्स की केयर करना, रिसाइकल चीजों को करना, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि आजकल लोग बहुत कम करते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में हम बच्चों को ये चीजें सिखाएं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सारा टाइम तो मदर्स और पेरेंट्स सब भागते ही रहते हैं बच्चों के साथ, जब उनके पास थोड़ा टाइम है हाउ दे कैन बी ऑफ हेल्प टू पेरेंट्स, ये एक बहुत अच्छा वो है। और इससे बच्चे यू नो काम करने की आदत, इट्स नॉट कि ऐसा कोई काम, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट होने की आदत और बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने की आदत, ये बहुत

0: अच्छे से आती है कि बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट शायद इसे ही कहते हैं। और मुझे बहुत मजा आता है अपने बच्चों से इस तरह की चीजें करवाना और उनको उसमें बिजी रखना। देर कैन बी लॉट ऑफ गेम्स इन साइड एंड आउटसाइड द हाउस, देर कैन बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन विच दे कैन शो देयर टैलेंट। थैंक यू। नमस्ते।
1: जी, तो अभी हमारे साथ तुलिका जी ने अपने विचार साझा करे कि जब वो समर वेकेशन में अपने बच्चों के साथ घूमने नहीं जा पाती तो क्या करती हैं। तो हमारे पास कुछ मेल्स भी आ गए हैं, तो हम जल्दी से मेल्स को पढ़ते हैं। अशोक कुमार जी ने हमें मेल किया है और लिखा है, हाय मैम, मेरा नाम अशोक कुमार, विलेज पंगी कलन लखीमपुरी खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है। मेरा मन है कि गरीब इंसान की कोई वेकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये सोचना आपका मुझे लगता नहीं ठीक है। और आप जब भी आपके बच्चों की छुट्टियां हो तो आप इंजॉय करिए, कैसे भी इंजॉय करिए, घर पे रहिए, कुछ अच्छा बनाइए, तो अपने अपने तरीके होते हैं, तो उसको ज़रूर से इंजॉय करिए बच्चों के साथ, क्योंकि ये समय बहुत कीमती होता है। तो चलिए, एक और मेल हमारे पास आ चुका है। हमारे पास मेल आया है रामेश्वर जी का, होटो पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन शिखा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होती है। अच्छी प्रस्तुति के लिए जब बहन शिखा जी कार्यक्रम में आती हैं, चार चांद लगा देती हैं। थैंक यू सो मच। और इन्होंने थैंक यू बोला है हमें, तो भाई हमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं, इतना प्यार आपका हमसे जुड़ा होता है कि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। तो इन्होंने लिखा है, शिखा जी, हम घूमने नहीं जा पा रहे हैं, हमारा सड़क हादसे में पैर खराब हो गया, हम मजबूर हैं, ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कटेरिया, उमाकांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, पुत्र बधु निशा कटेरिया, प्रगा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, वेद बाबू कटेरिया। तो रामेश्वर जी, ये जानकर बड़ा मतलब तकलीफ हुई कि आपको ये दिक्कत है, इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं। तो कोई नहीं, समय होता है हर चीज़, वो समय आता है और गुजर जाता है, तो बस आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, बस हमारी यही इच्छा है और यही हमारी आशा है। और हमारे पास रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेशाय नमो, होटो पर तेरी बात जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, भानु भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, बधु बजरंगी, काका नीरज, सबसे पहले हमारी तरफ से शिखा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। अरे थैंक यू सो मच, इतना प्यार, ये जो बिटिया शब्द होता है ना, ये अपने में ही बहुत ज्यादा प्यार संजोए होता है। और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, थैंक यू सो मच, आपका कार्यक्रम देरी से सुन रहे हैं, आपने जो पूछा हम सुन नहीं पाए इसलिए कुछ नहीं लिखा, धन्यवाद। तो मैंने टॉपिक दो तीन बार रिपीट करा था, तो अभी मैं बीच में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, जिससे आप लोग नहीं सुन पाए, जो लोग, उन तक भी वो टॉपिक पहुंच जाए। और हमारे पास भैया मोनू सेठ जी ने मेल कर दिया है, पौधा लगाए गर्मी धूर भगाए, धूप में भी छांव फ्री में पाए। वाह, कितना अच्छा इन्होंने मतलब एक लिरिकल वे में लिखा है, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने पहुंचाई है हम सब तक, पौधे लगाए और गर्मी दूर भगाएं, धूप में भी छांव फ्री में पाएं। और इन्होंने क्या हिंदुस्तानी ब्रह्मी जी का इन्होंने हमें मेल किया है, बड़ी बहन शिखा जी को बेस्ट कार्यक्रम देने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं पिंकू सोनी टिकायत नगर बाराबंकी से हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप समर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं जा रहे तो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय व्यतीत करें। सो थैंक्स मेरे भतीजे शुभ और ऋषभ सोनी को। तो इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात हम लोग तक कन्वे करी है कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप अपनों के साथ समय बिताइए। हमारे अपने भी तो हमारा अपना समय चाहते हैं ना। तो विजय पाल यादव जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय बहन जी, सादर नमस्ते, आज का विषय बहुत ही अच्छा है, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीदी जी, 19 मई को आपकी हमारी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा था आपको सुनकर, ये मेल भेज रहा हूँ। प्रेषक विजय पाल यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना दिल से जुड़े रहते हैं और जब सुनते हैं और बताते हैं कि इस दिन आपको सुना था, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कहते हैं ना कि ये प्यार ही तो है, ये दिल से जुड़ाव ही तो है, जब आप हमारे साथ इतने प्यार और एहसास से जुड़े रहते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है जितने भी हमारे श्रोता सुनेंगे उनको भी पसंद आएगा। तो चलिए, ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जी 1:34 का वक्त, और मैंने कहा था कि कुछ लोगों से हमने बात करी है कि आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि मैम हम टॉपिक नहीं सुन पाए. तो टॉपिक ये है कि जब भी आप समर वेकेशंस में घूमने नहीं जा पाए या इस बार नहीं जा पाएंगे, कुछ प्लान तो बनता है और कभी कभी होता है कि हम नहीं जा पाते, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने नन्हे मुन्नों के साथ, आपको हमें बताना है हमारी मेल आईडी पर. और हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com. तो चलिए आपको सुनवाते हैं, एक लोगों से बात करी हमने, तो उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या बताया हमको.
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, चेस्ट स्पेशलिस्ट लखनऊ. क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं तो मुझे काफ़ी समय नहीं मिल पाता है कि मैं अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ समर वेकेशंस पे जा पाऊं. तो मैं किसी भी तरीके से कोशिश करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल से उनको शाम में घर में जितना भी मैं समय दे सकूँ और उनको एन्जॉय करा सकूँ, इसकी मैं भरपूर कोशिश करता हूँ. क्योंकि हम लोग का पेशा ऐसा है कि हम लोग के लिए मरीज़ पहली प्रायोरिटी होती है हमारे पेशे की वजह से, बट स्टिल कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, कि हम अपने बच्चों को घर पे शाम को कहीं घुमाने ले जाएं, कहीं आइसक्रीम

0: खिलाने ले जाएं, किसी पार्क में ले जाएं, तो ये सारी कोशिशें हम लोग की रहती हैं। और बस इसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं अपना समय बच्चों को और फैमिली को देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।
1: जी, तो हमारे पास कुछ मेल भी आ चुकी हैं और भाई मेल की जो कतार है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमें प्यार से सुन रहे हैं और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो बसंत कुमार सिन्हा जी का हमारे पास मेल आ चुका है और हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। आदरणीय प्रसारक मैडम जी, शिखा दीदी को सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आज का थीम जब छुट्टी पे कहीं नहीं जाना हो तो घर पर ही बच्चों को पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं। अरे ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन भी टाइम मिला है तो बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। बागवानी का काम करने की कोशिश करते हैं और पक्षी को दाना पानी अपने छत पर रखने की कोशिश हमेशा भरपूर प्रयास करते हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, नन्ही मुन्ने, अन्विका बेबी, थैंक्स, आपका नाम शामिल करने हेतु दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और हमारे पास सुधाकर यादव जी ने हमें मेल किया है। हमारे खेती के काम चालू होने के वजह से हम बाहर कहीं घूमने का प्लान नहीं करते। हमको यही साल धूप बहुत होने की मतलब इस साल धूप होने की वजह से हमने हमारे बच्चे को घूमने को नहीं भेजा। प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने हमें मेल किया है। इन्होंने बहुत नाम भी लिखे हुए हैं, श्री सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, कुमार सचिव वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। और हमारे पास मेल आया है सुनील जी का। सुनील ने हमें मेल किया है, सुनील सूर्या आलमबाग लखनऊ से इन्होंने मेल किया है। होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में आज अगर अरिजीत सिंह के सॉन्ग चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सुने नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश है और फरमाइशी प्रोग्राम है वो हमारा आएगा 2 बजे से 3 बजे तक। जी हाँ, होठों जो आपका रेनबो हॉट मेल है, एवर ग्रीन आपका जो प्रोग्राम है वो आएगा 2 बजे से 3 बजे तक। तो हम आपकी कोशिश रहेगी कि फरमाइशी सॉन्ग जरूर प्ले करें।

1:08 का वक्त और ये वक्त मुझसे कह रहा है कि भाई शिखा बातें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब वो एक गाना पहुंचा देना चाहिए अपने श्रोताओं तक। तो मुझे लग रहा है हमारे जितने भी श्रोता हैं यही सोच रहे होंगे कि प्यारा सा गाना आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है आप तक। तो चलिए इंजॉय करते हैं।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जी दोस्तों, 1:45 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, अपनी दोस्त, जी हाँ दोस्त शिखा के साथ। तो चलिए हम सुनते हैं वो बातचीत जो हमने किसी से करी है और वो आप तक पहुंच रही है। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कह रही है वैष्णवी।
1: हाय, माय नेम इज वैष्णवी। आई वांट टू

0: जी, तो अभी आपने सुना कि वैष्णवी क्या करती हैं अपने समर वेकेशंस में अगर वो बाहर नहीं जा पाती हैं, और बहुत अच्छी बात बताई कि वो स्केचिंग को प्यार करती हैं, स्केचिंग बनाना उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए एक लोगों से और हमने बात करी, वो पहुंच रही है आप तक, तो उनकी क्या राय है, वो क्या करते हैं समर्स में।
1: नमस्ते, मेरा नाम अनु कुमार वाजपेयी है और आज का विषय बहुत ही अच्छा है कि हम अपने बच्चों के समर वेकेशंस में आज की व्यवस्था को देखते हुए समय नहीं दे पाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं और अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलूं। नई गेम खेल पाता हूं तो पार्क लेके चला जाता हूं, पार्क नहीं जा पाता हूं तो फिर होटल्स में जाता हूं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। धन्यवाद।
0: तो अभी आपने सुना कि वैष्णवी और अनूप क्या करते हैं अपने समर वेकेशंस में, क्या करते हैं लोग, आप लोग क्या करते हैं। और बहुत से लोगों ने हमें जो मेल्स करे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। राधे श्याम जी ने हमें मेल कर दिया है और लिखा है, राधे श्याम जी कासगंज से, गुड आफ्टरनून शिखा जी, और आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। अगर समर वेकेशंस में मैं बाहर घूमने नहीं जा पाता हूँ तो मैं FM रेनबो ट्यून करके अपना समय व्यतीत करूंगा। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स। तो थैंक यू सो मच कि आपने FM रेनबो चुना भाई अपने समर वेकेशंस के लिए, और समर वेकेशंस के क्या हम तो आपके साथ हर पल हर क्षण हैं। मुझे लग रहा है कि अब जितने भी हमारे जितने श्रोता हैं, जितने लिसनर्स सुन रहे हैं प्रोग्राम को, तो इंतजार किस चीज का है? इंतजार है एक बहुत ही प्यारे से गाने का जो आ रहा है आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं।

0: जी 1:53 का वक्त और बहुत से मेल्स हमने आप तक पहुंचाए, बहुत से लोगों से बातें करी, तो एक और लोग हैं जिनसे हमने बात करी. देखिए इनकी क्या राय है, ये कैसे यूटिलाइज करते हैं अपना समर वेकेशन का टाइम अगर बाहर नहीं घूमने जा पाते हैं. तो चलिए हम सुनते हैं क्या कहते हैं प्रदीप जी.
1: नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप वाजपेयी और मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ. गर्मियों की छुट्टियों में अगर मैं अपने बच्चों को बाहर घुमाने नहीं ले जा पाता हूँ तो मैं अपने घर में ही समर कैंप जैसा माहौल बना देता हूँ. घर के वातावरण में ही मैं आयोजित करता हूँ इंडोर गेम्स, क्रिएटिव आर्ट्स, नई नई स्किल सीखने की क्लासेस. कभी कभी हम सभी मिलकर किताबें भी पढ़ते हैं, नई नई डिशेज बनाते हैं और घर में ही ढेर सारे आनंद की अनुभूति करते हैं. बच्चों का उत्साह देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी मेहनत की है वो सफल हो गई है. और जब मेरी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, मुझे वापस ड्यूटी पे जाना होता है, तो मेरे बच्चे बिल्कुल कहना नहीं भूलते, डैड वी हैड गुड समर कैंप, लव यू डैड.
0: जी देखा आपने, कितनी छोटे छोटे से चीज़ें, कितनी छोटी छोटी सी एफर्ट्स जो होते हैं ना, हम बच्चों के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं, तो क्या वो मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता. और कितना प्यारा सा बच्चों ने कहा ना, लव यू डैड. तो सही बात है, एक दूसरे से प्यार करिए. कभी किसी कारणवश आप नहीं जाते हैं तो ये जो टाइम है ना, इसको इतना फ्रूटफुल बना दीजिए कि हर पल हर क्षण सिर्फ मेमोरी से, सिर्फ यादों से भरा हो. तो इतनी सारी बातों के बाद आप देखिए ना, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 1:55 हो गए हैं और ये टाइम कह रहा है वही शिखा, अब टाटा बाय बाय कह दो प्रोग्राम होठों पे तेरी बात से, क्योंकि वाइंड अप करने का समय हो गया है. और बिल्कुल

परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा 100.7 एफएम रेनबो पर। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी होने वाला है फुल मस्ती और धमाल भरा हुआ। जी हाँ, रेनबो हॉट मेल। तो चलिए, एक प्यारा सा गाना आ रहा है, तो एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी साहब के विचार थे कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है, इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा डबल इंजन सरकार इस मंत्र को आत्मसात कर अन्नदाता बंधुओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को SDRF के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार देर रात्रि मनकापुर पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 3 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश के पैर गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने शुक्रवार को बताया कि देर रात मनकापुर पुलिस और SOG टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश ओम प्रकाश यादव घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान 2 शातिर लुटेरे प्रतीक यादव आशीष वर्मा को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD लखनऊ केंद्र ने शुक्रवार सुबह जारी किया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ SN सुनील पांडे ने बताया कि प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित होगा।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे।

तो बस इसी प्यारी सी विश के साथ हाजिर हो गई है आपकी अपनी दोस्त शिखा कार्यक्रम रेनबो हॉटमेल लेकर. तो बस लिख दीजिए हमें अपने मेल्स की कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, और साथ ही लिख दीजिए वो डेडिकेशन कि किनको आप वो गाना सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेल्स का है हमें बेसब्री से इंतजार. तो आप लिखिए हमें मेल्स और साथ ही एंजॉय करिए बेहतरीन सा गीत आपके रेडियो पर.

जी हाँ, ये जो दो लाइनें मैंने गाई थी ना, ये आपके लिए थी, क्योंकि आपकी जो याद है ना वो हर समय साथ में रहती है, और जब जब स्टूडियो में आते हैं और आपसे जब इतनी प्यारी प्यारी बातें और इतने प्यार भरे मेल्स देखते हैं, तो उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो चलिए भाई, हमारे ये जो मेल्स इतने आ गए ना, ये मेल्स हमसे कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ लो शिखा, भाई सब इंतजार कर रहे हैं। आफताब अंसारी जी ने हमें मेल कर दिया है, आज शिखा बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आप हमेशा ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, यही कामना करते हैं। जी हमारी भी बिल्कुल सेम यही आशा है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की फरमाइश करी है, तो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर से, हमारी कोशिश है। और शेर वाली स्कूल गुंज डंडवारा उत्तर प्रदेश, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी।

जय जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार जी, हॉली चौक चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म इन्होंने एक फिल्म का नाम लिखा है और गाना लिखा है, तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं। सरिता अभिजीत जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय जी नमस्कार, आपकी पसंद का सदाबहार गीत सुनाने का कष्ट करें। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से इन्होंने हमें मेल किया है, वैशाली शैलेश ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश, सुमित ग्वाड़कर, कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, राही और सरिता ग्वाड़कर, प्रणीता सिद्धांत ग्वाड़कर और लाडला टुक टुक ग्वाड़कर। तो आप सभी के लिए प्यारा सा गीत अभी हम कोशिश है कि वो आप तक पहुंचाएं। अल्लाह बख्श जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी आदाब अर्ज, किसी भी गीत में शामिल करें तेलंगाना निजामाबाद से शेख उल्ला बख्श, बेगम राबिया बख्श, शेख रही मुन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे पास मेल आया है, निसार अली जी ने हमें मेल किया है, निसार अली जी का मेल हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय आरजे जी आपको आदाब नमस्कार, घनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, किसी भी गीत में शामिल करें। और हमारे पास दो तीन मेल में जल्दी से पढ़ती हूँ, फिर एक प्यारा सा गाना आप तक आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आया है कौशिक वधावना जी ने हमें मेल किया है, फ्रॉम राजकोट गुजरात, कौशिक अस्मिता, मम्मी पापा महेश, वडवाड़ा परिवार, हेलो नमस्ते शिखा जी, केम छो मजामा जी, गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून। सॉन्ग इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गीत फरमाया है, तो हमारी कोशिश है पहुंचाएंगे आप तक। नरेश जी ने हमें मेल किया है, नमस्कार जी आपको, मान योग्य आरजे जी, ओहो इतनी रुको, इतना प्यार, ओ माय गॉड, हमें भी शामिल करें, दीदी जी इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, हम आपको लाइव सुन रहे हैं शिखा जी, और बहुत अच्छा इन्होंने गाना लिखा है। ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कालोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। और बबलेश पनवार जी ने हमें मेल किया है, पारस

रेडियो श्रोता क्लब और गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, खालिफू की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रेडियो दीवाना। जी बिल्कुल, रेडियो की दीवानगी तो बनती है और बहुत ही प्यारा सा गाना भी जो आप ही में से किसी की पसंद का है आ रहा है आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: की बहुत कीमती। जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी 2:27 का वक्त, और वक्त कह रहा है कि भाई जल्दी जल्दी से शिखा मेल पढ़ लीजिए, और बहुत जितने भी हमारे श्रोता है ना, सबको इंतजार है कि भाई हमारा नाम आ जाए और हमारा मेल पढ़ लिया जाए। तो हमारे पास सुनील पाठक जी ने मेल किया है। आदरणीय होस्ट मैडम जी, हार्दिक अभिनंदन। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, और बहुत ही प्यारे से गीत की फरमाइश करी है। उत्तम कुमार भगत जी ने हमें मेल किया है। शिखा जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मेरा नंबर कब आएगा? ये लीजिए, आ गया भाई। और पाकुड़ झारखंड से इन्होंने हमें मेल किया है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और हमारे पास उदय भान पाल जी ने मेल किया है। मैं कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल करें। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे पास मेल आया है जावेद अख्तर जी ने मेल किया है। गुड आफ्टरनून शिखा मैम, कार्यक्रम हॉटमेल में किसी भी गीत में हमें शामिल कर ले। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी। और हमारे पास दीनानाथ राय जी ने हमें मेल किया है। पेशकर्ता जी को हमारा नमस्कार, फिल्म का नाम लिखा है इन्होंने, गाना लिखा है, हम आप तक पहुंचाते हैं। दिनेश कुमार राय और दीनानाथ राय, बेटा अंशु कुमार, बेटी अंशिका एवं समस्त राय फैमिली, बहन जी आपकी पेशकश काबिले तारीफ है, थैंक यू सो मच। और हमारे पास मेल आया है अब्बासी जी का, इन्होंने मेल किया है। ईद मुबारक, सॉरी आई एम लेट, रिस्पेक्टेड होस्ट जी, शिखा जी गुड आफ्टरनून, 20 मिनट लेट हो गए, चलिए कोई नहीं भाई, आप है, आपका प्रोग्राम है, आप बस जुड़ गए, ये बहुत बड़ी बात है। और ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से इन्होंने मेल किया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और हमें मेल किया है मूसा शेख जी का मेल। प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। जी हम खैरियत से हैं, और हमारी जो वो है, हम सोचते हैं कि भाई आप भी अच्छे से रहें और खुश रहें। फिल्म एक बहुत ही प्यारा सा गाना इन्होंने लिखा, सनावत से इन्होंने हमें मेल किया है, शेख मूसा मोहसिन। और एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी कि प्लीज आप एक मेल करिए, मेरी पूरी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके मेल को शामिल जरूर करें, क्योंकि क्या होता है आप चार चार पांच पांच मेल भेज देते हैं, मुझे पता है आपका इतना प्यार है, वो दिखाने का तरीका है, लेकिन फिर भी एक मेल भेजिए, हम शामिल जरूर करेंगे। कमल कांत जी ने हमें मेल किया। आदरणीय शिखा जी, प्लीज हमें ये बताइए कि कितने बजे से भेजा हुआ मेल शामिल करते हैं? 2 बजे राइट टाइम भेजा हूं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो भाई के लिए सो सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ा लेकिन शामिल हो गया, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। पिपरिया से इन्होंने मेल किया है। कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, संडील नवापारा से मुकेश गुप्ता।

श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता और हमारे पास सतीश अनेजा जी ने मेल किया है। नमस्कार शिखा बहन जी को, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्ट्रॉन्ग लव टू रेनबो लखनऊ। ओ थैंक यू सो मच, आपका स्ट्रॉन्ग लव जो है ना वो हमें आपके मेल्स के थ्रू दिखता है। आप इतने प्यार से इतने डेकोरेटिव मेल जो आप हमें भेजते हैं तो हम भी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो एक गाना इन्होंने भेजा है, चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, धन्यवाद। और हमारे पास एक और मेल पढ़ते हैं फिर गाना आप तक भेजते हैं। मल्होत्रा टी डी मोहाली से इन्होंने साथिया तूने क्या किया, ओ गाना इन्होंने लिखा है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज।

तो मेज तो अभी हम आपके और भी शामिल करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, हमारा तो मन करता है कि हम आपके मेल एक एक करके बस पढ़ते ही जाए, लेकिन भाई गाना भेजना भी तो बनता है आप तक। तो एक मैं बैक टू बैक सॉन्ग भेजूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपके सॉन्ग जो आप लोगों ने जितना लिख के भेजा है, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो सॉन्ग आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 2:44 का वक्त और टाइम हो गया है कि भाई आपके मेल्स पढ़ लें हम। दिलीप कुमार जी ने हमें मेल किया है, शिखा दीदी नमस्कार और एक गाने की फरमाइश करिए। मुंदीचक भागलपुर बिहार से इन्होंने हमें मेल किया है, दिलीप कुमार सोनी। और बोधराज खोरवाल जी ने हमें मेल किया, मैडम जी अपनी बारी का इंतजार करते करते प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है पर मैसेज शामिल नहीं होता, तो बिल्कुल देखिए ऐसा मत सोचा करिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है क्योंकि हमारे पास आप हैं लिसनर, हमारे साथ और भी लिसनर्स, कितने लिसनर्स हमारे पास हमारे साथ जुड़े रहते हैं और कोशिश रहती है कि आप सबके ही मेल शामिल हो जाएं, और कहीं अगर स्किप हो जाता है तो बिल्कुल भी उसे दिल पर ना लें। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और हमारे पास रविंद्र मोहन दास जी ने हमें मेल किया है, कोई गीत सुना दें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। और हमारे पास मेल आया है उदय भानपाल जी का, शिखा बहन जी ये मेल मैं पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप एक मेल करिए, तो हमारी कोशिश रहती कि हम सबके मेल शामिल करें। तुलसी मस्कीन का हमारे पास मेल आया है, होस्ट शिखा जी मैंने ठीक 2 बजे मेल की, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, नाइस सॉन्ग, मैंने पूछा चांद से, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीरा मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। तो तुलसी जी लीजिए आपका मेल शामिल।

हो गया, तो हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है कि हम आप सभी के मेल एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ लें, और लेकिन गाने भी तो आप तक आपके ही पहुंचाने रहते हैं। सदानंद मंदुरकर जी ने हमें मेल किया है, प्रसारक जी सेवा में नमस्कार, और बहुत ही प्यारा गीत इन्होंने हमें लिख भेजा है, तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं। सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर।

और स्वरण सिंह जी ने मेल कर दिया है, नमस्कार जी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल, गुलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुना दीजिए, हमारा नाम जरूर शामिल करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए समय धीरे धीरे बीत रहा है तो हमारी पूरी कोशिश है, एक बार मैं सबके जल्दी से नाम पढ़ती हूँ और कोशिश रहेगी कि सबके मेल्स पढ़ लूँ। सुनील पाठक जी ने हमें मेल किया है, बाबू अंसारी, राशिद हुसैन जी ने बाबू अंसारी, नवी हसन, बाबू अंसारी, अहमद फूल वाले, बाबू अंसारी, निसार अली, अहमद फूल वाले, रोजी डिकेस्ट्रो, बिट्टू गगनेजा और नवी हसन, ताज मोहम्मद, बोधराज खोरवाल, रविंद्र मोहन दास और बोधराज खोरवाल, अभी मैंने नाम लिया, एम के राज और उदय भानजी, शहरूर नूर अंसारी, रविंद्र मोहन दास, तुलसी मस्कीन और भी बहुत से नाम हैं, वो हम आप तक ज़रूर आपके पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि पूरी मेल भी आप तक पढ़कर पहुंचाएं, लेकिन एक गीत आ रहा है आप तक, तो चलिए इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो गीत भाई पहुंचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी ही पसंद का गीत है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए

0: नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये दोस्तों 2:56 का वक्त और वक्त कह रहा है कि भाई टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम हॉटमेल से, लेकिन उससे पहले मैं मेरी कोशिश है कि मैं सबके नाम ले लूं और इस चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूं कि जिनके मेल्स में नहीं पढ़ पाई, जिनके सॉन्ग्स शामिल नहीं कर पाई, लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगी बस आप नाराज ना होइए और जुड़े रहिए क्योंकि ये प्रोग्राम रोज आता है और आपकी पसंद का ही प्रोग्राम है। जितने भी गाने बजे हैं आपकी ही पसंद के बजे हैं, आप में से ही किसी ना किसी ने भेजे हैं वो गाने बजे हैं, तो बस जो गाने आप तक आते हैं और आप उनको एंजॉय करिए और आप हमसे जुड़े रहिए, बस इतना चाहते हैं हम। इसी के साथ कुछ मेल्स हम शामिल कर लेते हैं। राशिद हुसैन जी ने हमें मेल किया है, एमके राज जी ने हमें मेल किया है और संदीप मकर जी ने मेल किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने मेल किया है, संदीप मकर जी ने मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने मिल किया, रविंद्र मोहन दास जी ने मिल किया, शहरूर नूर अंसारी, नीलू यादव, अक्रम हुसैन प्रिंस, सुरेश नारंग, तेज बहादुर यादव, सुनील पाठक, महेंद्र दीपन, अक्रम हुसैन और सुरेश नारंग, बाबू अंसारी, नवी हुसैन, मनोज बंसल, अहमद फूलवाले, निसार अली, रोजी डिकेस्ट्रो, बिट्टू गगनेजा, नवी हसन, ताज मोहम्मद, बोधराज कोरवाल और हमारे पास मेल आया है दिलीप कुमार जी का, उदय भान जी का और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेल किया, अपने गाने हमें भेजे और कोशिश हमारी रही कि हमने आप तक पहुंचाए और अगर नहीं पहुंचे इसके लिए आपकी शिखा आपसे तहे दिल से माफी मांगती है। और फिर अभी मिलते हैं ना अगले प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में, तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा है एक टैंकर होमवर्ज जल

डमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। यह जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। टैंकर निसोस कैरोस होमर्ज जल डमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को पहुंचने की उम्मीद है। मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला यह जहाज 21 मई को शारजा से रवाना हुआ था और इसे आज सुबह भारत के पश्चिमी तट के पास उत्तरी अरब सागर पहुंच गया। ईरान की समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को SDRF के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर आज टीन शेड गिरने से के कारण टीन शेड के नीचे कई यात्री दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची GRP RPF ने राहत बचाव कार्य करते हुए सभी को बाहर निकाला। हादसे में 2 यात्री और 1 छोटी टी घायल है। GRP इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह का कहना है कि चारबाग रेलवे स्टेशन न के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यात्री खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान टीन शेड नीचे गिर गया और उसमें कई यात्री दब गए। सूचना पाकर GRP RPF ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की. कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई.
2: शाम होने को है.
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास.

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

बजकर 5 मिनट और प्रोग्राम वही जिसमें बात होती है जीवन के रंगों के बारे में कि कैसे कोई रंग मिलकर जीवन को सुंदर बना देता है। तो भाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा रहने वाली है आपके साथ। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातों का ये सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

दोस्तों 3:11 का वक्त और एक बार आपकी दोस्त शिखा आप सभी का फिर से स्वागत करती है कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में। दोस्तों हमारे जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ खुशियां देना चाहते हैं और मानो लगता है कि हमारी लाइफ का एम ही बन जाता है कि हम उनको खुश रखें, पर कभी कभी हम अपनी जो फीलिंग्स है ना उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जी हाँ, दूसरे तक हम उन चीजों को कन्वे ही नहीं कर पाते कि हम उनको कितना प्यार करते हैं या हम उनको कितना खुश देखना चाहते हैं। और हम मौकों की तलाश में रहते हैं कि अब उससे ये कहेंगे, अब उससे ये कहेंगे, और बस सोचते ही रह जाते हैं। क्यों होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा आज नहीं कल कह देंगे, आज नहीं कल नहीं परसों कह देंगे, लेकिन कहेंगे जरूर अपनी बात, लेकिन वो दिन शायद कभी आता ही नहीं है। पर आपको बताऊं, एक दिन ऐसा है जब आप अपनों के गुल्लक को खुशियों से भर सकते हैं और वो दिन है उनका जन्मदिन। क्योंकि जन्मदिन जो होता है ना, जो बर्थडे होते हैं, वही खास दिन है जब आप अपनों को ये एहसास दिला सकते हैं कि आपके लिए वो कितने खास हैं। और भले ही आप कभी एक्सप्रेस ना कर पाए चीजों को, लेकिन ये जो दिन है ना, इसको बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। और अगर आसपास है किसी का जन्मदिन जो आपके बहुत करीब है, तो सोचिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ऐसा कि उसको बहुत पसंद हो और आप उसको फील करवा सकें स्पेशल। तो चलिए आप सोचिए और साथ ही एंजॉय करिए

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

तो दोस्तों 3:18 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है कि कैसे हम अपने लोगों को, अपने जो सबसे प्यारे हैं, बहुत दिल के करीब हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं लेकिन हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और वो कौन सा दिन है जो हम एक्सप्रेस कर लें अपनी चीज़ों को, उन तक एक्सप्रेस करें कि हाँ हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से उनके दिन को खास बना दें और उनके गुल्लक को भर दें खुशियों से। तो वो दिन है उनका बर्थडे। दोस्तों ये जो रिश्ते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं, कभी कभी छोटे मन मुटाव हो जाते हैं और दूरी बढ़ने लगती है, तो रिश्तों को फिर से संवारने का सुनहरा अवसर है जन्मदिन। दोस्तों अगर किसी रिश्ते में किसी बात को लेकर खामोशी आ गई है तो जन्मदिन पर सबसे पहले आगे बढ़कर विश करना एक बड़ी पहल आपकी तरफ से हो सकती है। एक छोटा सा मैसेज, दिल से लिखा हुआ छोटा सा नोट या एक भावुक इमोशनल कॉल सामने वाले को ये एहसास दिला सकती है कि आप उनके लिए कितने खास हैं। और हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे कि आप ये मत वेट करिए कि कोई जो आप जिसे प्यार करते हैं आपके मनमुटाव को आप ये सोचकर मतलब वेट करते रहें कि उसकी कॉल आपके लिए आएगी। अरे क्या ही फर्क पड़ता है भाई, जब आप किसी को इतना प्यार करते हैं तो उसकी कॉल आने का क्यों वेट करना। आप उसके जन्मदिन को इतना स्पेशल बना दीजिए, उसे कॉल करिए, उसे मैसेज करिए और बस देखिए उनके जो गुल्लक है ना उनका, वो खुशियों से कैसे भर जाता है। तो बस अगर इस महीने या अगले महीने आपके किसी खास का, स्पेशल का, खास इंसान का, किसी बहुत दिल के करीब इंसान या स्पेशल इंसान का बर्थडे आ रहा है तो कैसे उनको, उनके गुल्लक को आपको भरना है, तो आप ये सोचिए और साथ ही ये प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

चाहिए शामो सुबह तू चाहिए। जी हाँ, बस आपको अपने करीबी को, अपने दिल के पास जो इंसान है, बस उसको इतना ही एहसास दिलाना चाहिए कि बस तू चाहिए, तू चाहिए। और वो तू चाहिए वाला जो एहसास है वो आप कब दिखा सकते हैं, क्योंकि आप फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर नहीं रहे, तो आपको एक्सप्रेस करना है ये फीलिंग उनके जन्मदिन पर। और दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग महंगे तोहफों को किसी का प्रेम समझ लेते हैं, पर उसके लिए खास तोहफा तो वो होगा ना जो आप उसके दिन को खास बना देंगे। तो सबसे प्यारा जो खास तोहफा और सबसे महंगा तोहफा होगा वो आपका उससे बोलना होगा। जी हाँ, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देंगे। एक आप ये भी कर सकते हैं कि आप बहुत पुरानी फोटो जो उनके पास भी ना हो उनको कहीं से ढूंढ के कोलाज बनाकर उसमें एक छोटा सा दिल को छू लेने वाला मैसेज लिखकर आप उनको कर सकते हैं सरप्राइज। और इससे क्या होगा ना, इससे होगा जो सामने वाला है वो ये समझेगा कि आप उसके लिए कितने

इतनी प्रीशियस हो। और ये जो पुरानी यादें जो कोलाज के रूप में आपने सामने वाले को दिए ना, वो इन खुशियों को हमेशा संजो कर रखेगा। तो बस अपने खास को, अपने खास के बर्थडे को और स्पेशल बनाइए। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, छोटे छोटे से एफर्ट्स करके उसको स्पेशल फील कराइए और साथ ही प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी, इस गाने ने एहसास तो दिला दिया और आपको पता भी है कि कोई खास बना है आपके लिए, लेकिन उस खास को खास फील कराना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम बताते हैं एक और खास तरीका जिससे आप सामने वालों, जिसका आप बहुत ज्यादा वो आपके लिए खास है, उसके स्पेशल डे को कैसे भर सकते हैं खुशियों से। वो तरीका ये है कि उसके जन्मदिन पर बस आप सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बातें सुने। जी भाई, ये बात तो बहुत जरूरी हो जाती है ना, क्योंकि हमारा मन करता है कि हमको भी कोई अच्छे से सुने, मतलब अपनी ना कहे लेकिन हमारी भी सुन ले। तो आप अगर उसका जन्मदिन है, किसी अपने खास का जन्मदिन है और आप उसकी फीलिंग्स को सुनना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो एक काम आपको ये करना होगा कि आपको उसकी बातें बिना कुछ कहे सुननी होंगी, क्योंकि वो दिन उसे आपको फील कराना है, उसे स्पेशल फील कराना है कि आप उसके लिए कितने ज्यादा स्पेशल हैं। और एक और चीज कि जिसकी एक्सपेक्टेशन आपसे उसको हो ही ना, कि अरे आप तो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन आप वो कर दें उसके लिए। जैसे आप उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर दें, जबकि आपका जो नेचर है वो इस तरीके से है ही नहीं, लेकिन आप उसके लिए अगर सोचिए ना, अगर आप उसके लिए सरप्राइज प्लान कर दें तो कैसा रहेगा। या कोई ऐसी चीज जो उनको बहुत ज्यादा पसंद है और आपको ये चीज पता है, तो आप वो चीज उसके लिए कर दें। जैसे किसी को शॉपिंग बहुत पसंद है और आप कभी शॉपिंग करने नहीं जाते, लेकिन उस दिन आप उसको शॉपिंग पर ले जाएं। जैसे आपको मूवी देखना नहीं पसंद, लेकिन आप कहें कि भाई हमें मूवी देखने चलना है आज, तो हम चलेंगे ही। तो भाई, इस तरीके के छोटे छोटे एफर्ट से आप अपने प्यारे, अपने खास इंसान के दिन को भर सकते हैं खुशियों से और गा सकते हैं उसके लिए। भाई क्या गाना है ये तो हम आप तक भेज रहे हो, और आप ये गाना सुनकर उस तक भी कन्वे कर सकते हैं।

जी 3:46 का वक्त और आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम सतरंगी दुनिया अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो बस ऐसे ही प्यार और एहसास के साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी भाई, 3:51 का वक्त और कितना अच्छा चीजें ना गाना ये एक्सप्रेस कर रहा था कि आपको अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी है दूसरे तक. जी हाँ, और कहा मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कोई नहीं, तो कभी भाई आप यही कह दीजिए कि बहुत प्यारी लग रही हो तुम, क्योंकि इन ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, हम उसका बहुत ज्यादा उसकी बचत करते हैं और कहते नहीं है सामने.

वाले से कि कितने आप उसके लिए खास हैं। ये जन्मदिन का मौका है ना, ये आपको कन्फेस करने में भी मदद करता है। आप जानते हैं, अगर आपसे कोई गलती कभी हो गई है और आप उसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आप उसको दूसरे से कन्फेस करना चाहते हैं कि अच्छा चलो मुझसे ही गलती हो गई थी, लेकिन आप क्या करते हैं, ठीक है आज नहीं कल कह दूंगा, अरे नहीं मेरी नहीं उसकी गलती थी। तो ये सब छोड़ दीजिए चीज़ों को भाई करना। और जन्मदिन वाले दिन अगर आप आपके दिल के पास बहुत ज़्यादा कोई करीब है तो उससे कन्फेस कर लीजिए। तो ये आपकी चीजों को कम नहीं करेगा, ये आपके प्यार को, आपकी केयर को और बढ़ाएगा, क्योंकि सामने वाला भी तो यही सोचेगा ना कि अरे यार कितना अच्छा इसने अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब अब इसकी जो ईगो है ना वो प्यार से, मेरे प्यार से ना कम है और प्यार सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आप अपने किसी खास से शेयर करना चाहते हैं, कोई गलती हो गई आपसे और आप कन्फेस करना चाहते हैं, तो ये जो बर्थडे का मौका है ना इसको बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिए। और साथ ही ये प्यारा सा ट्रैक भी एंजॉय करिए।

0: जी 3:56 का वक्त और ये वक्त कह रहा है कि भाई शिखा अब टाटा बाय बाय करना होगा यहाँ से, भाई हाँ स्टूडियो से भी जाना होगा क्योंकि एक बहुत ही प्यारी सी आवाज हमारे बीच आ चुकी है जो अगला प्रोग्राम आपके बीच प्रस्तुत करेगी। तो अभी एक घंटा जो अगला वाला होगा ना वो आप एक और प्यारी सी आरजे के साथ व्यतीत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कौन आया है आज स्टूडियो में।
1: हाय शिखा, और कैसी हैं आप?
0: हेलो शिल्पी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप भी लग रहा है कि बिल्कुल फुल तैयारी।

0: के साथ अपने लिसनर्स से जुड़ने के लिए आ गई हैं।
1: जी जी, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जिस दिन मुझे अपने लिसनर्स से कनेक्ट होना होता है, उस दिन मैं ओवर एक्साइटेड होती हूँ। और आपको बता दूं कि बाहर का जो वेदर है ना,
0: जी जी,
1: थोड़ा सा कल से बारिश हुई ना, तो जो हवाएं हैं वो लू वाली खत्म होगी, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी से।
0: मतलब शिल्पी ने बहुत अच्छी सी हम लोगों को एक जानकारी दे दी है कि शिखा आप अगर यहाँ स्टूडियो से निकलेंगी तो आपको वेदर थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब हम शिल्पी के साथ स्टूडियो को छोड़ते हैं और आपसे करते हैं टाटा बाय बाय। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी दिन और। टिल देन टाटा बाय बाय।

नमस्कार, शाम के 4 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी। उन्होंने इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने यह कड़ा निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी भी योग्य छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं के हाथों में पड़े या अनियमितताओं का शिकार हो। मऊ के मधुबन नगर पंचायत में स्थित गांधी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करीब 130,17,62,000 रुपए की लागत वाली 49 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में हर गरीब के लिए पानी व सरकारी खाद्यान्न है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का पैसा विकास में लग रहा है जब ये विकास दिख रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है, अन्नदाता किसान के लिए सरकार के पास कई योजनाएं हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया जिसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित मनगढ़ंत दावे और ईरान अमेरिका मध्यस्थता के बारे में टिप्पणियां शामिल हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावा किया है कि वीडियो को डिजिटल रूप में बदला गया है और AI द्वारा बनाया गया है। इकाई ने बताया कि यह वीडियो पाकिस्तानी दुष्प्रचार अकाउंट द्वारा प्रसारित किया जा रहा है और दोहराया कि श्री मोदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रकृति की अनुपम छटा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से आलोकित गोवा भारत की विविधता में एकता का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कामना की कि गोवा ने राज्य निरंतर प्रगति, समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के पथ पर अग्रसर रहे और

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: चार बजकर 3 मिनट का वक्त, गुड इवनिंग, हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और यूथ वेव लेकर हाजिर हो चुकी आपकी अपनी दोस्त शिल्पी। और भाई आप हो सकता है कि रेडियो पर कान लगाए हों और जानना चाहते हो कि आज क्या आएगा, या फिर अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन या ऐप पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो। तो भाई जहाँ भी हैं आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, और खूबसूरत से गाने लगातार आप सुन रहे हैं तो ये कंटिन्यूटी हम ब्रेक नहीं करेंगे, यानी गानों का, अच्छे गानों का सफ़र यूँ ही मेनटेन रखेंगे। फिलहाल आज यूथ वेव में बात होगी उस चीज़ की जो आपसे बिल्कुल अलग नहीं रहता है, यानी आपके पास रहता है। एक ऐसी चीज़ जो नहीं मिलती तो आप बहुत बेचैन हो जाते हैं और आपको लगता है अरे कहाँ रख दिया। मतलब एक ऐसी चीज़ मुझे लगता है जिसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो चीज़ है आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप। और अक्सर आप देखिए बहुत बेचैनी होती है जब मोबाइल नहीं मिलता, चाहे आप हो चाहे हम, कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया। हम लोग की बेचैनी अलग तरह की होती है, जैसे लगता है एक तरह का एडिक्शन है और हम सब उससे बिल्कुल अछूते हैं भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे होते हैं जो मोबाइल के थ्रू होते हैं, या फिर हम अपना बहुत सारा टाइम पास मोबाइल के थ्रू करते हैं ना। अब बात आती है कि आज यूथ वेव में हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो भाई आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूँ तो हम बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी यानी जो गैजेट्स हैं वो हमारे चारों तरफ हैं। तो भाई डिजिटल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, और आज का जो हमारा सेगमेंट है यानी हाइजीन की हम बात करते हैं, तो फिर आज बात करेंगे डिजिटल हाइजीन की। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, और क्या बातें होंगी ये जानेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले जिसका नाम लिया उसके लिए कुछ तो सुनना जरूरी है ना। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू 100.7 FM रेनबो।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్.

हाथों में मोबाइल बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। भाई डिजिटल हाइजीन यानी कि मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, इसकी सफाई और उससे जुड़ी सेहत। वेल हमारे हाथ में कुछ हो ना हो यानी मोबाइल जरूर रहता है और कुछ भी छुए कहीं से आए उसी हाथ से मोबाइल का इस्तेमाल हम बार बार हम क्या आप भी करते होंगे तो इसका रिजल्ट होता है इस पर ढेर सारा बैक्टीरिया, धूल, गंदगी और कई बार वायरस तक आ जाते हैं। तो कैसे रखें साफ आप इन गैजेट्स को, यानी क्या हाइजीन होना चाहिए इन गैजेट्स के लिए, यही जानेंगे हम आज यूथ वेव में।

आज हर कोई दीवाना इन गैजेट्स का, इस बात से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते. फिलहाल इनकार इस बात से भी नहीं कर सकते कि 4:15 हो चुके हैं. यूथ वेव प्रोग्राम आप इंजॉय करें 100.7 FM रेनबो पर. एंड हाँ, आपके हाथों में खुजली होती है अगर हम शांत बैठे हैं और मोबाइल को हाथ ना लगाएं. बार बार हमारा हाथ जैसे कुछ ढूंढता रहता है, जैसे लगता है मोबाइल की वजह से मेरे हाथों में भी आंखें आ गई हैं. और आदतें जो होती है ना वो बड़ी अजीब होती हैं. वेल, ये तो वो आदत है जो छुटाए ना छुटे. एक रिसर्च ये कहती है कि जो मोबाइल स्क्रीन होता है आपका, वो उसमें टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदगी होती है. तो प्लीज़ प्लीज़ मोबाइल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. और सिर्फ मोबाइल नहीं, जो भी गैजेट्स हैं उनको क्लीन करने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं. और वो क्या चीज़ें हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ईजिली आप इन्हें साफ़ कर सकते हैं एंड इनको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. क्योंकि आपको याद होगा जब हमारे यहाँ कोविड जैसी महामारी आई थी, उस समय गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी कि भाई हाथों को बार बार धोएं. क्योंकि अक्सर ऐसा होता ना, हमारे हाथ कई सारी चीज़ें छूते हैं और हम अनदेखे अनजाने में हाथों को अपने मुंह पर, अपने होठों पर और कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं, जिससे कि जो चीज़ हम छूते हैं उस पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाते हैं. सो इस खूबसूरत सी चीज़ को, इस मोहब्बत करने वाली चीज़ को, जिसे साफ रखना बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी मोहब्बत में कोई बाधा ना आए और आप डिजिटल हाइजीन को अपना कर एक अच्छे, क्या कहेंगे, एक अच्छे दोस्त साबित हों अपने डिजिटल गैजेट के साथ.

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
3: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
5: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, The heartbeat of Lucknow.
6: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रोजगार समाचार। सुनते रहिए यूथ वेव 100.7 FM रेनबो पर।

चार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जेनोमिक्स संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदनाम है सहायक प्रोफेसर, पदों की संख्या 6 है जिनमें से 3 पद अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी और 1 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार विस्तृत विवरण देखने के लिए देख सकते हैं वेबसाइट apply.nibmg.ac.in। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस ईमेल पर अपनी जिज्ञासा प्रेषित कर सकते हैं 2026 faculty recruitment@nibmg.ac.in। आंध्र विश्वविद्यालय

0: विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या MS 54 के अनुसार विश्वविद्यालय में 523 रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को जारी और दिनांक 1 नवंबर 2023 को प्रकाशित शिक्षक भर्ती अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं। 2023 की अधिसूचनाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क की वापसी संबंधी जानकारी के लिए ये सलाह दी जा सकती है कि वे विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट को देख सकते हैं www.andhrauniversity.edu.in। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

4:30 हो गए, आप सबको बता दें कि आप सुन रहे यूथ वेव 100.7 एफएम रेनबो पर। रोजगार समाचार के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं यूथ वेव का ये सफर। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल हाइजीन के बारे में, तो बातें अभी और चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द फिल्म आंखें।

जी बहुत प्यार होता है आपको अपने गैजेट से, और उससे बिल्कुल भी आप अलग रह नहीं पाते हैं। जैसे ही वो खोता है तो शायद आप और कोई चीज़ इतना ध्यान से ना ढूंढते हो जितना उस गैजेट को ढूंढते हैं कि अरे कहाँ गया है। वैसे ऐसा तो ना, जब कहीं जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, यह बात आप सही जानते हैं। केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं, अगर आप अपने व्हीकल से भी आते जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हैंडल्स हम छूते हैं, और जब हम कहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमारे हाथ उन जगहों को टच करते हैं और उसके बाद हम मोबाइल छूते हैं। तो याद रखिए, मोबाइल और जो लैपटॉप है वो हमारी ज़िंदगी जितनी आसान बनाते हैं, लेकिन जो उनकी सफाई है वो हमारी सेहत के जो है वो सेफ्टी है। यानी अगर सेहत हमें सही रखनी है तो इन गैजेट्स को भी हमें साफ़ सुथरा और अच्छा रखना पड़ेगा।

जी 4:46 के ऊपर फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं यूथ रेडियो शिल्पी के साथ 100.7 FM रेनबो पर. और आपको बता देते हैं जो डिजिटल हाइजीन की हम बात करें, उनकी टिप्स की बात करें, तो भाई दिन में कम से कम एक बार मोबाइल जरूर साफ करना है आपको. माइक्रोफाइबर का क्लोथ आता है उसको जरूर यूज कीजिए, उसे साफ करिए. और वाइप्स आते हैं उन्हें भी यूज करके आप अपने मोबाइल को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं.

जी, कई बातें ऐसी होती हैं जो दिल नहीं कह पाता है, लेकिन आपकी आंखें बयां कर देती हैं। जब आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो आप समझ जाए कि आप स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये तो भाई बात हो गई आपकी सेहत की, लेकिन हम तो यहाँ हाइजीन की बात करें, और हाइजीन भी आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, ये भी आप जानते हैं। तो हम भाई बता दें कि जब खाना खाइए, अक्सर होता है कि इंसान खाना खा रहा होता है और लगातार उसमें की पैड यानी बटन्स दबते रहते हैं और स्क्रॉल होता रहता है, स्वाइप करते रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं। तो थोड़ा ये आदत अगर आप में भी है तो इसे चेंज कर दीजिए कि खाने के वक्त बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ ना कीजिए, और अपना मोबाइल छोटे बच्चों से ज़रूर दूर रखिए, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे मोबाइल छूने के बाद अपनी उंगलियों को मुँह में डालते हैं, जो इस पर बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारी का कैरियर बनते हैं, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं और आपको लगता है अरे कैसे बीमार हो रहे हैं, इतना ध्यान रखते हैं। और एक ख़ास चीज़ हालांकि आप सब जानती हैं फिर भी मैं बता देती हूँ कि मोबाइल में स्क्रीन गार्ड और कवर जरूर लगाइए, जिससे कि धूल और गंदगी कम जमे और आपका मोबाइल सेफ रहे। बहुत प्यारी सी चीज़ है ना, इसके बिना रहा नहीं जाता है, लेकिन रहना तो अगर आपको इसके साथ है तो कुछ सेफ्टी टिप्स को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।

मैं बात करी थी ना, लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है ना, बहुत सारी चीजें स्मूथ चलती रहती हैं, अचानक एक ब्रेक आता है एंड सडनली हमें लगता है अरे अभी तो सब स्मूथ चल रहा था, ये क्या हुआ। ऐसे ही सडनली एक ब्रेक आया हमारे प्रोग्राम में एंड हमें लगा अरे ये क्या हुआ। सडनली एक दूसरा सॉन्ग आपके लिए मैंने भेजा है एंड आई होप वो भी आपके दिल को छुएगा। एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 5 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान और भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन सेवा और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काई कॉस्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों शव भूरा देव मंदिर के पास बरामद हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने लोगों से जल प्रवाह वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD लखनऊ केंद्र ने आज सुबह जारी की। चंद्रशेखर आजाद कृषि और मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. SN सुनील पांडे ने बताया कि प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और

तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

5:03 समय एक बार फिर शिल्पा हाजिर हो चुके हैं आपके लिए एफएम टॉप 10 लेकर। एंड एफएम टॉप 10 में आप सभी का स्वागत है और आप जानने को उत्सुक होंगे कि भाई आज कौन सी समय के टॉप 10 की बात होगी। तो भाई टॉप 10 गीतों की बात करें तो आज हम बात करेंगे ईयर 2 के से लेकर कुछ और सालों की जो गाने बहुत हिट हुए एंड लोग की जुबान पर आज भी हैं और आज भी जब ये गाने बजते हैं तो लोग इसे फटाफट यूं ही गुनगुनाने लगते हैं। सो स्टेडियम 200.7 एफएम रेनबो, पहला गाना जो आज हम प्ले करने जा रहे हैं ये गाना फिल्म जोश का है और ये गाना आपको बता दें गोवा में शूट हुआ। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई है और आपको बता दें ऐश्वर्या राय चंद्रचूड़ सिंह की बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है इस गाने में और ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है, म्यूजिक अनु मलिक का है। इस फिल्म की कहानी आपको बता दें हॉलीवुड की मशहूर फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी से इंस्पायर्ड थी और इस फिल्म के गाने बहुत सुपर डुपर हिट हुए। तो चलिए बिना देर के नंबर 10 पे सुनते हैं गाना उस समय का फिल्म जोश का, कौन सा सुनिए।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अब हम टॉप 10 में नंबर 9 सॉन्ग की बात करते हैं। वो सॉन्ग है फिल्म धड़कन का, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। और अपनी शानदार स्टार कास्ट, बेहतरीन प्रेम कहानी और सदाबहार संगीत के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। आइकॉनिक म्यूजिक और गाने थे। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने दिया था, जो आज भी लोग की जबान पर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि फिल्म का जो टाइटल है धड़कन शब्द को लगभग आप हर सुपरहिट गाने में बहुत ही खूबसूरती से इसको वीव किया गया, एंड यू कैन लिसन टू इट वेरी इजीली। फिलहाल ये खूबसूरत ट्रैक और नंबर 9 धड़कन मूवी का आप इंजॉय कीजिए।

चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

और नंबर 8 सॉन्ग है मोहब्बत फिल्म का, आंखें खुली हो या बंद. ये गाना सिर्फ शब्दों और म्यूजिक का मिल नहीं, बल्कि इसमें फिल्म की जो भावना है, फीलिंग्स हैं, कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी दिखाई देती है. और इस आइकॉनिक गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा और म्यूजिक जतिन ललित ने दिया.

एक परफेक्ट डांस ट्रैक जैसे ऋतिक रोशन ने बखूबी परफॉर्म किया, लकी अली ने खूबसूरत गाना गाया, इसका म्यूजिक राजेश रोशन का था। और आपको बता दें नंबर 7 पे ये सॉन्ग रहा, लेकिन अगेन ऑन नंबर 6 ऋतिक रोशन फिल्म फिजा का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सा आज महिया। और आपको इसके बारे में खास बात और बता दें, और इस गाने की खास बात ये थी कि ये जो फिल्म थी, यानी जो फिजा फिल्म थी, ये ऋतिक रोशन के करियर की शुरुआती फिल्मों से में से एक है, और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। और इस फिल्म का संगीत काफ़ी लोकप्रिय होता है, यार रहमान और अनु मलिक ने एक गाना था जो तू फिजा है और आँखें बंद करके, ये सब आज भी लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं। लोगों की जबान पर जब ये गाने जब आते हैं तो लोग की दिल से आवाज़ निकलने लगती है और उस गानों को रिपीट कर लगते हैं। सो नंबर 6 सॉन्ग बहुत प्यारा सा जो मैं ये फ्रॉम द फिल्म फिजा।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

5:32 और इस समय आप सुन रहे फिल्म धूम का गाना ऑन नंबर 5। वेल, साल 2004 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद आई धूम 2 और धूम 3 ने भी एक्शन और थ्रिल का ऐसा लेवल सेट किया कि आज भी इस दूसरी फिल्म का लोग इंतजार बहुत कर रहे हैं। और आपको साथ ही बता दें कि इस फिल्म में उदय चोपड़ा का बहुत चुलबुला अंदाज लोगों को देखकर मजा आया। आइकॉनिक डायलॉग भी खुद उदय चोपड़ा ने ही लिखे थे।

नंबर फाइव पे धूम मचाने के बाद नंबर फोर पर है गाना वो बंटी एंड बबली का. जब 2005 में फिल्म बंटी और बबली का ये सुपर हिट गाना कजरारे बना था तो इसके पीछे एक बहुत मजेदार किस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ. शुरुआत में शंकर एहसान लॉय की टीम ने अमिताभ बच्चन के हिस्से के लिए एक रफ डबिंग करवाई थी. ये सिर्फ उन्हें समझाने के लिए था कि गाना ये कैसा लगेगा. लेकिन जब अमिताभ बच्चन को अपना फाइनल हिस्सा रिकॉर्ड करना था तो उन्हें बताया गया कि गाने का नाम कजरारे है. तो उन्हें बताया कि इस रफ डबिंग को वो पहले ही सुन चुके हैं और उन्हें वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोबारा डब करने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि उस रफ वर्जन में वो जादू और मस्ती उसे बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है. तो चलिए इंजॉय करते हैं ये मस्ती भरा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बंटी एंड बबली ऑन आर फोर ऑन द नंबर फोर.

जो बिल्कुल अंदाज पुराना नहीं, अंदाज नया है. और अंदाज नए में 2006 की आई मूवी का भी अलविदा ना कहना की बात करते हैं. मूवी का एक सॉन्ग बहुत प्यारा सा, मूवी का सॉन्ग मितवा. एक ऐसे मोड़ पर आता है जब दो किरदार यानी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को यह एहसास होता है कि वो जो है वो एक दूसरे के लिए जो उन लोग के रिलेशनशिप थे, मैरिज रिलेशनशिप, वो परफेक्ट नहीं थे. और उन लोग को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के प्यार में. और बहुत ही प्यारा गाना पिक्चराइज किया गया है. और एक दूसरे की भावनाओं से भाग ना चाहते हैं लेकिन फिर उनके दिल एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं. इस गाने में इस बात को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया, मितवा यानी दोस्ती, हम सफर. तो दुनिया की सारी बंदिशें और डर पीछे छोड़ जाते हैं जब प्यार आपके दिलों पर दस्तक देता है, इस गाने में ये कहा गया है. और कभी अलविदा ना कहना 2006 की मूवी, बहुत प्यारी सी मूवी एंड बहुत प्यारा सा ट्रैक. यू आर गोइंग टू लिसन 107 FM रेनबो. प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10 शिल्पी आपके साथ 107 पे.

और 5:54 क्या 5:55 हो गए. प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है. एंड यस, यू आर वेटिंग फॉर द नंबर वन सॉन्ग. सो नंबर वन सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी जब वी मेट. बहुत खूबसूरत सी मूवी एंड ऐसा गीत है ये जो मैं प्ले करने जा रही हूँ. आओ मिलो चले, सुकून आज़ादी और अनजाने सफ़र के एक्साइटमेंट को बयां करने वाला सॉन्ग. इम्तियाज अली की फिल्म बहुत खूबसूरत पड़ाओ, जहाँ पर आदित्य और गीत जिन्होंने किरदार निभाया, अपनी अपनी मंजिलों को से दूर खुद को तलाशने की एक नई शुरुआत करने के सफर पर निकलते हैं. इस गीत में शान की मखमली आवाज़ और उस्ताद सुल्तान खान के सरंगी की जुगलबंदी ने इसे एक रूहानी गहराई दी है. और जो खूबसूरत पहाड़ी रास्ते और बर्फीले इलाके हैं वो मनाली शिमला के हैं, जहाँ पर इसे शूट किया गया था. वंडरफुल सॉन्ग एंड आर एफएम टॉप 10 नंबर वन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जब वी मेट. एंजॉय.

आज मुझको 58 मिनट 28 सेकंड प्रोग्राम वाइंड अप करने की इजाजत चाहती है शिल्पी, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो आपका खूबसूरत प्रोग्राम दरअसल शाम अवध उसको लेकर फिर से हाजिर होती हूँ बस कुछ ही पलों में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड 200.7।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर,
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

नमस्कार। शाम के 6 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से रसोई गैस कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। खुदरा बिक्री केंद्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 150 जिलों ने पेट्रोल में 30% वृद्धि और 156 जिलों ने 30% से अधिक वृद्धि की सूचना दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। 2 पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है। रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद सजा खत्म हो गई है। हालांकि 2 पैन कार्ड मामले में सजा के चलते जेल में बंद अब्दुल्ला आजम फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी, तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जानकारियां देते हैं, ट्रैफिक की जानकारी आपको मिलती है, इसके अलावा और भी बातें जो आपके काम की होती है हमारे काम की भी होती है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। वैसे हम आपको बताएं कि ये जो बारिश हुई है, हल्की फुल्की ही सही जो बारिश हुई है, उससे मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया। यानी जो हमारी ज़मीन तप रही थी, बिल्कुल गर्मी हो रही थी, उसने मन को ठंडक पहुंचाई और शरीर को भी ठंडक पहुंचाई। यानी कुछ अच्छा लगा, नहीं तो वो लू चलती थी, उससे हाल बेहाल रहता था, और अब थोड़ी हवाओं में ठंडक ने जगह ली है। और भाई, ये ख़ास बात यह होती है कि जब भी कुछ बदलाव होता है तो बहुत ही खूबसूरत होता है। कुछ दिन अगर आपके ज़िंदगी में कुछ दुख के बादल आ जाते हैं, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं सुख के बादल ज़रूर आएंगे, और यूं ही बारिश होगी, गर्मी जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। बहरहाल, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हम एक खूबसूरत सा ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद बहुत काम की बात आपके लिए लेकर बिल्कुल हैं हम तैयार।

जी 100.7 FM रेनबो पर इस पल मैं हूँ इस पार और आप हैं उस पार, यानी कि शिल्पी है आपके लिए प्रोग्राम शाम अवध लेकर बिल्कुल तैयार। और शाम अवध में हम ढेर सारी बातें करते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, 100.7 FM रेनबो लखनऊ की धड़कन, धड़कन लखनऊ की और हमारी आपकी धड़कन। फिलहाल मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो मेरा दिल ऑटोमेटिकली धक धक करने लगता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2026-27 में MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कार्यक्रम में प्रवेश शुरू कर दिए हैं और ये 2 साल का PG प्रोग्राम है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की ओर से इसे पेश किया जा रहा है। 60 सीट्स हैं इसमें और ये युवाओं को फार्मास्यूटिकल में इस बिजनेस में, इस जगह पर आपको रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और जितनी भी जानकारी है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और भाई आपको हम बता दें कि आप अगर चाहते हैं इस फील्ड में जाना तो ज़रूर जाइए और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। और आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।

0: जी मैम, अभी तो वर्तमान में कोई विशेष डायवर्जन नहीं है, बस
1: जी
0: ये है कि पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो पीक आवर्स के समय में थोड़ा अतिरिक्त ट्रैफिक लोड रहता है हमारे सभी प्रमुख मार्गों पर।
1: जी जी
0: जैसा कि अभी अंडे की चौकी की तरफ थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा वहां पर दबाव है,
1: जी
0: और यदि आप अंडे की चौकी और काकोरी साइड में सफर कर रहे हैं तो कृपया आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। पहले से ही सजग रहेंगे तो आप जो है वैकल्पिक मार्ग चयन कर पाएंगे और अपने गंतव्य तक सुगमता से जा सकेंगे।
1: जी
0: यदि
1: हमारे
0: आप अंडे की चौकी की तरफ जा रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार से ट्रैफिक आवश्यक चाहिए, आपको अविलंब पहुंचना है, मेडिकल इमरजेंसी है,
1: जी
0: तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 94-44-51-55 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: एक बार ये नंबर
0: अन्य
1: सर फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि जो लोग भी संपर्क करना चाहें वो तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकें। जी
0: जी मैम, 9454-405155
1: जी
0: ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और किसी प्रकार की ट्रैफिक की असुविधा पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अवगत भी करा सकते हैं। साथ
1: जी
0: ही हम ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, हमारा लखनऊ ट्रैफिक का पेज है जिसपे हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, वहां पर भी आप हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैम, अगर बात करें लखनऊ का अयोध्या की, तो हमारा जो कमता से लेकर के चिनहट का एरिया है ये थोड़ा सा प्रेशर में है, और शहीद पथ की बात करें तो जो हमारा शहीद पथ के पास में विजयपुर अंडर पास के पास में थोड़ा सा
1: जी
0: ट्रैफिक है, बाकी सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस प्रतिबद्ध होकर सुगम यातायात का संचालन करा रही है। जैसा कि अभी अवगत कराया गया कि अगर आपको कहीं असुविधा हो रही है तो
1: जी
0: आप हमें हेल्पलाइन नंबर जो हमने अभी अवेलेबल कराया
1: जी
0: उस पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम,
1: सर एक बात और जानना चाह रहे थे कि बल्कि जानना क्या चाह रहे थे, बस आपके थ्रू एक मैसेज अपने लिसनर्स को पहुंचाना चाह रहे थे कि सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं फैमिली को भी, और जिसकी दुर्घटना होती है जो क्षति हो पहुँचती है वो किसी एक परिवार की नहीं होती, कि मतलब एक इंसान की नहीं पूरे परिवार की होती है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि क्या सावधानियां बरतें, खास तौर पर जो युवा हमारे हैं जो कान में लीड लगाकर चलते हैं और उन्हें अक्सर ये आभास नहीं होता कि पीछे से लगातार कोई हॉर्न उनको दे रहा है किनारे हटने का, और वो यूं ही ट्रैफिक का अनदेखा करते हुए आगे चलते हैं। जी
0: बिल्कुल मैम, और आपके माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम श्रोताओं तक ये चीज पहुंचा पा रहे हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप जो है यातायात नियमों का पालन करते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं से बचते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में जहां एक तरफ एक परिवार के लिए दिक्कत होती है, वहीं दूसरे तरफ दुर्घटना में घायल दूसरा व्यक्ति, दो परिवारों के लिए समस्या उत्पन्न होती है, दो जान जोखिम में रहता है। तो इसलिए अनुरोध है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सड़क दुर्घटनाओं का कारण होता है मोबाइल हैंडलिंग, जैसे आपने बताया कि जब वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का यूज करना, ओवर स्पीड, वाहन का ओवर स्पीड जो है सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा कारण होता है। मादक द्रव्यों का सेवन करके वाहन चलाना, रेड लाइट जंपिंग करना तथा रॉन्ग साइड में वाहन चलाना, ये सब कारण जो होते हैं ये सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के कारण में होते हैं।
1: जी जी
0: साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट ना धारण करना, अगर
1: बिल्कुल
0: देखा जाए कि दो पहिया चालकों में सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण यही रहा है सड़क दुर्घटना में, कि यदि डॉक्टरों द्वारा भी बताया गया कि अगर उन्होंने हेलमेट लगा लिया होता
1: जी
0: तो शायद हम उनकी जान बचा लेते।
1: जी
0: तो मेरा यही अनुरोध है कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें, इनसे बाइक चला रहे तो आप हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें ताकि जो है आप किसी भी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से बच सके, और यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और
1: जी
0: एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM
1: जी
0: रेडियो
1: जी बहुत
0: कार्यक्रम लखनऊ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह जी, संपूर्ण जानकारी हम तक देने के लिए और साथ ही हमारे श्रोताओं को देने के लिए। और जैसा कि विकास सिंह जी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी मत कीजिए और ये हेलमेट हमेशा लगा के चलिए। इसको जो है वो अक्सर लोग बाइक के हैंडल पे टांग लेते हैं और बाइक के हैंडल को उतनी जरूरत नहीं है सेफ्टी की जितने आपके सर को है। तो भाई ध्यान रखिए और फिलहाल एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शाम अवध शिल्पी के साथ।

0: जी आप भी पूछते कैसे हुआ, जब तक आपको ट्रैफिक की पूरी जानकारी नहीं होती और अचानक से डाइवर्जन हो जाते हैं, तो ट्रैफिक की जानकारी होना जरूरी है। ट्रैफिक की जानकारी देने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी हैं। आइए उनसे, विकास सिंह जी से ही जानकारी लेते हैं कि क्या है ट्रैफिक का हाल हमारे शहर में। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम शाम ए वक्त में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड इवनिंग सभी श्रोताओं को, नमस्कार
0: जी। सर बताइए कि लखनऊ में आज ट्रैफिक का क्या हाल है, और बहुत ज्यादा कहीं डाइवर्जेंस वगैरह तो कुछ ऐसे नहीं है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े?

जी 6:36 हो गए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कौन सा शाम अवध और भैया हर कहते हैं ना कि हर दिन कुछ ना कुछ खासियत समेटे रहता है जैसे आज का दिन आज माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन जो होता है साहस दृढ़ निश्चय और मानव इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है क्यों क्योंकि इसी दिन साल 1953 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और नेपाल के प्रसिद्ध शेरपा तेनसिंग नोर्गे ने पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर एक हिस्ट्री क्रिएट की थी और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में हर साल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। दरअसल माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो एक पर्वत नहीं है बल्कि ये एक संदेश है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी साहस धैर्य और निरंतर प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है और सभी उन माउंटेनियर्स को ये समर्पित है जो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना सीखते हैं और अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो अगर अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए हर कठिन से कठिन डगरिया कैसे प्रेम डगरिया बन जाती है। कैसे लीजिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: तो भाई ट्रैफिक की जानकारी के बाद और ढेर सारी जानकारी के बाद अब एक और मतलब की बात आपको बता देते हैं. 6:44 हो गए. मतलब की बात ये नहीं, इस समय में मतलब की बात जो आपको बता रही हूँ वो सुनिए. प्राविधिक शिक्षा परिषद ने 28 मई को जो भी प्रपोज्ड जितने भी एनुअल और इवन सेमेस्टर के और विशेष बैक पेपर जो है उनकी जो एग्जाम्स डेट थी उस बदल दी है. अब ये परीक्षाएं 31 मई को होंगी. इस चीज का खास ध्यान रखिए, यानी पॉलिटेक्निक परीक्षा अब 31 मई को होगी. यही नहीं, इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू ने भी सभी परीक्षाओं को 28 मई की परीक्षाओं को तारीख उसकी बदल दी है और ये परीक्षाएं अब नई तारीखों पर होंगी, जिसका जो शेड्यूल है वो जल्दी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो मैंने कहा उपलब्ध करा दूं, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई के बाद जब एग्जाम्स की बारी आती है तो वो टाइम पर अगर नहीं हो पाते तो दिल की धड़कनें और बढ़ जाती है. यानी जैसे लगता है अब एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन अगर किसी वजह से वो टल जाता है तो लगता है चलिए हमें एक दिन और मिल गया प्रिपरेशन का. तो चलिए अभी तो यानी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स तो 31 मई को होंगे, लेकिन एकेटीयू की परीक्षाएं आपको वेबसाइट पर मिलेंगी, जिसको आप विजिट कर सकते हैं. और विजिट ही नहीं कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अब एग्जाम्स कब होंगे.

जी बंधु सका हम ही है, तभी हम आपको बहुत मतलब की बातें बताते रहते हैं। प्रोग्राम शाम अवध में 6:50 पर हम आपको बता दें कि लखनऊ से वाराणसी के बीच चलने वाली लखनऊ वाराणसी लखनऊ स्पेशल गाड़ी अब नियमित रूप से दौड़ेगी। और आपको बता दें वाराणसी से ट्रेन का जो है वो नियमित संचालन 28 में और चारबाग स्टेशन से लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस का संचालन 28 मई यानी कल से हो चुका है, नियमित रूप से होगा। और ये बहुत ही खास बात है क्योंकि ऐसा है ना कि अब जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और ऐसे में कोई ट्रेन ऐसी स्पेशल अगर आपको जाना है और नियमित रूप से चलने लगे तो आपको डे स्पेशल नहीं रहेगा कि इस दिन जाना होगा या इस दिन जाना होगा, आपका जब मन हो वह आप डिसाइड करेंगे और आपको ट्रेन मिलेगी, फटाफट आप चल देंगे।

जी तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है, 6:54 हो गए। चलते चलते आपको बताते हैं, गर्मी के मौसम के चलते डायरिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी है। तो भाई बहुत अलर्ट रहने की बात है, अलर्ट रहने की ये बात है कि प्रोसेस जो बाहर का खाना बिल्कुल भी मत लीजिए, और बाहर धूप से अगर एकदम से एसी के संपर्क में ना आइए या एसी से तुरंत बाहर ना निकलिए, और साथ ही बहुत तेज़ धूप जो होती है उसमें बच्चों को ले जाने से बचिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। और साथ ही जब आप निकलिए तो आप भी बहुत ध्यान रखिए कि घर से पानी पीकर निकलिए, अपने साथ पानी की बोतल साथ में रहनी चाहिए, और साथ ही सिर को ढक के रखिए। अगर चाहिए तो आप अम्ब्रेला का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप गर्मी से बचे रहे और गर्मी की जो समस्याएं हैं डायरिया और डिहाइड्रेशन से भी आपकी बचत रहे। फिलहाल भी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर शिल्पी रहेगी आपके साथ। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर मेरा आपका रहेगा साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, शाम के 7 बजे आप सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। जनपद हमीरपुर के ललपुलार थाना क्षेत्र के मोरांकादार गांव के पास अब बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है। रामपुर में MPMLA सेशन कोर्ट ने आज उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने इटावा और रैया के विद्युत विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विद्युत विभाग में लापरवाही गड़बड़ियां रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के तेज बहाव में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर आज टीन शेड गिरने के कारण टीन शेड के नीचे कई यात्री दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची GRP RPF ने राहत बचाव कार्य करते हुए सभी को बाहर निकाला। हादसे में 2 यात्री और 1 TT घायल है। कानपुर नगर के उद्योग निदेशालय सभागार में लीड बैंक द्वारा SLBC उत्तर प्रदेश के समन्वयक से ECLGS 5 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संबंधित हितधारकों को योजना से विभिन्न पहलुओं के अवगत कराना है। बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला प्रादेशिक बुलेटिन समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक बार फिर से आप सबको गुड इवनिंग कहती है आपकी दोस्त शिल्पी, और 7:39 पे हेलो एफएम का सफर होने जा रहा है शुरू। तो भाई हेलो एफएम का सफर, आप जानते हैं क्या करना होता है, आपको नंबर्स डायल करने होते हैं, हमसे बातें करनी होती हैं, और साथ ही भाई अपने पसंद के गाने भी

आपको हमें भेजने होते हैं, यानी बताने होते हैं, क्योंकि हम आपसे करते हैं ढेर सारी बातें. तो भाई नंबर आपको हम बता देते हैं 0522, तो लखनऊ का कोड आप जरूर अप्लाई कीजिएगा. 2238 42 2238 852, ये है नंबर जिनको डायल करके आप हमसे कर सकते हैं बातें. तो भाई बस देर किस बात की है, उठाइए फोन और मिलाइए. और लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर देती हूँ, और उसके बाद आपसे ये चिट चैट का सफर रहेगा जारी.

0: बोल तो मीठे अच्छे लगते हैं, तीखे बोल कहाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी इश्क मोहब्बत में तीखे बोल भी हो जाते हैं और जो बाद में मीठे में तब्दील हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कौन जुड़े हैं जानते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते जी।
0: गुड इवनिंग, नमस्ते, जल्दी से अपना नाम बताइए हमारे सभी श्रोताओं को और साथ ही हमको भी।
1: जी, विनीत कुमार बोलन, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर।
0: जिला सीतापुर से विनीत जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका प्रोग्राम हेलो एफएम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद, आपने पहली कॉल मेरी उठाई
0: जी। अरे पहली कॉल, जो भी कॉल आती मैं उठाती, ऐसा हो भी नहीं सकता कि कॉल ना उठाऊं, क्योंकि भाई ये प्रोग्राम ही आप फोन करते हैं तभी ये प्रोग्राम है। अच्छा ये बताइए विनीत जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, सब बढ़िया।
0: और क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: तो आजकल क्या आपने, आपके खेतों में आजकल क्या लहलहा रहा है?
1: गन्ने की फसल है और धान की नर्सरी डाली हुई है
0: जी। अच्छा ये जो बहुत तेज धूप होती है ये आपकी फसलों के लिए सही है या फिर ये नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा तेज धूप?
1: इसमें तो नुकसानदायक तो है, पानी मतलब गन्ने में इस समय ज्यादा लगाना पड़ता है
0: जी,
1: बिजली भी सही नहीं आती है इस समय।
0: अच्छा तो सुबह ज्यादा काम कर लेते होंगे, जितनी जल्दी धूप कम होती है उससे पहले सब काम निपटा लेते होंगे खेतों का आप?
1: हाँ बहुत ज्यादा, 9 बजे तक काम करते
0: हैं। यानी सुबह आप बहुत जल्दी जगते होंगे?
1: 5 बजे।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए, जो लोग यहाँ रहते हैं शहरों में ना, उनको थोड़ा सा ये क्या कहते हैं कि ये गांव की याद आती है कि गांव की सुबह बिल्कुल अलग सी होती है और शहरों की सुबह बिल्कुल अलग सी होती है, तो कैसा लगता है कि आपको वहाँ की सुबह जब आप उठते हैं तो एक अलग नज़ारा होता होगा, आपने महसूस किया होगा ये चीज़?
1: शहरों में जैसे लोग व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं और टहलने जाते हैं
0: जी।

0: यहाँ हम लोग टहलने तो यहाँ लोग हम सब लोग मतलब 5 बजे निकल जाते हैं, काम ही करते रहते हैं
1: जी बिल्कुल, यानी
0: तो
1: आपका काम उसी
0: काम
1: समय
0: हो जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा विनीत, चलिए जल्दी से बताइए, आप इतनी सारी मेहनत करते हैं तो हम आपकी पसंद का गाना जरूर प्ले करते हैं, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: नगीना फिल्म का है, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, दोस्तों को याद कर दे।
1: जल्दी से जल्दी से।
0: हमारे चाचा हैं बउआ महाराज दहलरा से, आजाद सिमरी से, ओमकार सीतापुर से, समा परवीन अंसारी हैं सीतापुर से, संजय हैं हमारे सरैया से, और संतोष कुमार मोर्य हैं हरदोई से, ममता हरदोई से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं
1: जी। तो चलिए आप सभी के लिए ये गाना जी विनीत एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, और आपके सभी सुनने वाले दोस्तों के लिए भी गाना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Keep listening.

0: 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो पर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है ये जानते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार, जल्दी से अपना नाम बताइए और बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम हेलो FM में।
2: दीदी आपको भी स्वागत है।
1: मेरा भी स्वागत आपने किया, थैंक यू सो मच। अब अपना नाम जल्दी से बताइए ताकि और लोग भी सुने भाई किसका फोन लगा।
2: जी जी ऐसा भी पहचान गए थे, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कचरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
1: जिला बाराबंकी से मोहम्मद फैज जी के नियमित मेल आते रहते हैं और आज हमसे बात भी हो गई आपकी। कैसे हैं फैज भाई?
2: जी दीदी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशनुमा है।
1: और ईद कैसी रही? ईद कैसी रही
2: जी हमारे? हाँ आपको तो भूल ही गए
1: जी,
2: ईद उल अज़हा की आपको ढेर सारी मुबारकबाद।
1: अरे भाई आपको भी जी, आपको भी बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। और आपकी जो मुस्कुराहट है उससे पता चला कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आजकल खूब दावतें खाने को मिल रही हैं।
2: जी जी जी जी
1: जी मतलब अब दो तीन दिन तो काम बंद रहेगा, घूमना फिरना ही चलेगा जी।
2: सही बात
1: है ना, मैं समझ गई। तो भाई आज आज कितनी जगह आप गए दावत खाने?
2: जी दीदी आज तो मैं चार जगह गया था।
1: दावत खाई आपने?
2: जी जी।
1: और ये बताइए कि भाई सब लोग साथ में जब मिलते हैं तो क्या आनंद आता, कितना मजा आता है, जरा बताइएगा हमारे सभी सुनने वालों को। जब सब भाई बहन और सब रिश्तेदार साथ होते हैं और अपने जो बहुत करीबी लोग होते हैं तो इन त्योहारों पर कैसा मजा आता है?
2: जी दीदी जब अपने खास मतलब खास अपने रिश्तेदार मिलते हैं, जैसे हमारी बहन या जीजा जी जब आते हैं
1: जी,
2: जब हम लोग मिलजुल जाते हैं तो इतना अच्छा महसूस होता है कि पूछिए मत दीदी।
1: तो भाई फैज जी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यूं ही हमेशा रौनक रहे ईद की और खुशियां बिखेरी जैसे आपने है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हम देख सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह खुशियां बिखेरते रहिए और हमारा जो आपका जो लिसनर्स के आप हैं हमारे रेगुलर लिसनर तो यूं ही हमें मेल्स वगैरह करते रहे, हमसे बात करते रहे। थैंक यू सो मच फैज बात करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाना पूछ रही हूँ आपकी पसंद का, बताइए
2: जी गाना जो लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ वो भी बताएंगे।
1: जी गाना पहले बताइए।
2: जी गाना सुनना है। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा देंगे, तुम चाहो बस जितना हम तुमको।
1: सलमान खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं आप?
2: जी जी
1: जी। तो चलिए भाई उनकी फिल्म का गाना है और किसको? हाँ
2: हेलो ना
1: जी, थोड़े से नाम लीजिए क्योंकि और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं ना, फोन लगातार ब्लिंक।
2: बिल्कुल
1: जी जी जी जी
2: जी। सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाले आरजे त्रिपिदी जी को
1: थैंक यू सो मच,
2: और उसके बाद में मोहम्मद आसिफ भाई है, रंजीत सिंह है, तमाम परवीन आपा गुलाब साहब भी है
1: जी,
2: और तमाम परवीन आपा है, मोहम्मद सद्दाम भाई है और यासिर हमीद भाई है।
1: चलिए आप सबके लिए
2: अकबर भाई है बस, और बाबू अंसारी भाई है बस।
1: जी जी चलिए सबके लिए और आपको फोन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई।
2: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार, उसके बाद जारी रहेगा हेलो FM का ये सफर 100.7 FM रेनबो पर। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय एक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की

0: उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
1: वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशेष शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर

घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सात बजकर 31 मिनट पर फिर से वापस आते प्रादेशिक हिंदी समाचारों के बाद हेलो एफएम का ये सफर जारी है। और आपको बता दें, इससे पहले भी हमारी बात हुई थी ऑफ एयर सत्यम जी से, लेकिन किसी वजह से उनका फोन कट गया। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कोई फोन लाइन पर है, आइए जानते हैं कौन है। हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
2: गुड इवनिंग, अब अपना नाम भी बता दीजिए।
3: जी, हम गुलफा सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से।
2: गुलफा सिद्दीकी संडीला से बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एफएम में कैसी हैं आप?
3: जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं बहुत अच्छी हो गई आपसे बात करके।
3: जी मैम, आपसे बात करने की बहुत तमन्ना थी हमारी।
2: अरे वाह, क्या बात है, और मेरी भी बड़ी तमन्ना थी।
3: आप दोपहर में आती थी
2: तो इसीलिए मैं चली आई आज दौड़ के। हमने कहा चलिए अब गुलफा से बात करके आते हैं। तो भाई चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ आवाज के ही माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। और गुलफा जी, ये बताइए कैसा रहा आपका मतलब त्योहार, कैसा रहा?
3: बहुत अच्छा रहा मैम, कल भी अच्छा रहा, आज भी अच्छा रहा, मेहमानों का आना जाना लगा है अभी।
2: जी, तो किचन में काफी टाइम बीत जाता है आपका?
3: जी मैम, जब त्योहार आते हम औरतों का ही काम बढ़ जाता है
2: तो बहुत सारे पकवान बना लिए आपने?
3: जी जी मैम, खाने वाले तो बताते रहते ये बना लो वो बना।
2: हाँ जी, बनाना तो पड़ता ही है।
3: जी,
2: और फिर जब स्वादिष्ट बनता है तो फिर लगता है अरे थोड़ा सा अगर और होता तो मजा आ जाती।
3: जी मैम, खाना बना लो अगर तारीफ हो जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है।
2: सारी थकान दूर हो जाती है। और गुलफा भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने प्यार से खाना बनाती हैं और लोगों को पसंद आता है, और लोगों के लिए आप फिर से बना देती हैं अगर उनको अच्छा लगता है, ये सबसे खास बात है। क्योंकि प्यार से खाना खिलाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि गुस्से में खिलाया गया खाना या पकाया गया खाना फिर शरीर को लगता नहीं।
3: जी मैम, यही होता है।
2: तो गुलफा, अच्छा ये बताइए, आप मुद्दे की बात आते हैं, मुद्दे की बात ये बताइए कितने सेट कपड़े बनवाए आपने?
3: हमने सिर्फ एक ही बनवाया है।
2: एक ही बनवाया? अच्छा, हमसे छुपाइए नहीं, ऑन एयर ये ना छुपाइए। जी
3: जी मैम, क्या
2: हमने कहा छुपाइए नहीं, बता दीजिए।
3: नहीं मैम, हमने सिर्फ एक ही बनवाया है।
2: अरे वाह, बहुत अच्छा।

0: ये बात
1: नहीं बोलते हम,
0: इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी पकवान बनाने के बाद,
1: तो
0: सिर्फ
1: वो भी बता देंगे
0: जी, हम कह रहे हैं इतने सारे पकवान बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद, सिर्फ एक सेट कपड़ा आपने क्यों बनवाया?
1: नहीं नहीं मैम, वो तो हर साल हम लोगों के बनते ही रहते हैं, ये तो है नहीं खाली त्योहार
0: जी, हमने कहा भाई त्योहार पे तो थोड़ा सा डबल कर लेना चाहिए क्योंकि भाई देखिए हर लड़की की तमन्ना होती है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें ये रहता है कि भाई कपड़ों के मामले में थोड़ा सा जो है हम लोग चूजी होते हैं, हम लोग को लगता है अरे वाह एक फेस्टिवल आ रहा है, मौका मिल गया तो कपड़े बनवाने का
1: जी, जी
0: होता है ना ऐसा,
1: हम हस्बैंड के पास जाते हैं तब ये हो जाता है,
0: तब तो
1: साथ में है नहीं,
0: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतना खुश रहती हैं और इतनी खुशी से आपने त्योहार मनाया, और साथ ही जो आपके घर आते होंगे वो निश्चित रूप से बहुत खुश रहते होंगे। गुलफ्शा बताइए,
1: लेकिन पहली बताई थी जो उनके साथ हमने नहीं मनाई।
0: अच्छा अच्छा ओहो, चलिए अब कुछ पलों का इंतजार, कुछ दिनों के इंतजार के बाद फिर वो आपके साथ होंगे। वैसे कहते हैं जब सब लोग साथ होते तभी मजा आता त्योहार का।
1: जी जी
0: मैम। अब चलिए और दूसरे मुद्दे की बात करते हैं कि बताइए गाना कौन सा सुनना है।
1: गाना में सुनना है जीव मूवी का ओ सनम ओ सनम।
0: ओ सनम ओ सनम, ये गाना क्यों पसंद है आपको?
1: अच्छा लगता है, इसकी म्यूजिक अच्छी है, गाने के बोल अच्छे हैं। जी मैम सुनते रहते हैं।
0: तो चलिए गुलफ्शा हमने गाना प्ले कर दिया,
1: नाम ले लें
0: जल्दी से।
1: सबसे पहले आपको
0: धन्यवाद।
1: शमा परवीन है, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, निशा अंसारी, ममता गौतम है, रोशनी रावत है, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को
0: शुक्रिया हमको डेडिकेट करने के लिए, और तमाम लिसनर्स जिनको आपने डेडिकेट किया उनकी तरफ से भी आपको थैंक यू। ओके बाय बाय गुलशन, बाय।

जी हम साथ हैं आपके और आप साथ हैं हमारे और हमारे साथ है हमारा प्रोग्राम हेलो एफएम 100.7 एफएम रेनबो पर. शिल्पी आपके साथ है 7:49. हेलो

0: एफएम और हेलो एफएम कहने के लिए और हमें हेलो कहने के लिए कौन है आइए जानते हैं। हेलो
1: हेलो मैम, प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग प्यार भरा नमस्कार, आपको भी अपना नाम बताइए।
1: मैं रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर सेवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। मैम कैसी हैं आप?
0: रिंकी पिंकी जी रायबरेली से बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके और अच्छी हो गई।
1: थैंक यू मैम।
0: तो रिंकी जी कैसा मौसम है रायबरेली में?
1: आज रात में आंधी भी आई तो मैम ठंडा मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम था आज का।
0: जी तो अभी क्या कर रही थी आप सुहाने मौसम में?
1: मैम खाना बना रहे हैं।
0: लीजिए
1: बना रहे हैं और खाने के लिए आ जाइए आप।
0: क्या, अरे वाह, अब आपने देखिए मेरी भूख बढ़ा दी। अब आप ऐसे कह देती तो हम।
1: दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, ये कौन बोला?
1: जी आपकी वही जानी पहचानी दोस्त पिंकी।
0: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत
1: आप
0: सबका स्वागत।
1: बहुत तमन्ना थी आज पूरी हो गई और हम आपका कार्यक्रम कंटिन्यू दोपहर में सुनते रहते पर जुड़ नहीं पाते।
0: अरे जुड़ नहीं पाती क्यों, मेल तो आपके आते हैं?
1: जी जी मैम, कभी कभी भेज देते हैं क्योंकि भैया लोग घर पे रहते हैं तभी भेज पाते, नहीं तो नहीं भेज पाते।
0: अरे चलिए, हम लोग एक दूसरे से दिल से कनेक्टेड है ना।
1: जी ठीक है मैम, आप हमारी बहन से बात करिए, हमें कुछ काम है तो हम
0: जा। जी जी जी बिल्कुल। हाँ तो भाई रिंकी पिंकी जी कहाँ गई आप? हेलो
1: जी मैम, यहीं पर है।
0: यहीं पर हैं? हाँ तो भाई चलिए, आज सबसे जो हमारे लिसनर्स हमको मेल करते थे, और ज्यादातर मैं दोपहर में प्रोग्राम करती हूँ ना तो मुझे सबके मेल मिलते हैं, तो आप आज सबसे बात हुई जा रही है। अब जल्दी से बताइए कौन सा गाना सुनना है।
1: मैम दिलवाले मूवी से चला दीजिए, मैम कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे।
0: बिल्कुल नाम लीजिए, नाम लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं।
1: सबसे पहले तो आप हैं, उसके बाद
0: शुक्रिया
1: कानपुर से गुंजन तिवारी जी हैं, समय परवीन साहिबा अंसारी और ममता गौतम, सुरभि सिंह और मोहम्मद फैज भाई, विनीत भाई और संजय भाई, बाकी जितने सारे भैया लोग सुन रहे हैं सबको
0: सबको चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
3: सदस्य 44 मिनट हो गए। हेलो FM, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर शिल्पी आपकी।

0: सात है और धड़कन लखनऊ की कर बहुत सारी धड़कने जुड़ चुकी हैं और इस समय हमारे साथ कौन है ये जानता है। हेलो, गुड इवनिंग। नाम बताइए जल्दी से अपना। यास्मीन जी, कहाँ से बात कर रही हैं? सो लकी इवनिंग फॉर सीतापुर पीपल। हाँ, सीतापुर के लोगों के बहुत सारे फोन मिल रहे हैं।
1: आज लगी है, मतलब हमारे लिए भी, मतलब इतनी जल्दी कॉल नहीं लगी।
0: आज लग गई। चलिए यास्मीन, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी।
0: क्या करती हैं? बिल्कुल, आप बताइए क्या करती हैं यास्मीन?
1: मैं इस टाइम ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही हूँ। वैसे तो मैं सिलाई कर चुकी
0: जी,
1: वो मेरी कंप्लीट है। तो आप उनका कोर्स कर रही हैं
0: जी? किस चीज का कोर्स कर रही हैं?
1: ब्यूटिशियन
0: का कोर्स करें, यानी आप लोगों की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये बताइए कि ये खूबसूरती जो है वो बाहरी प्रोडक्ट से बढ़ाने का सजेशन देते हैं या फिर कुछ ऐसे देसी चीजें जो आपकी किचन में मौजूद हैं उनसे भी खूबसूरती बढ़ सकती है?
1: किचन की तो बात है ये, लेकिन
0: इंस्टेंट ग्लो। ओके, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए तो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है इस तरह का। अच्छा, एक चीज बताइए, कहते हैं जो आलू होता है, आलू वो ब्यूटी बढ़ाने में बहुत अच्छा कारगर साबित होता है, क्या ये बात सही है कि आलू को अगर हम घिस करके और उसका अगर हम पानी निकाल लेते हैं यानी उसका जूस निकाल लेते हैं तो क्या वाकई में स्किन पर लगाने पर उसमें रौनक आती है? नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता है, अगर आप स्किन पे इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो रौनक आती है।
1: नहीं, मेरी मैम ने बोला कि अगर आपको खूबसूरती, अगर आपके फेस पे कुछ भी नहीं है तो आप घरेलू नुस्खे अपना सकती हैं, वरना जो है आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए
0: जी। और सबसे बड़ी बात आपको एक और मैं बताऊं यास्मीन, की खूबसूरती ये चेहरे पर जरूर होगी, चाहे आप जितना मेकअप कर लीजिए आप खूबसूरत नहीं लगेंगे अगर आप उसमें एक प्यारी सी स्माइल ना रखें, तो स्माइल जरूर रखने को बताया कीजिए।
1: यस मैम, जो मतलब कस्टमर आते हैं मैं उनसे मतलब ऐसे ये बात बात करते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का मतलब माहौल लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, अपने काम को एंजॉय करना भी चाहिए। सो यास्मीन, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक अपना डिसाइड किया कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में और उस तरफ आप आगे बढ़ी। बिल्कुल, आपको जो है हर किसी को अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होना चाहिए यास्मीन, बहुत अच्छा एफर्ट आपका। तो अब जल्दी से जो गाना आपने सुनना चाहा है वो बता दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: गाना मैम तराशी का है, यार बदलना जाना।
0: तो भाई मौसम की तरह बिल्कुल मत बदलिए, ये ना हो कि पता चला आपका मौसम, आपके जो है जो स्वभाव है बहुत अच्छा और एकदम से मौसम की तरह बदल के कड़कने लगी बिजली, ये मत करिएगा।
1: नो मैम, मैं ऐसा करती
0: नहीं। तो ये मुस्कुराहट यूं ही मेंटेन रखिए।
1: बदलती नहीं मैं, जिससे मतलब मोहब्बत करती हूँ दिल से करती हूँ, ना कि बदल किसी के साथ मैं ऐसा करती हूँ।
0: क्या बात है, तो चलिए अब एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग 100.7 एफएम रेनबो जी। गाना प्ले हो गया है, चलिए दो नाम ले लीजिए।
1: मेरी फ्रेंड है शबनम।
0: चलिए शबनम के लिए आपकी तरफ से गाना आ रहा है।

0: 7:50 42 सेकेंड यूँ ही बढ़ते रहते हैं और अब सचिव पकड़िए तो वक्त पकड़ने का दिल करता है लेकिन वक्त हाथ से यूँ छोड़ता है जैसे कि रेत। बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, नाम बताइए अपना।
1: मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से बोल रहा हूँ।
0: जी मोहम्मद तालिब अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम हेलो एफएम में। कैसे हैं?
1: थैंक जी, बढ़िया है, ठीक है। और काफी सारे मेहमान लोग थे लेकिन चुपके से हम टाइम निकाल के हम भी किस्मत आजमा भी लेते हैं और मेरी कॉल लग गई है।
0: तो वही त्योहार, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आज हम दे रहे हैं।
1: जी थैंक यू।
0: तो भाई जाहिर सी बात है कि त्योहार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है और आप खुद भी लोगों के घर जाते हैं, है ना, क्योंकि त्योहारों का ही मौका होता है जब आप एक दूसरे से के लिए समय निकाल पाते, वरना यूं तो इंसान बहुत अब बिजी हो गया। क्यों
1: जी? हाँ ये बात तो सही है, पहले पत्रों का जमाना था, अब अनलिमिटेड का जमाना है, तब भी आदमी लोग खैरियत वगैरह बहुत कम, लोग रिलेशन जो है बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन अब यही एक मौका होता है पर्व त्योहार,
0: इसीलिए त्योहार होते हैं,
1: आदमी मिल पाता है।
0: जी जी जी, त्योहारों के बहाने ही आपस में लोग मिलते हैं और त्योहारों की जो रौनक होती है वो आपस में मेल जोल से और सब अपनों के साथ होने से होती है।
1: जी
0: तो तालिब जी, आप अभी हमको ऑफ एयर बता रहे थे कि बहुत सालों बाद बात हो रही है आपकी।
1: जी बहुत दिनों के बाद, जब हम छोटे थे तब रेमबो धमाल प्रोग्राम आता था 12 बजे, तब आपसे बात हुई थी।
0: अच्छा, उसके बाद अब सीधे आज बात हुई है।
1: मेल के तो जब आप दोपहर में आते मेल के थ्रू जुड़ जाते
0: जी
1: थे
0: जी।
1: लेकिन आप तो शाम को जब आई हैं तो आज हमने सोचा किस्मत आजमा ही लेते हैं।
0: अरे बहुत अच्छा किया। और अब जल्दी से, हाँ जल्दी
1: कहते हैं ना, दिल से दिल तक का रिश्ता होता है, जैसे रेनबो से तो फोन लग भी जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: लग गया।
0: आप सब लिसनर्स का बहुत दिल का रिश्ता है रेनबो का और यही आप लोग का जो प्यार है वो रेनबो को जो हमारा है वो दिन रात चौगनी क्यों वृद्धि कर रहा, सिर्फ आप लोग की वजह से, आपके प्यार की वजह से।
1: जी
0: तो अब जल्दी से गाना आपने जो हमें बजा दिया तो वो हमने प्ले कर दिया है। आपने बताया था इतिहास मूवी का गाना सुनना है,
1: इतिहास मूवी का,
0: है ना। तो अब हम इसको आप एंजॉय कीजिए क्योंकि अब समय हमारे पास।
1: हाँ, हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद साबिर और अकबर भाई सर जी और सभी सुनने वालों को डेडिकेटेड सॉन्ग और खास करके आपको।
0: थैंक यू सो मच।

0: और चलते चलते एक जल्दी से बात कर लेते 7:56 पर। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, जल्दी से बात किए, 7:56 हो गए।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश बांसुडाड़ा से बात कर रहा हूँ मैडम जी। मेरे गांव बांसुडाड़ा।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या हालचाल है और कौन सा गाना सुनना, क्योंकि समय कम है इसलिए ज्यादा बात आपसे नहीं कर पाएंगे।
1: और आज मुझे दिल फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, ओ प्रिया प्रिया, और सभी को गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम जी।
0: जी सभी को।
1: मौसम में जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, कलिंदे खरबूजा ककड़ी खीरा इनका सेवन करना चाहिए, पत्नियों को पानी रखना चाहिए, भैंस जानवर को ख्याल रखना चाहिए।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा संदेश दिया। और अब जल्दी से हम फोन रख रहे हैं क्योंकि 7:57 हो गया है, और इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करने की इजाजत दीजिए शिल्पी को। नेक्स्ट 4 आवर आपको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार है स्टूडियो में विनय। सो अभी के लिए मैं आपसे करती हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी, तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से समाज कल्याण मंत्रालय और अनुगम के संयुक्त तत्वावधान में आज लखनऊ में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने कहा कि उद्यमिता आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु DNT समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न परियोजनाएं संचालित कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकताओं पर बल दिया। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। प्रदेश में बीती रात आए तेज आंधी तूफान बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान तथा जनजीवन प्रभावित हुआ। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल।

0: में खो जाता ये सफर
1: है हैरते आशिके जगावत
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान यहां हर कोना एक शायरी हर गली गजल ये लखनऊ है जनाब
4: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक ये भी लखनऊ ही है जनाब
5: समझे जनाब अली
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
6: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशा 100.7 FM रेनबो पर

शाम होते ही दिल को तेरी याद सताने लगती है, शाम होते ही दिल को तेरी याद सताने लगती है, गजलों की महफिल फिर तेरा नाम गुनगाने लगती है। जी हाँ, आज फिर गजलों की इस खुशनुमा महफिल में इस्तकबाल करता हूं मैं आपका अपना दोस्त विनय। आप सुन रहे हैं आपशार।

100.7 पर आप सुन रहे हैं आपशार। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी चांदनी जब

भी दिल को सुलझाएगी। गजलों की महफिल में नाम तुम्हारा आएगा, हर धड़कन मोहब्बत का पैगाम सुनाएगी। सुनते रहिए आबशार आज विनय के साथ।

107.7 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं विनय के साथ आपशा। तेरे जाने के बाद भी तेरी महक बाकी है, तेरे जाने के बाद भी तेरी महक बाकी है, दिल की गलियों में अब तेरी झलक बाकी है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, प्यार की ये खूबसूरती इसमें भी है कि किसी अपने के आने की आहट भी दिल की धड़कनों को बहुत तेज कर देती है। यही एहसास आज हम जगजीत सिंह साहब की आवाज में सुनने जा रहे हैं। तेरे आने की आहट से ही दिल महकने लगता है, तेरे आने की आहट से ही दिल महकने लगता है, जैसे गुलशन में बहार उतरने लगता है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं आबशार 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों आज की ये महफिल यहीं तक, प्यार की गजलें यूं ही आपकी शामों को रोशन करती रहीं। चलते चलते एक शेर पेश है, हमने गजलों में मोहब्बत को सजा कर रखा है, हमने गजलों में मोहब्बत को सजा कर रखा है, हर अल्फाज में तुम्हें ही छुपा कर रखा है। फिर मिलेंगे किसी और शाम, किसी और धड़कन के साथ, तब तक मोहब्बत की महक दिल में सजा कर रखना, रखते रहिए, सुनते रहिए आप शायर।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं।

हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही, यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव

कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल सेमीफाइनल में, और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी,
2: चलते रहे इश्क में पड़ जाते
3: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
4: आपके अपने रेनबो की जबानी,
2: सुनाओ प्यार की एक कहानी।
5: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
6: ये हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
4: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपका अपना दोस्त विनय। 9:02 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पॉप टाइम। शाम के इस खूबसूरत माहौल में हम लेकर आए हैं ढेर सारी मस्ती, शानदार म्यूजिक और पॉजिटिव वाइब्स। तो चाय हो या कॉफी, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट यानी इस पूरे घंटे होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

वाह क्या बेहतरीन गाना था ना दोस्तों। म्यूजिक सच में दिन भर की थकान को दूर कर देता है। अगर आप भी किसी अपने के लिए गाना सुन रहे हैं और या फिर आपको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, अभी पहला ही गाना बजा था, गानों की लिस्ट बहुत ही बढ़िया है और आपको थिरकने पे मजबूर करने वाली है, तो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आपकी मेल्स का इंतजार हमें है, वैसे बड़े सारे मेल्स आ भी चुके हैं, पहले एक दो गाने फिर आपकी मेल हम जरूर लेंगे। आप सुन रहे हैं पॉप टाइम आज विनय के साथ।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर। आज आपका अपना दोस्त विनय है, प्रोग्राम चल रहा है पॉप टाइम। और अब बढ़ चलते हैं हमारे लिसनर्स की मेल की ओर। बहुत सारे मेल्स हैं और सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था तब हमें मेल किया था सत्यम वर्मा जी ने, और ये हमें बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और हमें इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है और लिखते हैं कि आपने तो सरप्राइज दे दिया। वैसे ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, आप लोगों से हमेशा हमेशा मिलना बड़ा अच्छा लगता है। और सुल्तान रजा ने हमें मेल किया है और वे लिखते हैं, विनय सर आपको सुल्तान रजा का प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं? मैं जबरदस्त हूँ। आज बहुत दिनों बाद आप रात के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और इन्हें अच्छा लग रहा वाकई। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली सुल्तान रजा, इकबाल रजा, सादिक रजा, मुनीश रजा, जिशान रजा, अफजाल रजा, मम्मी पापा और बड़े सारे लोगों के नाम लिखे और इन्होंने शुक्रिया कहा है। अरे आपको शुक्रिया जो आप हमें सुन रहे हो और आपने मेल किया है और आपने हमें ये क्या आपने किया, आपने हमें चाय नाश्ता भेज दिया और उसकी फ़ोटो खींच कर भेजी है, ये गलत बात है। कभी घर बुलाइए, चाय नाश्ता कराइए, हम आ जाएंगे पक्का। और हमें देखिए मेल किया है ये विजयपाल यादव हैं जो लखीमपुर खीरी से हमें मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि शाम ढलती है तो आपकी याद आ जाती है। वाह वाह वाह, शाम ढलती है तो आपकी याद आ जाती है, दिल की हर धड़कन तेरा नाम गुनगुनाती है, चाहे कितना भी व्यस्त रहूं इस दुनिया में आपकी मुस्कान ही मेरी सुकून बन जाती है। अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। आज का आपशार कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज अधिकतर गजल सुनने को मिली। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपको धन्यवाद। पॉप टाइम का आनंद ले रहे हैं और इन्होंने अपना नाम फिर से लिखा है, विजयपाल यादव, बबलू यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया और इतना हौसला अफजाई की। और साथ ही साथ हमें मेल किया है, बड़े सारे नाम लिखे, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियान हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान लिखते हैं। अच्छा आपने नाम गलत लिखा, आज पॉप टाइम चल रहा है और कार्यक्रम रोज सुनते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मोनू सेठ जी ने भी मेल किया है और इन्होंने हमें मेल किया है कि इन्हें तगड़ा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐसा लिखा है। और इनकी दो मेल हैं और इन्होंने पौधा लगाने का भी पूछ लिया और साथ साथ इन्होंने ये भी लिख दिया, दोनों एक साथ लिख दिया है कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और एक और बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और हमारा दिल तो आप ले रहे हैं इतने सारे मेल जो कर रहे हैं। जी हाँ, और आपकी मेल्स पढ़ के देख के बड़ा मजा आ रहा है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका मूड फ्रेश नहीं है और आप कोई बढ़िया थेरेपी चाह रहे हैं तो म्यूजिक से अच्छी कोई थेरेपी नहीं है। बेहतरीन म्यूजिक सुनिए और थोड़ा सा मटक भी लीजिए। जी हाँ, अगर आप अकेले कमरे में थोड़ा डांस कर लेते हैं और तेज तेज थोड़ा गाते हैं तो आपकी जो टेंशन है, आपके दिमाग में जितना भी बहुत सारी परेशानी भरी है ना, वो तुरंत फट से भाग जाएगी। और हम है ही, अभी पॉप टाइम चल रहा है 9 से 10, आप मेरे साथ विनय के साथ रहने वाले हैं और मूड को फ्रेश करने के लिए एक और बेहतरीन गाना आप सभी के लिए आ रहा है। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और मेल करके हमें बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर आप विनय के साथ हैं और पॉप टाइम में मेल्स लेना भी बनता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट बन गई है और इस लिस्ट को अगर धीरे धीरे खत्म नहीं करेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए इंद्रपाल मिश्रा जी क्या कहते हैं ये जानते हैं। और ये हमें ग्राम अमृता महोली सीतापुर से सुन रहे हैं और इन्होंने हमें नमस्कार कहा है और प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है। और साथ ही साथ रामराज ने हमें मेल किया है, श्री गणेशाय नमोह लिख रहे हैं और रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से इन्होंने हमें मेल किया है। रामराज, राजू, भानु, शंकर, मैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका और ये सभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्हें अच्छा लग रहा है और इन्होंने कहा कि आप ईमेल पढ़ते रहिए तो दिल खुश हो जाता है। अच्छा, और हमारा दिल खुश होता है जब आप हमें मेल करते हैं। और हमें रोशनी रावत ने भी मेल किया है और हमें पता है कि ये बहुत दूर से हमें सुन रही है, ये चंडीगढ़ से हमें मेल करती हैं और इन्होंने नमस्ते कहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है प्रोग्राम। आप शार इन्होंने सुना, अच्छा लगा और पॉप टाइम भी बढ़िया लग रहा है। और अच्छा, तो लेकिन आपने जो नाम लिखा है वो हम आज नहीं बजा सकते। रेनबो कैफे जब आएगा तो आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे जो आप चाहते हैं, जिसका नाम आपने लिखा है, जिक्र किया है। ये रोशनी रावत है, ये रहने वाली उन्नाव की है, फिलहाल चंडीगढ़ से हमें सुन रही है। और आइए देखते हैं, हमें अरविंद कुमार दुबे जी ने मेल किया है, वो क्या कह रहे हैं और लिखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा लिया है, डांस मूड डांस का बन गया है और ठंडी हवा चल रही है, हम सभी छत पर पॉप टाइम सुन रहे हैं। और लिखते हैं कि अच्छा, आपने जो कहा है हम उसका हम ध्यान रखेंगे। अरविंद, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ये हमें ग्राम धर्म देवा पोस्ट छठा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। और साथ ही साथ विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से हमें सुन रहे हैं। पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले विनय सर को गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग और इन्होंने पहले से गुड नाइट भी कह दिया, अभी गुड नाइट नहीं कहने का, पूरा प्रोग्राम सुनेगा रजनीगंधा तक। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, लाजवाब लग रहे हैं और इन्होंने धन्यवाद कहा है। इनके दोस्त का नाम है ओमकार सीतापुर से और सिरभी सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से और सीमा रावत राजा जीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से। जी, इतने सारे नाम हमें भेजे हैं कि हम ले लें भाई, हमने तो ले लिए। और निर्मल गुप्ता जी ने भी हमें मेल किया है और लिखते हैं कि मैं निर्मल गुप्ता, ग्राम भेटिया जिला लखीमपुर खीरी से, और लिखते हैं कि आपके पॉप टाइम कार्यक्रम का ऐसा असर है कि अब घर वाले पूछने लगे हैं कि तुम रेडियो सुन रहे हो या नौकरी कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आपका कार्यक्रम शुरू होता है मैं सारे काम छोड़कर रेडियो के सामने हाजिर हो जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई, माँ ने सब्जी लाने को भेजा लेकिन मैं पॉप टाइम सुनने में इतना मग्न हो गया कि सब्जी की जगह रेडियो की नई बैटरी लेकर घर पहुँच गया। वैसे ये जो आप बता रहे हैं नशा है रेडियो का, और ऐसा जब हम यहाँ नहीं होते हैं, अपने घर पर होते हैं तो मेरे साथ कुछ कुछ ऐसा ही होता रहता है, पूरे समय रेडियो बजता है। और इन्होंने कहा है कि आगे फिर घर में मेरी जो विशेष मीटिंग हुई, विशेष मीटिंग पर इन्होंने जोर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में है।

का प्रसारण नहीं किया जा सकता। आपकी हंसी और बातें इतनी शानदार होते हैं कि लगता है रेडियो नहीं घर का कोई दोस्त गपशप कर रहा है, और आप जैसे दोस्त हो तो गपशप करने का मन भी करता है। और इन्होंने अच्छा इन्होंने फरमाइश वर्ड यूज़ किया है पर फरमाइश की नहीं है। यह निर्मल गुप्ता ग्राम भेटिया लखीमपुर खीरी से। तो अब इतने सारे मेल पढ़ने के बाद एक बार फिर आप तैयार हो जाइए डांस करने के लिए। आ रहे हैं पटोला।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आशिकी जगा
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

जी हाँ, कुणाल गांजावाला की बेहतरीन आवाज के बाद ये पंजाबी ट्रैक आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, रेनबो पर आप सुन रहे हैं पॉप टाइम। आज विनय आपके साथ और हम इस पंजाबी गाने पर थिरकने के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए।

और इस पंजाबी ट्रैप पर झूमने के बाद आइए फिर से हम मेल्स की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वकील अहमद ने हमें मेल किया, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और आवाज़ अच्छी लग रही है, हमें आपका मेल अच्छा लगा, पॉप टाइम इन्हें बेहतरीन लग रहा है, गाने बढ़िया बज रहे हैं, ईद उल अजहा की सभी को इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और आपको भी शुभकामनाएं, और इन्होंने हमें निमंत्रण दे दिया है और वकील अहमद साहब हम ज़रूर आएंगे। और इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से मेल किया है, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी मिकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, अहमद नवाब, और साथ ही साथ हमें विवेक कश्यप का मेल आया है। गुड इवनिंग कह रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और इन्हें आवाज़ अच्छी लग रही है। विवेक कश्यप सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से, और इन्होंने कहा है कि भोजपुरी गाना बजाइए, रेनबो कैफे सुनिए, हम तो आपसे यही कहेंगे। और इन्होंने दो बार मेल किया है, और अब देखिए मोनू सेठ जी ने फिर से हमें मेल किया है और इन्होंने पॉप टाइम प्रोग्राम की तारीफ की है और कहने थोड़ा अधिक व्यस्त हूँ जिसके कारण से मेल देरी से कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आपने मेल ऑलरेडी कर दिया था और हम समझते हैं आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बाबू अंसारी ने हमें मेल किया है, बाराबंकी से नमस्ते कह रहे हैं और प्रोग्राम झमाझम लग रहा है और कुछ नाम शामिल करने लिए कहा है, नसीब अंसारी, मुनान अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी। और साथ ही साथ आनंद तिवारी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं कि रिश्ते वही हैं, अदाकार नए हैं, जज्बात वही हैं, जवाबदार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं, जिंदगी वही है, किरदार नए, क्या बात है। आज के दिन तो दिल तो परदेसी नहीं जा रहा है, लेकिन आज के गाने दिल जीत लिया। अच्छा ओके, गाने इन्हें अच्छे लग रहे हैं। और ये आनंद तिवारी हैं दारू कुइया मल्लावा हरदोई यूपी से, फिलहाल हमें राजस्थान से सुन रहे हैं। आस्था अवस्थी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग, और कह रहे हैं मैं जानकीपुरम से प्रोग्राम सुन रही हूँ, प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, लखनऊ से। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था, आपने हमें मेल किया उसके लिए। और देखिए हमें विपिन मौर्य खंजन नगर मितौली लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं, गुड इवनिंग कहा इन्होंने और इन्होंने कहा है कि आप गाने बजाते रहिए, हम सुनते रहेंगे और थिरकते रहेंगे, क्या बात है। और इनके दोस्त का नाम है जगन सिंह, जिसके लिए इन्होंने

इसलिए लिखा है कि आप हमारे दोस्त का नाम जरूर ले लीजिए। और देखिए हमने आपके दोस्त का नाम ले लिया और आइए एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है, आप तैयार हो जाइए डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और हम तैयार हैं आपके लिए ये गाना लेकर। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और आप डीजे पर नहीं हमारे सॉन्ग पर जरूर मटक रहे होंगे, हमें पूरा भरोसा है। 9:50 हुए हैं, बड़े सारे मेल्स अभी भी हमारे सामने हैं। आप सुन रहे हैं पॉप टाइम, आज विनय आपके साथ है। और आइए मेल्स पढ़ते हैं। सुनील कुमार ने हमें मेल किया है, नमस्ते कह रहे हैं, कार्यक्रम बेहतरीन लग रहा है। सुनील कुमार गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है। और हमें शुभम राज सुन रहे हैं, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है। और ये लिखते हैं हरदुइया मिल्कीपुर अयोध्या से। अच्छा, इन्होंने पहले से थैंक यू बोल दिया और आपने मेल किया, उसके लिए भी थैंक यू। और हमें सुन रहे हैं जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, और इन्होंने हमें एमपी से मेल किया है। प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत दूर दूर से हमें लोग सुन रहे हैं। और अंकुश पटवा ने हमें मेल किया है, ये हमें सालोन रायबरेली से मेल कर रहे हैं। और इन्होंने लिखा है, ठीक है आपने जो लिखा है ना, वो हम यही आपसे कहेंगे, पॉप टाइम चल रहा है और आप अगर इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं तो हर रोज सुनते रहिए, जब भी आपके लिए रेनबो कैफे आएगा तो ये गाने जरूर बजेंगे। और एमन नवाब ने हमें संडीला से मेल किया है, गुड इवनिंग कह रही हैं और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और ईद के एक दिन पहले ही तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आप गाने सुनते रहिए, हमारे प्रोग्राम एंजॉय करते रहिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और साथ ही साथ तेज बहादुर यादव ने हमें मेल किया है, हमें राम राम कह रहे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। और इन्होंने कहा है कि आज आपको रात के कार्यक्रम में पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है आपने रेगुलर सुना नहीं, हम कई बार आ चुके हैं, कार्यक्रम अच्छा कर रहे हैं, इन्हें बढ़िया लग रहा है। और कहते हैं कि इनकी कोशिश रहेगी कि रजनीगंधा भी पूरा सुने, कोशिश नहीं आपको पूरा सुनना ही पड़ेगा, जय हिंद तक आप बने रहेंगे ऐसा ये कह रहे हैं। और आपको हमें ना 12 मेल करना पड़ेगा। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है, फिलहाल ये गुरुग्राम हरियाणा से हमें सुन रहे हैं। और साथ ही साथ राजेश कुमार ने हमें मेल किया है और ये हमें राहत, अच्छा इन्होंने एक शेर लिखा है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतज़ाम क्या क्या है। राहत इंदौरी साहब का इन्होंने ये बेहतरीन शेर लिखा है, हरदोई से मेल किया है। और साथ ही साथ हमें मुनेश ने भी मेल किया है, मुनेश कुमार राज लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और हर घंटे इन्हें हमारे सभी प्रस्तुतियाँ लाजवाब रखती हैं। और इन्होंने भी लिखा, इनकी बिटिया की तबीयत ख़राब है, सॉन्ग अच्छा तो उनका ध्यान रखिए, हम अपना प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जावेद अख्तर ने भी गुड इवनिंग कहा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सभी गाने इन्हें बेहतरीन लग रहे हैं। इन्होंने हमें आज़मगढ़ से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने 2-3 नाम लिखे हैं, शमगुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीमा शाहीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने हमें मेल किया। और देखिए समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और हम आपसे जुदा बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। 9:57 हुए हैं, न्यूज ब्रेक के उस पार एक बार फिर से लेकर हाजिर होंगे रजनीगंधा। फिलहाल पॉप टाइम से अपने दोस्त विनय को इजाजत दीजिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

में उत्तर प्रदेश सरकार शासन प्रशासन में पारदर्शिता, सुशासन और तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाते हुए 91 प्राध्यापकों के तबादले सम्पन्न किए गए। इस प्रक्रिया के माध्यम से सहायक प्रोफेसर, सहायक सह प्रोफेसर तथा प्रोफेसर संवर्ग के कुल 91 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। बागपत जनपद में विजिलेंस टीम ने जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी को 40,000 रुपये और क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी जोगेंद्र सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बुरसैनी गांव के कोटेदार ने बताया कि राशन का कोटा देने की एवज में दोनों अधिकारी काफी समय से रिश्वत देने का दबाव बना रहे थे। कोटेदार आज विजिलेंस टीम को लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचा और जिला पूर्ति अधिकारी को रिश्वत दी, जिसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2026 की परीक्षा 31 मई 2026 को जनपद बस्ती के 12 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र हेतु केंद्र प्रतिनिधि स्टैटिक मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंडलायुक्त गोरखपुर द्वारा जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों हेतु मिट्टी खनन एवं उसके सुरक्षित परिवहन को लेकर एक विस्तृत बैठक की गई। पुलिस कप्तान द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मिट्टी परिवहन कर रहे डंपरों की ओवर स्पीडिंग तथा बिना मिट्टी को ढके ले जाने की दुर्घटनाओं घटित होती रही हैं। NHAI द्वारा बिना जानकारी के एक लेन मरम्मत के नाम पर बंद कर दूसरे लेन से ही सभी आने जाने वाली गाड़ियों को निकाले जाने से तथा मौके पर कोई डायवर्जन का बोर्ड भी समुचित तरीके से नहीं लगाया गया था, जिसके कारण दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत होने से एक दुर्घटना हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
4: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
3: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

तेरी यादों की चांदनी में भीगा है ये मौसम, तेरी यादों की चांदनी में भीगा है ये मौसम, दिल की हर धड़कन पर आज तेरा ही नाम लिखा है। रात की इस नरम खामोशी में कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ मीठी सी मुस्कुराहटें हैं और कुछ अनकहे एहसास जो आज फिर हमें ले आए हैं आपके अपने प्रोग्राम रजनीगंधा में। दोस्तों, ये वो महफिल है जहां हर गीत किसी दिल की कहानी कहता है, जहां हर सुर में छुपा होता है मोहब्बत का कोई रंग, और जहां हर लम्हा याद दिलाता है किसी अपने की मौजूदगी का एहसास। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कर रहे हैं कुछ सदाबहार नगमों और दिलकश एहसासों के साथ।

पहली मुलाकात का जादू शायद कभी पुराना नहीं हो सकता। जी हाँ, पहली मुलाकात का जादू कभी पुराना नहीं हो सकता। वो पल हमेशा दिल में कहीं ठहर सा जाता है। जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ बात नहीं होती, बल्कि दो धड़कनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता भी जन्म लेता है। उस एक मुलाकात ने ऐसा असर किया हम पर, उस एक मुलाकात ने एक ऐसा असर किया हम पर कि हर चेहरा उसी सा लगने लगा है।

0: इससे पहले कि तेरी आंखें नींद से बोझिल हो, सजाते हैं इनमें कुछ ख्वाब और उन ख्वाबों में बयां हो दिल के तमाम जज्बात।
1: सुनते रहिए रजनीगंधा सिर्फ रेनबो पर।

दोस्तों कभी कभी मोहब्बत शब्दों से नहीं सिर्फ आंखों से समझी जाती है। जी हाँ, मोहब्बत कभी कभी किसी शब्द में नहीं आंखों में होती है। कुछ रिश्तों में खामोशी ही सबसे खूबसूरत बात बन जाती है। तेरी नजरों ने जो बात कही, तेरी नजरों ने जो बात कही, वो लफ्ज कभी कह ही नहीं पाए। कहते हैं सच्चे एहसासों को आवाज की जरूरत नहीं होती, दिल खुद ब खुद उन्हें महसूस कर लेता है।

दोस्तों प्यार कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे दिल में उतरता है, जैसे सुबह की पहली किरण या बारिश की पहली बूंद। कभी एक मुस्कुराहट, कभी किसी की आवाज और कभी किसी का यूं ही पास से गुजर जाना। दिल को किसी अनजाने एहसास से भर देता है, एक अजनबी सा चेहरा दिल में उतर गया, एक अजनबी सा चेहरा दिल में उतर गया, देखते ही देखते वो मेरी दुनिया बन गया।

दोस्तों प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें अपनापन खुद ब खुद झलकने लगता है। कभी किसी की फिक्र में, कभी किसी की मुस्कान में, तो कभी उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाने में। यही तो मोहब्बत की सबसे प्यारी बात है, इसमें अपना सब कुछ भी कम लगने लगता है।

दोस्तों, इश्क का सबसे खूबसूरत रंग वफा का होता है। जहां भरोसा हो, जहां अपनापन हो और जहां हर मुश्किल में साथ निभाने का वादा हो। मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी होती है जिसे दिल से निभाया जाता है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और खूबसूरत होते चले जाते हैं। उनमें ना दिखावा होता है, ना कोई शर्त होती है, बस एक सुकून जो हर दर्द को हल्का कर देता है। 10:50 आप सुन रहे हैं आज विनय के साथ रजनीकंधा।

प्यार वो रूहानी आईना है दोस्तों, जो बिना कहे भी दिल की दुआ बन जाता है। 10:56 हुए हैं, रजनीगंधा की फर्स्ट हाफ से इजाजत लेते हैं, न्यूज ब्रेक के उस पार फिर से रूबरू होंगे। सुनते रहिए FM रेनबो।

रात्रि के 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन मीडिया को बताया कि अब तक 9,76,000 किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। किसानों को अब विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 एवं 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार

आर कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिजनौर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति और पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गंगा सहित अन्य नदियों की स्वच्छता बनाए रखने, गंदे पानी और कचरे के प्रवाह पर रोक लगाने तथा घाटों की नियमित सफाई और जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और चालान बढ़ाने को कहा गया। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछराओं का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल में निरीक्षण के समय चिकित्सालय की ओपीडी सेवाएं, एनबीएसयू, फार्मेसी, औषधि वितरण कक्ष, लेबर रूम एवं नर्सिंग स्टाफ का भी निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ द्वारा सीएमएसडी स्टोर का निरीक्षण कर उपलब्ध दवाइयों की जानकारी फार्मासिस्ट से ली गई। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद ओ मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा ओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

मोहब्बत अगर दिल से की जाए तो उसकी खुशबू उम्र भर साथ बनी रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात की हवा में घुली रजनीगंधा की महक। जो देर तक एहसासों में बनी रहती है, कुछ रिश्ते आवाज नहीं देते, कुछ रिश्ते आवाज नहीं देते, बस दिल में चुपचाप बस से जाते हैं।

कहते हैं मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी किसी खास को महसूस करने का नाम है। कुछ लोग हमारे जिंदगी से दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी मुस्कुराहटें, ये सभी हर पल हमारे साथ चलती रहती हैं।

0: इससे पहले कि तेरी आंखें नींद से बोझिल हो, सजाते हैं इनमें कुछ ख्वाब और उन ख्वाबों में बयां हो दिल के तमाम जज्बात।
1: सुनते रहिए रजनीगंधा सिर्फ रेनबो पर।

मोहब्बत में इंतजार भी एक अलग ही एहसास देता है। वो बेचैनी, वो हल्की सी घबराहट और फिर अचानक किसी अपने का सामने आ जाना, जैसे जिंदगी एक पल में रोशन हो जाए। राहों में बिछी रहती है निगाहें मेरी, राहों में बिछी रहती है निगाहें मेरी, शायद आज फिर उनका दीदार हो जाए।

0: दोस्तों कभी कभी जिंदगी में जुदाई भी देती है। जी हाँ, कभी कभी जिंदगी हमें जुदाई का दर्द भी देती ही है, लेकिन सच्ची मोहब्बत दूरी से कम नहीं होती बल्कि और गहरी होती जाती है। फासले चाहे जितने भी हों, दिल का रिश्ता कभी दूर नहीं होता।
1: ये मौसम

इश्क की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती हैं। किसी का इंतजार, किसी की आहट, किसी का नाम सुनकर यूं ही मुस्कुरा देना, यही तो मोहब्बत की असली मिठास है। जब कोई दिल के करीब हो तो उसकी यादें भी साथ चलने लगती हैं, हर रास्ते पर, हर मौसम में और हर धड़कन के साथ।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

दोस्तों, रात जितनी गहरी होती जाती है, यादें भी उतने ही करीब आने लगती हैं। कभी कोई पुराना गीत, कभी कोई पुरानी बात, तो कभी किसी की प्यारी सी हंसी, दिल को फिर उसी मोड़ पर ले आती हैं। कुछ यादें बारिश की बूंदों की जैसे होती हैं, कुछ यादें बारिश की बूंदों के जैसे होती हैं, छू जाए तो दिल महक उठता है।

0: दोस्तों, आज की इस महफिल में हमने महसूस किए प्यार के कई सारे रंग। इंतजार, मुलाकात, नाराजगी, वफा और यादों की वो मिठास जो हर दिल को छू जाती है। उम्मीद है आज की ये पेशकश भी आपके दिल के किसी कोने में एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को, फिर मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मोहब्बत के इन सुरों को दिल में बसाए रखिए।
1: अभी अलविदा मत

रात्रि के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में आगामी 5 जून से 21 जून तक चलाए जाने वाले विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास की परिवर्तनकारी यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे व्यापक जन भागीदारी का अभियान बनाया जाए। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। ध्वजारोहण के बाद आयोजित समारोह में साध्वी रितंबरा ने कहा कि आज की पीढ़ी को भारत की स्त्री होने का अर्थ बताना होगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का दायित्व घर में रहने वाली देवियों का है। कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट द्वारा धान की खेती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु अजोला उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 5 एकड़ धान उत्पादन हेतु 10 कुंतल अजोला तैयार किया जा रहा है। अजोला एक जलीय फर्न पत्तीदार काई है जिसे प्राकृतिक उर्वरक एवं सुपर फूड माना जाता है। इसमें उपस्थित एनाबिना नामक नीला हरित शैवाल वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलाता है, जिससे धान की फसल को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है।

जौनपुर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को प्रभावी एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया है कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रत्येक माह ऑडिट कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:13 और सूर्यास्त 6:55 पर होगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः